0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: तक का टाइम है,
4: मेरे पैसे वापस कर। पैसे
5: तेरे को शर्म नहीं आई? माँ के कंगन गिरवी रखते हुए
4: मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो तेरे घर को आग लगा दूंगा।
6: अब मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।
7: रुको रुको बेटा।
6: अरे बाबा कहाँ से आ गया, जल्दी कूदना पड़ेगा।
7: क्या हुआ बेटा?
6: बाबा जी, बड़ा आदमी बनने के चक्कर में मैंने कर्ज ले लिया और इस कर्ज ने मुझे बर्बाद कर दिया। बाबा जी मैं हार गया, बाबा जी मैं हार गया।
7: हार गया? अरे हारे का सहारा ही तो है श्री श्याम जी।
6: श्याम जी?
7: हाँ हाँ श्याम जी, ये हैं हमारे श्री खाटू श्याम जी।

0: पर बाबा, बाबा जी, बाबा जी। भैया ये खाटू श्याम जी कहाँ आएगा?
1: अच्छा खाटू श्याम जी जनाब को यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर है।
0: 500-600 किलोमीटर दूर?
1: हाँ
2: सीधे चले जाओ, सीधे

0: जी कहाँ जा रहे हो?
1: खाटू श्याम जी जा रहे
0: हैं। चलो रास्ते में छोड़ देता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। आ जाओ भाई आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा रास्ते में, मैं भी जा रहा हूँ। आ जाओ

0: देखो दर्शन भी हो गए बाबा जी के, अब चलो घर छोड़ देता हूँ तुम्हें।
1: बाबा जी अब तो मेरा घर भी यही है, सब कुछ यही है।
0: चलो अब क्या बोल सकता हूँ तुम्हें, जैसे श्याम जी की मर्जी। ठीक है फिर मैं चलता हूँ।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन,
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC, साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: यांसे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
2: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और असर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। दास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
3: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी एल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयर ट्रंक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट स्टेरिस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरवी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश, आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की, इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की, केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा, और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement,

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
6: सुबह होते ही देखो ऐसी ये बात, मॉर्निंग बिंदास होना तो बनता है यार, क्योंकि आप आनंद को सुन रहे हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आपने ट्यून इन कर लिया है FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ढेर सारे श्रोता साथी जो है हमारा बेसब्री से इंतजार करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतना प्यार करते हैं और हमारे आने से पहले ही इतने सारे मैसेज भी कर देते हैं।

गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है बाहर का। इस ऑसम वाले मौसम में मुझे पता है बच्चे स्कूल निकल चुके हैं। बच्चे तो भाई सुबह 7 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं, कुछ 7:30 पहुंच जाते हैं और 8 बजते तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे स्कूल के अंदर हो जाते हैं मुझे पता है। एंड बाकी अगर किसी का टाइम थोड़ा बहुत 19-20 है तो कोई इशू नहीं है। बाकी आप लोग जो भी कर रहे हैं ऑल द वे बेस्ट। आज का दिन बहुत खास है, 8 जुलाई की सुबह है। मैं आ गया हूँ आपके बीच ढेर सारी जानकारी और बहुत सारी कड़क अपडेट लेकर इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। स्टेशन की घड़ी में वक्त हुआ है 8:21। आप आनंद के साथ जुड़े हैं ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां पर आपकी होती हैं बातें मेरे साथ और मेरी बातें होती हैं आपके साथ, जहां पर भाई आनंद ही आनंद आ जाता है। एंड अच्छे गाने भी होते हैं जिससे हम करते हैं अपनी सुबह के सफर की शुरुआत। फिलहाल एक और आज बहुत ही प्यारा सा गीत निकल कर आ गया है जिससे हम करेंगे आज के सफर की शुरुआत। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं आज की सुबह तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं 9837896896 पर। अगर आप जो है कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर एक गोल्डन चांस दे रहा हूँ, आज की सुबह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़िए। आज का मौसम बहुत औसम है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ आज के सफर की। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत ही प्यारा ट्रैक है, इसी गीत को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

श्रोताओं कहते हैं कि आज का प्रयास ही कल की पहचान बनता है। अगर आप सही दिशा में आज प्रयत्न करेंगे, अगर आप आज सही दिशा में प्रयास करेंगे तो यकीन मानिए आज का प्रयास ही कल की आपकी पहचान बनेगा। आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, आप पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप जो भी चीज कर रहे हैं अगर आप उसमें लगातार कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेंगे, लगातार अगर आप उसको सही डायरेक्शन में करते रहेंगे तो यकीन मानिए एक ना एक दिन आपको वो चीज सफलता की ओर ले ही जाएगी, है ना। तो बस आप जो है किसी भी शुरुआत से डरिए मत, अपनी शुरुआत को जो है मेंटेन रखिए, कंटिन्यू रखिए एंड जैसा आप कर रहे हैं उसको करते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वे बेस्ट, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं एंड हम तो बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि आप जब भी कभी कुछ अच्छा करने जाएं बस उसके लिए अपने माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल जरूर दें। जब आप पॉजिटिव सिग्नल देते हो तो यकीन मानिए आपके आधे काम ऐसे ही पॉजिटिव हो जाते हैं। मौसम बहुत ही औसम है शहर का, बहुत ही कूल वेदर है आज का, 28 डिग्री सेल्सियस है एंड ऑफकोर्स कल भी बहुत ही अच्छा वेदर रहा है, नो डाउट। आज भी थोड़ा सा वेदर जो है अच्छा है, थोड़ा नहीं पूरा ही अच्छा है यार, 29 डिग्री सेल्सियस अभी दिखा रहा है, 28 से 29 हो गया है एंड ये आगे और भी बढ़ेगा। फिलहाल आज मौसम बहुत औसम रहने वाला है, हवाएं 8 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी, एयर क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है एंड बाकी ह्यूमिडिटी तो यार ठीक ठीक है क्योंकि आज आपको वेदर ठीक ठाक मिलने वाला है। सो आज का जो मौसम है एब्सोल्यूटली औसम है यार एंड बाकी और क्या कुछ खास है अभी डेफिनेटली पता लगेगा। 8:34 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को एंड आपके ढेर सारे संदेश मेरे पास पहुंच रहे हैं। हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूं यार, ये लिख रही है मुझे आनंद जी, आज मौसम बहुत औसम हो रहा है, आपने मौसम बहुत प्यारा करा दिया है। मैम देखिए मौसम औसम होना तो बनता है, वैसे भी मानसून आ ही गया है, बारिश तो ऑलमोस्ट अब शुरू हो ही जाएगी और होनी भी चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है, गर्मी ने बहुत परेशान कर दिया है, बारिश थोड़ी रिलैक्स वाली भी है ना। एक मैसेज आया मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग, मैं सुमन बात कर रही हूँ। आनंद जी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो? सुमन मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद जी मौसम बहुत औसम है और गाने भी इतने अच्छे प्ले करते हैं आप, सुबह सुबह बहुत आनंद आता है आपके साथ। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। हमारी भी कोशिश होती है कि सुबह सुबह 4 गाने लेकर आए लेकिन धासु और सॉलिड लेकर।

तो दोस्तों अभी लौट के आएंगे तो बात करेंगे आज का दिन क्यों खास है, आज के दिन क्या स्पेशल है। आप आनंद के साथ हैं तो ऑफकोर्स कुछ न कुछ स्पेशल तो मैं डेफिनेटली आपके लिए लेकर आया ही हूं आज की सुबह भी, और हर दिन की सुबह मैं आपके लिए कुछ न कुछ स्पेशल लेकर आता हूं। और सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता, एक्शन लेने से भी काम होता है ना, सोचने से कुछ नहीं होता बॉस, उस पर लगातार मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाके चीजें अच्छी होती है। फिलहाल नदीम श्रवण का म्यूजिक, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पे, मौसम इतना ऑसम है, तो ये गाना तो बनता है अलका याग्निक जी की आवाज साथ में देंगे कुमार शानू साथ, बहुत ही प्यारा ट्रैक है। वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय कीजिए, आनंद के साथ कुछ कहना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं जी 9837896896। कहीं पे ट्रैफिक है या कहीं पे कुछ अच्छी चीज हो रही है तो डेफिनेटली डू लेट मी नो, व्हाट्सएप करो 9837896896। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आनंद को सुन रहे हैं आप, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:36। आई बी राइट बैक, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। चलिए साथ में एंजॉय करते हैं, 3 2 1 गो एंजॉय।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे आनंद के साथ बने हुए हैं प्रोग्राम में। और मौसम तो देखिए बाहर बहुत ऑसम हो रहा है, अगर आप बाहर निकल चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
2: मॉर्निंग। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन

जुलाई 2026 स्पेशल मॉर्निंग है। चलिए बात करते हैं आज की तारीख के बारे में, क्या कुछ खास है आज 8 जुलाई को, आपके इतिहास के पन्नों में क्या स्पेशल रहा है आज के दिन। चलिए एक नजर डालेंगे आज इतिहास के पन्नों के बारे में, थोड़ी बात कर लेते हैं। साथ ही मौसम के साथ साथ मुझे लगता है कि आपके आसपास जो गतिविधियां हैं ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रेडियो से कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि रेडियो पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सुबह की शुरुआत ऐसी हल्की फुल्की हो तो बहुत ही बढ़िया, जहां एंटरटेनमेंट भी हो, अच्छे डोज भी हो और अच्छी इन्फॉर्मेशन भी हो और एक अच्छा प्रवक्ता भी हो तो मजा आ जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी फिलहाल बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। तो आज का दिन क्यों खास है आपको बताते चले। हर दिन का तारीख जो है बहुत स्पेशल होता है, हर दिन इतिहास के पन्नों में कुछ ना कुछ स्पेशल घटनाएं छुपी होती हैं, महत्वपूर्ण बातें छुपी होती हैं, जिसको पढ़ने के बाद जानने के बाद काफी सारी चीजें हमें पता लग जाती हैं। आपको बताते चले, सन 1858 में ग्वालियर के किले में पैतन के बाद लॉर्ड किंगिंग ने शांति से इसकी घोषणा की थी श्रोताओं आज ही के दिन। और विस्को द गामा ने यूरोप से भारत की प्रथम जल यात्रा आरंभ किया था आज ही के दिन 1497 में, ये हुआ श्रोताओं आज ही के दिन। और बाकी आपको बताते चले, आज के दिन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समूह 8 के देशों में सहमति बनी सन 2005 में आज ही के दिन। एंड आज ही के दिन अनीता जी का जन्म हुआ, जो भारत की प्रसिद्ध जो है काफी पॉपुलर जानी मानी एक ऐसी पर्सनालिटी रही है जिनके बारे में डेफिनेटली बात करना बनता है। एंड ऑफ कोर्स इनके बारे में बात करेंगे, 1991 में इनका जन्म हुआ था। और बात करें वहीं एक और एक ऐसा नाम जिसने बैडमिंटन की दुनिया में कुछ नया किया है, यस भारत के वेरी वेरी पॉपुलर बैडमिंटन खिलाड़ी जी का जन्म हुआ, यस आई एम टॉकिंग अबाउट चेतन आनंद। सन 1980 में इनका जन्म हुआ था श्रोताओं आज ही के दिन। एंड एक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान का आज हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, जिनका नाम है सौरभ गांगुली, 1972 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। एंड हिंदी चलचित्र अभिनेत्री जो बहुत ही पॉपुलर है, 1958 में इनका जन्म हुआ, नीतू सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, आज इनका भी जो है जन्म हुआ श्रोताओं। तो ये आज के दिन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो ऑफकोर्स आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी थी और मैंने इमीडिएटली आप तक पहुंचा दी हैं। बाकी आज के दिन और क्या कुछ खास है, आज की कड़ी में क्या स्पेशल जुड़ रहा है जो आज के दिन को और ज्यादा खास बना रहा है, डेफिनेटली हम आपको बताएंगे थोड़ी सी देर में। आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को श्रोताओं। मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मौसम चाहे कोई भी हो, अपने आप को जो है बदलना बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं होगा तब तक ये जो हमारे आसपास की चीजें हैं ना, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रकृति का आपको अच्छी चीजें दे, तो आपको इसके लिए भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, यानी कि आपको पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने पड़ेंगे, अपने आसपास जो प्लांट है उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनमें पानी देना पड़ेगा समय समय पर, उनका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाकर ही वो बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे, है ना। वैसे ही हमें जितना हम खुद पे काम करेंगे उतना अच्छा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होंगे, उतने अच्छे हमारे पास नए नए रास्ते होंगे। तो नए रास्तों पे अगर आपको चलना है तो नए तरीके से आपको चीजों को करना पड़ेगा। दोस्त आप सुन रहे हैं आनंद को, एक छोटा सा सवाल भी है मेरे पास जिसका जवाब डेफिनेटली आप पहुंचाएंगे। एंड आज का क्वेश्चन दिस इज वेरी सिंपल, अभी लेकर आता हूं ना, आपके दिमाग की बत्ती किलोमीटर चालू करेंगे आज के सवाल के साथ। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। देखिए लगातार हमारे साथ हमारे श्रोता साथी जुड़ चुके हैं। हेलो हाय आनंद जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। जन्नत हमारे साथ जुड़ी हैं आज की सुबह, लिखती हैं आनंद जी मौसम तो है ही औसम, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है आपका रेडियो सुनने में, बहुत ही अच्छी अच्छी और एनर्जेटिक बातें आप करते हैं, सुबह सुबह सुन के दिन बन जाता है। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जन्नत आपने इतना प्यारा मैसेज किया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, एक मैसेज और पहुंचा है मेरे पास। गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है। ये अपने जुल्फी भाई मुझे मैसेज पहुंचा रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये लिखते हैं आनंद जी, देखिए एक चीज मैं कहना चाहता कि किसी के बारे में हमें गलत नहीं बोलना चाहिए, हमें खुद पे ध्यान देना चाहिए और अपने आप को सही करना चाहिए। 101% जुल्फी भाई, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। तारीख भाई जुड़ चुके हैं आज की सुबह मेरे साथ। तारीख जी लिखते हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, फर्स्ट टाइम रेडियो पे जुड़ रहा हूँ आपके, बहुत मजा आ रहा है एंड मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपके लिसनर के साथ। तो व्हाई नॉट जी, आप मुझे शेयर कीजिए, इंतजार कर रहा हूँ मैं आपके मैसेज का 9837896896 पर। नीतू जी मेरी प्यारी लिसनर जुड़ गई है। आनंद वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, आप कैसे हो। मेरा नाम नीतू सिंह है, ये मुझे लाइन पार से मैसेज कर रही है, ये लिख रही है आज की सुबह इतनी प्यारी है, मोटिवेशन लाइन सुनते ही सच में बहुत ही अच्छा लगता है। आनंद जी इसी तरीके से इंसान को जो है समझाते हो, मजा आ जाता है, क्या बात है। और आपके अलावा कोई और ही कर नहीं सकता, सिर्फ आप ही कर सकते हो। थैंक यू सो मच। लाइन पार ढक्का से नीतू जी जुड़ रही है, बिजली घर नहीं, इनकी घर के सामने बिजली घर तो नहीं है, लेकिन कोई कुछ तो है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, वो यही बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, विल बताना है क्यों यार, इतना क्यों नहीं देना चाहिए, बारिश हो रही है नहीं, आप मुझे बताओ पहले मैसेज करके 9837896896। एक छोटा सा वीडियो या फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप करो, देखता हूँ सबसे पहले कौन भेजेगा। बाहर का मौसम सच में बारिश वाला हो रहा है क्या।
ये गाना भी फिर बारिश वाला है, ऐश्वर्या राय बच्चन साथ में भीगी भीगी ये बारिश, ग्रीनरी, ओ माय गॉड, गाना एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। अलका याग्निक, उदित नारायण साहब के पास ताल फिल्म का गाना है।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
3: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
2: साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: कॉल 9045912348।
4: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
9: बिल्कुल जी, नाचते रहिए क्योंकि स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है सुबह के 9:03। वेरी गुड मॉर्निंग जी, आप सुन रहे हैं RJ आनंद। बहुत सारे लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी होते हैं, तो बहुत सारे लोग ऑफिस निकलने में बिजी होते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने दिनचर्या की लिस्ट बनाने में बिजी होते हैं। कौन कौन से काम है आज करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिलहाल अभी मेरे को जो एक सबसे ज्यादा कड़क खबर मिल रही है वो है भैया मौसम की तरफ से। हाँ जी, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। श्रोताओं, आपको बता दें मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में अगले 5 दिनों तक जम के बारिश होने की संभावना जताई है। जी हाँ, अगले 5 दिनों तक जमकर बारिश होने की जो है संभावना जताई है मौसम विभाग ने। और भैया विभाग ने बताया है कि बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, मीरठ, बरेली और झांसी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं लखनऊ, आगरा, कानपुर, अयोध्या और गोरखपुर समेत कई इलाकों में जो है तेज बारिश होने की संभावना बताई गई है। इनफैक्ट मुरादाबाद भी इसमें शामिल है। श्रोताओं, तो हम आपको बता दें कि भैया अगर आप जो है घर से बाहर निकलेंगे तो जरा छाते छाते लेके निकलिएगा, लेकिन अगर आप इस मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं, इस मौसम की बारिश को जो है एंजॉय करना चाहते हैं, तो जरा रुक जाओ यार, कुछ चीजें हैं जिनको आपने ध्यान में रख के ही बारिश को एंजॉय करना है। बाकी मौसम विभाग की तरफ से प्रोटेक्शन जो आई है वो मैंने आप तक पहुंचा दी है, एंड आई रियली होप कि आपको मौसम की अपडेट तो मिली ही होगी। फिलहाल आज का मौसम भी ऑसम हो ही रहा है, एंड ढेर सारे श्रोता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने मुझे पिक्चर शेयर कर दिया, मुझे शिखा ने फोटो शेयर किया है, यहाँ पर मुझे दुर्गेश जी ने फोटो शेयर किया है, शायद बारिश हो रही है बाहर, एंड इन्होंने मुझे दिखाया इनके घर के बाहर कितना प्यारा ग्रीनरी है। थैंक यू सो मच दुर्गेश भाई फोटो भेजने के लिए। ललिता कश्यप जी ने मेरे को फोटो शेयर कर दिया है, वाओ ब्यूटीफुल वेदर। एंड शिखा मेरे को फोटो शेयर कर रही है मानसरोवर से, साथ में मेरे पास जुल्फी भाई ने फोटो शेयर कर दिया, एंड साथ में तारिक भाई आपने भी शेयर कर दिया, जन्नत भी फोटो शेयर कर रही है। बस भाई बस करो, रुक जाओ यार, थैंक यू सो मच इतने फोटोज भेजने के लिए, मुझे पता लग गया मौसम बहुत औसम है। अच्छा, ऐसे वाले मौसम में जो है ना, यू नो, हर किसी का कुछ ना कुछ स्पेशल खाने का मन करता है कि यार कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, कुछ तो डेफिनेटली बढ़िया सा होना चाहिए। लेकिन जब ये बारिश आती है तो आपको क्या याद आता है? बारिश जब आती है तो आपको क्या अच्छा लगता है? मतलब खाने पीने की चीजें याद आती हैं, या बारिश जब आता है तो किसी की याद आती है? बारिश जब होती है तो अपने बचपन के दिन याद आते हैं। बारिश जब होती है तो आपको क्या चीज है जो बहुत ज्यादा मिस करते हो, है ना? आप मुझे ये बताओ जरा मैसेज करके 9837896896। एक बढ़िया सा सवाल लेकर आता हूँ इस दरासी देर में। 9:06 हो गए मुरादाबाद से। अगर आप गुरुग्राम जाना चाहते हैं तो आपके लिए फ्री, मतलब जो है यहाँ पर एक अच्छी अपडेट है जो फ्री की मैं आपको देने वाला हूँ। ये अपडेट आपको कहीं और नहीं मिलेगी, एक्सक्लूसिव फ्री अपडेट है, डेफिनेटली मैं आपको दूंगा। अभी अगर आप मुरादाबाद से गुरुग्राम जाना चाहते हैं तो कैसे आप जा सकते हैं, एंड आपके लिए कौन सी बस की फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है, कब कब ये बस चलेंगी, सारी कड़क अपडेट आपको मैं दूंगा। एंड एक रविवार और पूरा परिवार जो कैंपियन, इसके बारे में भी बात करेंगे अभी। तो बहुत सारी चीजें हैं, एंड आज कौन कौन से स्पेशल डेज मनाए जाते हैं इस पे भी हम डेफिनेटली चर्चा करने वाले हैं। तो बताने के लिए बहुत कुछ है यार, लेकिन पहले शुरू करते हैं आज के सफर का ये फुल ऑन माहौल, जिससे होगी दूसरी घंटे की शुरुआत। 6:06 हो गए स्टेशन क्लॉक में आनंद को सुन रहे हैं आप लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आपकी शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आनंद विद यू। वेंसडे की सुबह 8 जुलाई होगी, अभी लौट कर आता हूँ कड़क बातों के साथ, जरा डांस करते हैं साथ में, पाजी शुरू हो जाओ, जरूर अरे शुरू हो जाओ।

0: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
1: अरे आनंद इज बैक।

आप आनंद के साथ हैं, सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा गाना निकाला है, ये गाना यू नो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं अपने शो पे प्ले कर रहा हूँ, आई एम श्योर आपको भी थोड़ा सा फ्लैश बैक में तो ही जाएगा। शाहरुख़ की आवाज साथ में, अलका याग्निक देंगी साथ एंड के भी दे रहे हैं साथ।

0: ना, क्या बात है यार, गाना इतना बढ़िया, मतलब सुन के मजा ही आ गया यार। मैं सच बताऊं, कुछ गाने इतने बढ़िया होते हैं ना जिनको सुन के सच में मजा आ जाता है यार, और ये वो गाने हैं जो फ्लैश बैक में लेकर चले जाते हैं जी। नौ बज के 16 मिनट का समय हो रहा है हमारे स्टेशन क्लॉक में। इस वक्त आप आनंद को सुन रहे हैं जी, जहां बातें हो रही हैं आपके साथ हमारी ढेर सारी, एंड बहुत सारे मैसेज आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से थैंक यू करना चाहते हैं यार। सच में बहुत प्यारे प्यारे संदेश आप लोग पहुंचा रहे हैं, डेफिनेटली हम आपके संदेश को पढ़ेंगे, लेकिन जरा कुछ एड ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी से इनको सुनकर जल्दी से वापस आते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
6: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे

0: मेरे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
1: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहां हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
0: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: अब क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी
6: मम्मा का नलायक बेटा।
7: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
8: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
9: मॉर्निंग। ऑफकोर्स यार, तभी तो आपके दिमाग की बत्ती गुल मीटर चालू होता है, क्योंकि ये है बिंदास मॉर्निंग। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो हम लोग मसाले वसाले खाते हैं, इसके बारे में एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग खबर मैं पढ़ रहा था अभी, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले आपके लिए एक सवाल पूछा जाए। जैसे आपको पता है ना, हम लोग कई बारी बात करते हैं कि भैया भारत का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप बताते हो ये। हम कभी कभी पूछ लेते हैं भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, बताते हो आप ये। तो आज हम आपसे पूछेंगे, मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ठीक है, आप मुझे जरा ये बताइएगा, मसालों का जो बगीचा है वो भारत के कौन से राज्य को कहा जाता है? कितने लोगों को पता है जरा, मैं भी तो जानूं। आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा 9837896896 पे मैसेज करिएगा, मैं आपको क्लू भी दे दूंगा, डोंट वरी, थोड़ी देर में दूंगा, बट उससे पहले जरा देख लूं, क्या पता आप लोग को पता हो मसालों का जो बगीचा है वो भारत के कौन से राज्य को कहा जाता है। गूगल नहीं करने का अंकल। अरे भाई साहब, आपसे बात कर रहे हैं। चलिए मुझे मैसेज करिएगा फटाफट से 9837896896 पे, हमें इंतजार रहेगा कि भैया मसालों का जो बगीचा है वो भारत के किस राज्य को कहा जाता है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज की सुबह। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने सारे मैसेज मेरे पास पहुंच गए हैं आज की सुबह, मैं डेफिनेटली एक एक करके सभी को शामिल करता जाऊंगा इसी चैनल पर, क्योंकि आप सुन रहे हैं आनंद को। फिर बाद में ऐसा होता है बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं और जल्दी जल्दी में कई बार छूट भी जाते हैं, है ना, तो मैं एक काम करूंगा सारे मैसेज को जो है लगातार यहां पर पढ़ता भी रहूंगा और आपके साथ बातचीत भी करता रहूंगा, ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे और आप हमसे नाराज भी नहीं होंगे फिर, है ना। तो हम ऐसे ही करेंगे, आपके मैसेज को हम पढ़ते भी रहेंगे और साथ ही साथ जो हम सवाल जवाब कर रहे हैं वो भी हम लगातार कंटिन्यू रखेंगे। गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, हाय मेरा नाम प्रीतम है। हाय प्रीतम, गुड मॉर्निंग। ये मेरे पास हनुमान मूर्ति से मैसेज पहुंचा है, इन्होंने लिखा है अपना नाम तरन्नुम। हाय गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप तरन्नुम जी? एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है यहाँ पर बसंत बिहार से, हाय आनंद हाउ आर यू, मैं बढ़िया हूँ जी। आप लोग अपना नाम भी लिख दिया करो, हाय माय नेम इज कपिल, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? सर आप कैसे हो? कपिल आई एम एब्सोल्युटली गुड मेरे भाई, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग जी, रामपुर से शमा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की मॉर्निंग। सहारनपुर से मेरे प्यारे लिसनर जोन रोजी पलविलिस लिखते हैं, आनंद हैप्पी वेंसडे मॉर्निंग, आप कैसे हो? ऊपर वाले की नजरों में मत गिर जाना, जमीन वालों का क्या है, ये तो अपने मतलब के हिसाब से किसी को भी अच्छा बुरा बना देते हैं। ट्रू यार, आई 100% एग्री विद यू, बहुत ही बढ़िया लिखा आपने। आगे बढ़ते हैं, एक मैसेज आ गया है मोहन स्वरूप जी का, रामपुर से जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। एक और मैसेज मेरे पास पहुंच रहा है यहाँ पर, हाय गुड मॉर्निंग माय नेम इज पल्लवी, गुड मॉर्निंग पल्लवी। एक मैसेज और मेरे पास पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है, माय नेम इज रूम झुम, ब्यूटीफुल नेम। चलो गाना सुनते हैं, जल्दी से लौट कर आएंगे। आप मुझे बताओ भारत के जो मसालों का बगीचा है वो किसको कहा जाता है, आप मुझे मैसेज करना फटाफट से, हम इंतजार करेंगे। मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को कहा जाता है, मैं सवाल थोड़ा सही कर देता हूँ फटाफट से, जो मसालों का बगीचा है वो भारत के किस राज्य को कहा जाता है, आप मुझे मैसेज करके बताएंगे फटाफट से। कुछ गाने आ रहे हैं, उसके बाद मुरादाबाद की लोकल फॉर वोकल की बात करेंगे, मुरादाबाद शहर के बारे में बात करने वाले हैं, मुरादाबाद शहर में क्या कुछ खास चीजें चल रही हैं, अपने लोकल फॉर वोकल पे बात करना तो बनता है यार, क्योंकि आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। हमारी कम्युनिटी के लिए सही इन्फॉर्मेशन लेकर आना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है यार। फिलहाल आयुष्मान खुराना का ये बेहतरीन ट्रैक बरेली की बर्फी से निकल गया, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग।

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलान।
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

ब्यूटीफुल ट्रैक यार, सच बताऊं तो ये गाने सुन के सच में मजा आ जाता है। थोड़े से बढ़िया वाले गाने तो होते ही, लेकिन थोड़े से एनर्जी वाले गाने होते हैं। भैया फटाफट से अब आपको कड़क अपडेट बता देता हूँ कि अब इंडोनेशिया में भी चलेगा भारतीय यूपीआई। जी हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि भैया अब नोट बदलने की झंझट होगी खत्म। जी हाँ, आपको बताते चलें भाई साहब फटाफट से कि अब जो है इंडोनेशिया में भी यूपीआई की सर्विस अवेलेबल हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी बात है। मंगलवार को जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम से जुड़ेगा अब जो है ये यूपीआई, यानी कि इससे भारतीय यात्रियों के लिए स्थानीय पेमेंट ऐप इस्तेमाल होकर के इंडोनेशिया में भुगतान करना उनके लिए थोड़ा सा इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा। इससे इंडोनेशिया जाने वाले भारतीयों के लिए नोट बदलने की झंझट भी खत्म हो जाएगी। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़िया और हेल्पफुल भी होती है।

बात कर लेती हूँ उत्तर प्रदेश की। तो भाई साहब उत्तर प्रदेश के बारे में बात करना तो बनता है। भाई साहब बताया जा रहा है कि अब खेल खेल में नंबर वन बनेगा अपना उत्तर प्रदेश। जी हाँ, हमारे सीएम साहब यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत ही अच्छा मैसेज अपनी जनता के नाम, और बहुत जरूरी है कि भैया उत्तर प्रदेश खेल की दुनिया में एक नई पहचान बना रहा है। एंड अब जो है ये जो उत्तर प्रदेश है वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो ही रहा है, नो डाउट। लेकिन खिलाड़ियों के नाम एक विशेष संदेश जारी करते हुए हमारे प्रदेश में जो है खेलों में देश जो है वो नंबर वन राज्य बनाए, और खेल की दिशा में जो है तेजी से कार्य जो है हमारा चल रहा है, और सरकार जो है खिलाड़ियों की बेहतर प्रशिक्षण और उनकी आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनको जो जरूरी उनकी चीजें हैं उनके लिए सहयोग देने का काम कर रही है, और बहुत ही अच्छी बात है ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे, जो उनकी मेहनत है वो और ज्यादा रंग लेकर आ सके, उनके जो प्रयास है वो लगातार जो उनके एफर्ट्स हैं उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिल सके। उत्तर प्रदेश का जो खेल इस तरह वो लगातार ऊंचा हो रहा है, एंड मुझे भी लगता है कि यार ये बहुत ही अच्छी चीज है। जो खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं अपने देश के लिए नेशनल इंटरनेशनल मंच पर खेलते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग स्पेशल होना ही चाहिए। एंड अपनी बात करें उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सच में यार अपने उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा आगे लेकर आए हैं। सो ऐसे तो अपने खिलाड़ी के लिए डेफिनेटली बिग शाउट जाना ही चाहिए, बिग शाउट आउट। एंड बिग शाउट आउट तो यार आपके नाम भी जाना चाहिए, बिकॉज इतने सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किए ना, थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस के लिए। बाकी जो बारिश हो रही है ना, इस बारिश के मौसम में नहाना जो है बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, लेकिन बारिश के पानी जो है ना भाई साहब कितना ज्यादा आपके लिए सही है, कितना ज्यादा हार्मफुल है ये आपको पता भी नहीं होगा। तो इस पे डेफिनेटली भी हम बात करेंगे, और मैं इमिडिएटली बात कर लेता हूँ अभी मुरादाबाद में, जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी शुरू हो रही है। जो लोग मुरादाबाद से गुरुग्राम जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बस सेवा जो है शुरू हो गई है। हाँ जी, मुरादाबाद से गुरुग्राम के लिए एसी बस सेवा का जो शुभारंभ हो गया है, ये सुबह 9 बजे से जो है गुरुग्राम के लिए बस चलेगी, दोपहर 3 बजे वहां पहुंचेगी। इसका जो चार्ज होगा वो 442 होगा, यस यानी 442 रुपए का इसका किराया रहेगा। एंड आप बहुत इजीली आरामदायक सफर के साथ गुरुग्राम पहुंच सकते हैं। एंड ये यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ही इस कदम को जो है उठाया गया है, ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। तो जो लोग गुरुग्राम मुरादाबाद से गुरुग्राम की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली आप जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और इसके लिए आपको सुबह 9 बजे बस स्टैंड पर पहुंचना होगा, गुरुग्राम की बस जो है दोपहर 3 बजे आपको वहां पर छोड़ देगी। चलिए श्रोताओं, फिलहाल ये एक अच्छी खबर मुरादाबादी के लिए। बाकी अगर आप भी हमारे साथ ऐसी कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे मैसेज करना पड़ेगा 9837896896। यस, और आज तो मैंने आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछा है, डेफिनेटली उसका जवाब आप मुझे दे सकते हैं 9837896896 पर मैसेज करके। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ढेर सारे श्रोता मैसेज कर रहे हैं। 9:34 हो गया, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ऑल न्यू ऑन एफएम मुरादाबाद, 89.6 रेडियो चल रहा है। भाई साहब आपके लिए तो यहाँ पर जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, बहुत बढ़िया जो है आप लोग आंसर्स कर रहे हो, थैंक यू सो मच यार। सब लोग बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके व्हाट्सएप के लिए, आपके मैसेजेस के लिए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक्सफुल टू यू एवरीबॉडी। ऐसे ही आप प्यारे प्यारे मैसेज करते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, प्यारे प्यारे संदेश जो है हम तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत के लिए। आने वाला अगला गाना आप ही के प्यार में निकल रहा है, मेरी रेडियो स्टेशन से फुल ऑन वाइब आपको मिलती है। दिस इज वेंसडे की सुबह, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, जरा सी देर में लौट कर आता हूँ। आपने जो व्हाट्सएप किए उनको शामिल करेंगे, और कुछ और लेटेस्ट गलत खबरें हैं मुरादाबाद से जुड़ी हुई जो आप तक पहुँचानी है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। फिलहाल कुछ कहना चाहते हो तो नंबर आपको मैंने बता दिया, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ, प्लीज फॉलो कीजिए, वहां पर भी सारी कड़क अपडेट आपको मिल जाती है। फिलहाल कड़क गाना निकाल रहा हूँ आज की सुबह, फ्लैशबैक में आपको ले जाएगा ये गाना, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। सो 3, 2, 1, गो स्टार्ट।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग। बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद और ढेर सारे मैसेज हमारे पास आ गए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एक गाना अच्छा सा आ रहा है, 9:40 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में। आप आनंद को सुन रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आपको पता नहीं चल रहा है यार, ना मुझे पता चल रहा है, टाइम कितनी तेजी से निकल गया यार। दिस इज बिंदास मॉर्निंग आनंद विद यू। जरा सी देर में आता हूँ लौट के कुछ और कड़क बातों के साथ। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। मौसम बहुत ही ऑसम हो रहा है, जरा मैं भी ये मौसम फटाफट चेक करके आता हूँ।

चुरिया ओए होए होए होए जिन जिन का है मेरे दिल पे गिराए रे बिचुरिया बिचुरिया हाँ क्या गाना है यार पूरा हैप्पी सॉन्ग मरिया तो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से भी आप एंजॉय करेंगे गाना गुड मॉर्निंग है जी सारे लोग कितने बढ़िया है जी सारे लोग मन ने इतने अच्छे मैसेज करें जी चलो यार आगे बढ़ते हैं देखो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है ना तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना बहुत जरूरी है आपको सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है अगर आपको आपका विजन नहीं पता है आपको आपका गोल नहीं पता है ना तो आप भटकते रह जाओगे बॉस मैं आपको सच बता रहा हूँ इसीलिए अपने मिशन को जरा पहले ध्यान में रखो कि आपने करना क्या है पहले उसको थोड़ा सा जो है सोच लो कि आपने करना क्या आपने जाना क्या है कई बार हमें जाना कहीं और होता है हम पहुंच कहीं और जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमें डेस्टिनी कहां पर है ना बट अगर आपको पता है कि आपको पहुंचना कहां है तो भाई आप पहुंच जाओगे उस मंजिल पर जिन लोगों की आंख खुल चुकी है उनको वेरी गुड मॉर्निंग और जो लोग जस्ट अभी रेडियो खोल के मेरे को सुन रहे हैं उनको भी भैया स्वागत अभिनंदन है आपका भी कोई बात नहीं जी हम बड़े दिल वाले हैं आपका वेलकम बैक कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ आप देर से ही सही बट एटलीस्ट मेरी क्लास में शामिल तो हुए चलिए यार फिलहाल आगे बढ़ते हैं ढेर सारी अपडेट तो मैं आपको देता ही रहता हूँ पूरे मुरादाबाद की खबरें आप तक पहुंचती हैं हमारे रेडियो के जरिए और जो पॉजिटिव चीजें होती हैं शहर के अंदर वो सारी पॉजिटिव अपडेट मैं आप तक जो है फटाफट से पहुंचा देता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर बहुत जरूरी है सही जानकारियों को जो है आप तक पहुंचाना और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वो सारी कड़क अपडेट बता सकें जो कहीं ना कहीं आपके डेली रूटीन में काम आती है फिलहाल आगे बढ़ते हैं एंड आज दिन है बहुत ही खूबसूरत सा आपको भी पता है बुधवार का दिन है इसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं एंड आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर पहले मैं आपको एक कड़क अपडेट देने वाला था एक बहुत ही लेटेस्ट यू नो चीज आपको बताने वाला था फिर मैंने सोचा यार इसको थोड़ी देर में बताते हैं तो फटाफट से अभी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो भाई साहब अगर आपको जो है अब अपने आधार कार्ड पर एड्रेस अपडेट कराना हो या आपको यू नो कुछ भी चेंज करना तो आधार सेंटर जाने की जरूरत ही नहीं है आप जो है इनकी वेबसाइट पर जाके इनकी ऐप की मदद से भी आप जो है अपने आपसे ही सारी चीजें ठीक कर सकते हो जितने भी आपको लगता है कि चीजें आपने चेंज करानी है वो डेफिनेटली करा सकते हो घर बैठे ही आजकल देखिए डिजिटल जमाना हो रहा है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है तो सारी चीजें आपके हाथ में है आपको कहीं जाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है आप घर बैठे बैठे आजकल तो यूट्यूब पे इतने सारा कंटेंट अवेलेबल है आप देखकर भी चीजें कर सकते हो एंड दिस इज वेरी सिंपल यस तो मैं वही बता रहा हूँ कि अब आधार कार्ड में पता अपडेट कराने के लिए जनसेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं है आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं है आप UIDAI की जो नया आधार ऐप है इसके जरिए घर बैठे ही आप जो है बहुत ही आसानी से इसकी हेल्प लेकर अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं इसके लिए आपको जो है ऐप में एड्रेस अपडेट विकल्प चुनना है मतलब जो एक ऑप्शन होता है एड्रेस विकल्प वाला उस ऑप्शन को शॉर्टलिस्ट करना है जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज है वो अपलोड करने होंगे उसके बाद फिर 75 रुपीज का जो है आपको ऑनलाइन शुल्क देना पड़ेगा उसके बाद ही जो है आप इसमें अपना एड्रेस चेंज कर पाएंगे ऐप से सुन रहे हैं आप ठीक है छोटा सा अमाउंट है इसको देकर आप जो है खुद से ही अपनी सारी जो भी चीजें हैं वो आप चेंज कर सकते हैं ये अच्छी चीज है तो आपके फोन में ये ऐप भी डेफिनेटली होनी चाहिए ठीक है आधार आपको आप डेफिनेटली डाउनलोड करके रखिए बहुत जरूरी है आपको छोटी छोटी चीजें उसमें पता लग जाती है फिलहाल मैंने आज आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था जिसपे आप लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे अच्छे मैसेज किए हैं थैंक यू वेरी मच इतने अमेजिंग मैसेजेस के लिए आई एम सो हैप्पी बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करके बताया कि आनंद जी ये वाला सही जवाब है एंड आई एम वेरी थैंक्सफुल टू यू एवरीबॉडी आप लोग सच में बहुत अच्छे मैसेज करते हो यार अभी अपन के पास एक सवाल है जिसका जवाब आपने मेरे को देना ही देना है एंड वो कौन सा सवाल है डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैंने जो अभी आपसे सवाल किया था वो तो जान लो मैंने आपसे पूछा था मसालों का बगीचा भारत के कौन से राज्य को कहा जाता है जो मसालों का बगीचा है वो कौन से राज्य को कहा जाता है ये आपने मेरे को बताना था व्हाट्सएप करके एंड आई एम टेलिंग यू मुझे पता है कि सारे लोग बहुत ज्यादा बढ़िया हैं और मुझे पूरा यकीन है सब धाकड़ आंसर देंगे अब देखो मेरे पास सही जवाब पहुंच चुके हैं यहाँ पर आज की सुबह और एक नहीं बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं एंड ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था थैंक यू सो मच सब लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज किए हैं मैं सभी का थैंक यू करना चाहता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन सब लोगों ने सच में बहुत प्यारे प्यारे मैसेज किए हैं गाइज थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ और एक गाना आप सभी के लिए यहाँ पर बजाना चाहता हूँ बहुत प्यारा गाना है सुनते हुए आगे बढ़ेंगे देखिए हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार जुड़े हैं सही जवाब के साथ थैंक यू सो मच साहब गुड मॉर्निंग आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी सही जवाब देने के लिए हमारे साथ विक्की सागर जुड़ गए हैं लिखते हैं रेडियो वाले आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग एंड विक्की सागर जी आपके साथ हैं आनंद भाई बारिश हो रही है मुरादाबाद में लेकिन बहुत मजा आ रहा है आपके साथ थैंक यू सो मच यार
हमारे पास मैसेज पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? ये मैडम लिखती है कि असली मसालों का बगीचा तो आपका लैपटॉप के व्हाट्सएप पर है, जहां पर इलायची से भरा हुआ प्यारा सा गुड मॉर्निंग वाला मैसेज है, अदरक वाली दुआएं हैं और ब्लेसिंग वाली एक कप चाय है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, जो आपकी व्हाट्सएप पे दूर दूर से पहुंचती है आपके रेडियो पर। एब्सोल्युटली सही जवाब मेरे पास पहुंच रहा है यहाँ पर। हाय गुड मॉर्निंग बबली अंजान, गीता कश्यप, ललिता जी मुझे सही जवाब पहुंचा रहे हैं आज की सुबह। यूपी मुरादाबाद से रणवीर सिंह जुड़ रहे हैं मेरे साथ, लिखते हैं आपको सुबह की हल्की हल्की किरणों वाला गुड मॉर्निंग, हाउ यू, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी, लिखते हैं ठंडी हवाएं चल रही हैं, मन को सुकून दे रहे हैं आपके गाने, एंड बहुत बहुत धन्यवाद मुरादाबाद सुनने वाली सभी श्रोताओं को, वेरी गुड मॉर्निंग, सही जवाब भी आपने बताया है, थैंक यू सो मच यार। मोहम्मद कामिल जी जुड़ गए हमारे साथ जिला रामपुर ग्राम खेरा टांडा से एकदम सही जवाब के साथ आज की सुबह, क्या बात है। सुबह सुबह जरीफ बाबू जुड़ गए हैं राइट आंसर के साथ, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नौनेश कुमार भी, टीना मेरे साथ जुड़ी है यहाँ पर, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है आपके, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड इन्होंने लिखा है आनंद जी मसालों का बगीचा एक्सेट्रा डैश, इन्होंने बता दिया सही जवाब, बताऊंगा अभी आपको। हमारे साथ जुड़ी है अलका वर्मा बुद्धि बिहार से सही जवाब के साथ, एंड ये सही जवाब मुझे पहुंच रहा है यहाँ पर रामपुर से शमा जी का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर मोहम्मद, ये कौन है, तारीख जी जुड़े हैं साथ में, हमारे साथ रिजवान खान साहब भी जुड़ चुके हैं एंड सही जवाब के साथ, साथ में जुल्फी भाई भी मुझे सही जवाब पहुंचा रहे हैं। गाइज बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, डेफिनेटली मैं अभी पढ़ूंगा और बाकी के एक सवाल के साथ लौट कर आता हूँ। फिलहाल ये गाना सुनते हैं सब तेरा, बहुत ही प्यारा ट्रैक, इसके बाद वापस आते हैं।

0: ये दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: नेक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
2: चलिए, कड़क क्वेश्चन का टाइम हो रहा है यहाँ पर, और अगर मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा तो कुछ तो नाइंसाफी हो जाएगी।
3: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
4: अरे आनंद इज बैक।
5: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

रहिएगा। आज का मेरा पहले सवाल सुन लो, उसके बाद जो है इस गाने को सुनेंगे आप मेरे साथ। ऑफ कोर्स यार, बहुत ही अच्छा गाना है, बादशाह से निकाल रहा हूँ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक। और इस गाने के पीछे का रीजन क्या है चलाने का, डेफिनेटली आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वेंसडे की सुबह है, आज 8 जुलाई है, 9:55 हो रहे हैं। एक्सक्लूसिवली मैंने आपको टाइम बता दिया है, एंड अभी आपने मेरे सवाल का जवाब देना है। अगर आपने मेरे इस सवाल का जवाब दिया मुरादाबादी, तो आप जीतेंगे ढेर सारी तालियां और बहुत सारा आज की तरफ से बिग शाउट आउट वाला एक यू नो टॉकिंग लव में आपको मैं क्या देने वाला हूँ आज, सुपरस्टार का टैग। ऑफकोर्स यार ये तो आपको मिलता ही है। सो एक बहुत ही अल्टीमेट ट्रैक है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है ये गाना कौन सा है। फटाफट व्हाट्सएप करेंगे आप अपने नाम के साथ, उठाएंगे अपना फोन, टाइप करेंगे अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करेंगे आप मेरे व्हाट्सएप पर। बहुत ही प्यारा ट्रैक है, आइडेंटिफाई करना है आपको ये जो म्यूजिक है, जो गाना है, ये जो मैडम कहना चाह रही है, ये कौन सा गाना है। चलो मैसेज करो मुझे फटाफट से, उठाओ अपना फोन, टाइप करो अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, सेंड कर दो उसको मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896 पर।

बहुत ही प्यारा ट्रैक था यार, बहुत ही खूबसूरत गाना भी आपने एंजॉय कर लिया बादशाहों से। एंड अभी फिलहाल बात कर लेते हैं दोस्तों आज के जिन दिन जन्मे बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में। तो यस, आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं हिंदी सिनेमा की सदाबहार और बेहद ही वर्सेटाइल एक्टर, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नीतू कपूर जी, जो है आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। एंड आज उनका जो है बर्थडे होता है, तो तमाम सारी फिल्में जो है उन्होंने हमें दी हैं। एंड नीतू जी ने एक तो कमाल का काम किया यार, मतलब यादों की बारात, रफू चक्कर, अमर अकबर, एंथनी, काला पत्थर, ऐसी तमाम यादगार फिल्में जो है उन्होंने हमारे लिए दी हैं, जिसमें उनकी एक्टिंग काफी दमदार और सॉलिड रही है। तो एफएम मुरादाबाद 89.6 पूरी टीम की ओर से नीतू सिंह जी को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें सदा स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे और एक लंबी उम्र दे, ताकि वो ऐसे ही कुछ न कुछ बेहतरीन करती रहें। वही हैप्पी बर्थडे नीतू जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आज की तारीख में आपका भी हैप्पी वाला बर्थडे होता है तो आप अपना बर्थडे ऑफकोर्स इनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। एंड बहुत ही कमाल की फैबुलस एक्टर हैं। स्टेशन क्लॉक में फिलहाल वक्त हो गया है सुबह के 10:01 हो गए हैं। देखो 2 सेकंड, 3 सेकंड, अरे यार मैं सेकंड क्यों गिन रहा हूँ, क्यों ही गिन रहा हूँ मैं। फिलहाल मैंने आपसे एक बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन पूछा है एंड मैं आपको अभी क्लू भी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आंसर्स वो वाले आ नहीं रहे, तो मैं आपको क्लू दूंगा। पहले इसको सुनो यार। श्रेया घोषाल की बहुत ही प्यारी आवाज, चीनी से भी मीठी आवाज है श्रेया मैम की। आप मेरे को बताओ, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, अब आप डेफिनेटली बता दोगे ऑप्शन ए सैयारा या ऑप्शन बी हसी बन गए। इन दोनों में से कोई एक राइट आंसर है, ऑप्शन ए सैयारा या ऑप्शन बी हसी बन गए, इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर है आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। आज की सुबह जो ये म्यूजिक चल रहा है, जो ये गाना गाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन सा गाना है, ऑप्शन ए सैयारा या फिर ऑप्शन बी हसी बन गए। जरा सुनो, फिर से मैं प्ले कर रहा हूँ आपके लिए इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। ये लीजिए, कौन सा ये ट्रैक है बताओ जरा।

0: ऑप्शन ए सैयारा या फिर ऑप्शन बी हंसी बन गए, इन दोनों में से कोई एक है राइट आंसर।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
2: मॉर्निंग। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
6: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
6: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: कोई मिल गया,
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: चलिए दोस्तों, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और अभी मेरे पास व्हाट्सएप तो डेफिनेटली पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आज का मेरा सवाल, बट दिस इज वेरी सिंपल यार। इतनी बार आप इस गाने को सुनते हैं, ऑफकोर्स आप बता दोगे। मेरे को पता है बहुत इजी है आपके लिए, इतना ज्यादा टिपिकल भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मैंने आपको दो ऑप्शन देखे ही आपके लिए रास्ता बहुत आसान बना दिया है, आई एम श्योर अब तो आप डेफिनेटली बता ही दोगे। फिलहाल एक काम करते हैं, जब तक आप मुझे बता रहे हो तब तक ये गाना सुनते हैं। बहुत ही प्यारा ट्रैक, टाइटल ट्रैक है, इसे सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ ही आप डोंट गो।

भी मेरी आवाज भी झेल लिया करो यार. ओह माय गॉड. दस बज के 8 मिनट हो गए यार.

वेंसडे की सुबह आनंद के साथ हैं आप। बहुत ही प्यारा गाना भी आपने सुन लिया यार, लेकिन सच बताऊं बॉलीवुड वाले गाने अच्छे बनाते हैं, सुन के मजा आ जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ढेर सारे मैसेज मेरे पास आ गए हैं जिनको पढ़कर मुझे मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। फिलहाल मेरा जाने का समय हो गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा था यार, जिसका जवाब जो है बहुत सारे लोग नहीं दे पाए, इस बात का मुझे दुख हो रहा है यार। आज की सुबह मतलब यार इतना भी ज्यादा टिपिकल नहीं था यार आपके लिए कि आप इसको पकड़ ना पाओ। इतना सिंपल क्वेश्चन था यार, इतना बढ़िया मजेदार सवाल था, इतना ईजी सवाल था यार। मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुनते तो शायद थोड़ा सा ईजी हो जाता आपके लिए ये। आपको दो ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ए सैयारा या ऑप्शन बी हसी बन गए हो, एंड एब्सोल्युटली मेरे पास सबसे पहले से जवाब आया तारिक भाई का एंड साथ में तरन्नुम जी का, इन दोनों ने मुझे एकदम सही वाले जवाब दिए हैं। कांग्रेचुलेशन आप दोनों के लिए, तालियां। एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन बी हसी बन गए हो, श्रेया घोषाल का बहुत ही प्यारा गाना है यार। थैंक यू सो मच, आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयां। तारिक जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही सुपरफास्ट काम किया और बहुत ही बढ़िया आपका नाम और बहुत ही बढ़िया आपका काम। राइट आंसर यार, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक था यार। श्रेया घोषाल की आवाज इतनी प्यारी, इतना अगली बार अगर कोई आपसे पूछे तो जरा समझ लेना यार। थैंक यू सो मच वेल आपके लिए, आप सभी के लिए थैंक यू वेरी मच। रिजवान खान साहब जी ने भी सही जवाब दिया था, लिखा था थोड़ा मुश्किल है आज का सवाल आनंद जी, लेकिन जवाब यही ऑप्शन बी। रणवीर सिंह जुड़े थे। आनंद सर कैसे हालचाल है आपकी? गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है?

0: चलिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच हमारे साथ आप जुड़े, आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए, थैंक यू सो मच। रणवीर जी आपने भी मैसेज किया उसके लिए थैंक यू। मेरे पास नासिर हुसैन साहब का मैसेज आ रहा है, गुड मॉर्निंग आनंद कैसे हैं आप, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये मैसेज मुझे इनका पहुंचा है, इनका नाम डेफिनेटली पढ़ूंगा मैं, लेकिन उससे पहले जरा ये नासिर भाई का मैसेज पूरा पढ़ लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यारे प्यारे व्हाट्सएप किए हैं एवरीवन, थैंक यू सो मच। लिखते हैं आनंद भाई कैसे हालचाल है, बारिश की हर बूंद हमें यही सिखाती है कि गिरना जरूरी है लेकिन हर बार उठकर फिर से आगे बढ़ना ही असली जीत है। ईश्वर करे आज की ये ठंडी फुहारें आपके जीवन में सुकून खुशियां और नई सफलताओं की बारिश लेकर आए। सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। सेम हियर मेरे भाई, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने किया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद कैसे हालचाल है आपके, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। लिखते हैं आपको सुन के बहुत मजा आता है, थैंक यू प्रीतम, थैंक यू सो मच। हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कामिनी है, ये मुझे सही जवाब पहुंचा रही है कामिनी, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। टीना ने एकदम सही जवाब दिया था कुंदनपुर से। हेलो जी, जय श्री राम, कैसे हाल चाल है। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना कांट रोड लतावली से जुड़े हैं आज की सुबह। मेरे पास मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग जी कैसे हाल चाल है, वो मसाले वाला क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब सुरेश कुमार जुड़ रहे हैं मेरे साथ आज की सुबह काशीपुर उत्तराखंड से। लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग कैसे हाल चाल है, मुझे बारिश में नहाना बहुत पसंद है, बारिश के मौसम में मुझे बाइक से ऑफिस में जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ताकि मैं उस पूरे मौसम का आनंद ले सकूं, और बारिश के मौसम में मुझे जो है कागज की नाव कर उसपे यू नो बारिश में उसको चलाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है यार, माइंड ब्लोइंग, आपने तो मतलब मजेदार बना दिया ये बात बोल के माहौल। एंड इन्होंने लिखा है, जो आपने पूछा था मसालों वाला जो गढ़ है वो कौन सा है, तो वो केरला है, दिस इज राइट आंसर एब्सोल्युटली भाई। बीबी राधिका मेरे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं आनंद अंकल गुड मॉर्निंग, भाई आई एम नॉट अंकल यार, दिस इज मी आनंद, आप मुझे अंकल मत ही बोलो यार, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। गौरव टेलर जुड़ गए नवीन नगर से, लिखते हैं आनंद भाई आप कैसे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है, जानकारियां बहुत ही अमेजिंग आप लेकर आते हो, मौसम बहुत ही औसम है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन नगर से जुड़ रहे हैं गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पास मैसेज पहुंचा है यहाँ पर, हाई गुड मॉर्निंग माई नेम इज पल्लवी, गुड मॉर्निंग रामलीला ग्राउंड से मेरे साथ जुड़ी है काशिफा, गुड मॉर्निंग जी, साथ में मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बड़े प्यारे दोस्त हमारे जिनके नाम है आदित्य, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। एंड मेरे पास सही जवाब पहुंचा है रामपुर से शमा जी का, मयंक वर्मा जुड़े हैं पीतल नगरी से, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है आपके, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। जय श्री राम आनंद जी, मैं मुंबई से मैसेज कर रहा हूँ, बबलू जी मेरा नाम है, बबलू थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंच रहा है यहाँ पर, हाय गुड मॉर्निंग शिखा भी जुड़ चुकी थी राइट आंसर के साथ मानसी रोवर से, और अलका वर्मा जी जुड़ चुकी हैं मेरे साथ आज की सुबह, राधे राधे आनंद जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, गुड मॉर्निंग आपको भी, एंड आई एम श्योर इन्होंने भी ये जवाब दिया है।
1: राधे राधे आनंद जी, जो आप म्यूजिक चला रहे हैं वो फिल्म हमारी अधूरी कहानी मूवी से है, ये विद्या बालन पे फिल्माया गया था, और उसके बोल है हाँ हसी बन गए,
0: 10:13 हो गए गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं बहुत अच्छा लगता है। एंड आज की तारीख में अगर बर्थडे आप में से कोई सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत बहुत बधाइयां, आप ऐसे ही अपने दिन को सेलिब्रेट करते रहिए, एंड किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है तो बहुत बहुत बधाइयां।

फिलहाल मैं निकलता हूँ। नीतू कपूर जी का बर्थडे आज हम सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही प्यारी सेलिब्रिटी हैं, इनके बारे में बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है आज मैसेज किया, आप सभी का दिल से थैंक यू सो मच। सौरभ गांगुली जी का भी बर्थडे है, लेडीज एंड जेंटलमैन, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मैं निकलता हूँ, कल सुबह मिलेंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे, बातें होंगी ढेर सारी आपके साथ। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। आज ही खुशी के साथ एंजॉय कीजिए अगली कंपनी। बारिश अगर हो रही है तो एंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा संभल के। हाँ, बाकी मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाती अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और ऐसे ही एफएम मुरादाबाद 89.6 सुनते रहिए। मेरे पास मैसेज पहुंचा था टेक्स्ट पे, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। इन्होंने एकदम सही जवाब दिया था, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, आई एम गुड, आई एम गुड। ये मुझे मैसेज पहुंच रहा है अगला वाला डॉली का, हाय डॉली गुड मॉर्निंग, थैंक यू जुड़ने के लिए। अमरोहा से नेहा जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं आज तो बारिश हो रही है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हेलो हाय गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ नेहा, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। नमस्ते आनंद जी, आप कैसे हैं? आपकी यात्रा मंगलमय हो, थैंक यू सो मच। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ से निकल रहा हूँ, बाकी कल मिलता हूँ। बाकी आप लोगों के लिए भी हैव अ ग्रेट एंड फैबुलस मॉर्निंग, बाय, साइनिंग ऑफ।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए, ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
2: और सरकारी

0: योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
1: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
0: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान
1: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
0: KCC साख से समृद्धि।
1: नियम और शर्तें लागू।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की सुबह एक खूबसूरत सी सोच के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों। नसीब उनका भी शानदार होता है जो हर हाल में मुस्कुराना जानते हैं, लेकिन इतिहास उनका बनता है जो मुश्किलों से लड़कर अपने सपनों को सच कर दिखाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी किस्मत के भरोसे ना बैठिए, अपनी मेहनत करती रहिए। दोस्तों, किस्मत इंतजार करने वालों का साथ कम देती है, लेकिन मेहनत करने वालों का रास्ता जरूर रोशन करती है। इसीलिए आज की ट्यूसडे अपने पूरी कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एनर्जी और स्माइल के साथ शुरू कीजिएगा। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता है, मुरादाबाद का मौसम भी ना एकदम कह सकते हैं कि बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह होता है। सुबह सुबह ऐसी जोरदार एंट्री मारी, लगा कि आज पूरे दिन बारिश होगी। मैंने भी सोचा था कि स्टूडियो जाकर, जैसे ही स्टूडियो पहुंचूंगी, आप सबसे बारिश की ढेर सारी बातें करूंगी, लेकिन जैसे ही ऑफिस आने का टाइम हुआ, जनाब बस एक झलक दिखाकर गायब। अब देखिए धूप भी निकल गई है, लगता है मुरादाबाद की बारिश कह रही हो मैं बस मिलने आई थी, रुकने नहीं। ऐसा ही हाल है ना बारिश का। मुझे लगा था कि आज बहुत अच्छी, वैसे 9 बजे की राउंड में बहुत तेज बारिश भी हुई, लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस आने का मेरा टाइम हुआ, तभी बारिश रुक गई। खैर कोई बात नहीं, मैं आप सभी का स्वागत पूरे दिल से करती हूँ आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, आप भी इस खूबसूरत से प्रोग्राम में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ, आप सभी का फेवरेट शो चल रहा है मॉर्निंग मसाला। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। वक्त हुआ है 10:25 और करेंगे अभी ढेर सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। लेकिन पहले एक खूबसूरत सा ट्रैक।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
5: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
6: अरे तुम्हारे भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
3: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे, और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, कुछ चेहरे ना ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर अपने आप चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उनके साथ की उनकी मासूमियत और उनकी अदाएं सीधा दिल को छू जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसी ही सदाबहार अभिनेत्री की। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अपने बचपन से लेकर आज तक अपने टैलेंट से हर दौर के दर्शक का दिल जीता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एवरग्रीन अभिनेत्री नीतू कपूर जी की। जरा सोचिए दोस्तों, सिर्फ 6 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखना, सिर्फ फिर 70 और 80 के दशक की सबसे पसंदीदा हीरोइन में शामिल होना, शादी के बाद परिवार को समय देना और फिर सालों बाद शानदार वापसी करके एक बार फिर से दर्शकों का दिल जीत लेना, ये सफर सचमुच प्रेरणा से भरा हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं नीतू कपूर जी के बारे में एंड उनकी जर्नी के बारे में आपको भी बताएंगे। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है उनको हम बताएंगे ना। दोस्तों, आप मेरे इस ब्यूटीफुल शो में कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी मैं आपको समय भी बता देती हूँ, 10:37 हो चुके हैं और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आए हैं, उनको भी मैं क्विकली शामिल कर लेती हूँ। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि आपके मैसेजों के बिना तो ये शो अधूरा मुझे लगता है। जब तक आपके संदेश नहीं आते तो लगता है कि कुछ तो रह गया है जिंदगी में। जैसे ही आपके मैसेजों की बौछार होती है ना, तो दिल झूमने लगता है। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज हमें पहुँचाते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी। कहते हैं, आरजी खुशी जी को हमारा आदाब, आपको भी आदाब सर। और ये एक ट्रैक सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी फूल और कांटे से, तुमसे मिलने को दिल करता है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ताज मोहम्मद अंसारी जी का, और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, उत्तराखंड से हमारे पास मैसेज आया है। एंड ये कहते हैं, आपको हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर। बताइएगा उत्तराखंड का वेदर कैसा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है सहारनपुर से जोन रोजी पलवलीस जी का। जनकपुरी सहारनपुर से अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह और गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाती है रामपुर से शुभनम जी, साथ में राहत अली जी हैं, नेहा लाइबा काजमी हैं। एंड ये कहते हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। इन्होंने बड़ी प्यारी सी लाइनें लिखी हैं एवरी मॉर्निंग की तरह, आज भी कुछ अच्छा लिखकर भेजा है इन्होंने। कहती हैं, जान से ज्यादा चाहते हैं आपको, जान से ज्यादा चाहते हैं आपको, हर खुशी से ज्यादा मांगते हैं आपको। अगर कोई कहे प्यार की हद होती है तो उस हद से भी ज्यादा चाहते हैं आपको। अरे वाह, क्या बात है जी, इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया सुबह सुबह, थैंक यू। अगला मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है गौरव टेलर जी का, नवीन नगर मुरादाबाद से। गौरव जी, ये बताइए, आप भी मुरादाबाद की बारिश की तरह एक झलक दिखलाते हो, फिर चले जाते हो। हाँ, कभी मैसेज पहुँचाते हो, कभी नहीं पहुँचाते हो। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमें रेगुलर मैसेज किया करो। एंड उसके अलावा ये कहते हैं कि आपका शो हम सुनते हैं मैम, बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इन्होंने एक थॉट हमारे साथ शेयर किया है, कहते हैं कि बुरे वक्त में कंधों पर रखा गया हाथ कामयाबी पर मिलने वाली तालियां से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। एग्जैक्टली राइट सर, जब हमारे साथ सिचुएशंस थोड़ी गड़बड़ाने लगती हैं, जहां पर हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, उस वक्त जब कोई हमें थामता है, जब कोई हमें सहारा देता है, तो उससे बड़ा और कौन साथी हो सकता है हमारा। क्योंकि इंसान सुख में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन दुख में जो साथ देता है वही अपना होता है। और ऐसे अगर आपके साथी हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो आपका हर सिचुएशन में साथ देते हैं, तो उनको, रिश्ते को संभाल कर रखो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है शमा का,
रामपुर से और ये कहती हैं हाय मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिले हैं यहाँ पर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप, वेरी गुड मॉर्निंग। ये मीनाक्षी का मैसेज हमारे पास आया विकास नगर से। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है, गुड मॉर्निंग खुशी, कैसी हैं आप, मेरा नाम नीतू सिंह है लाइन पार से। ये मैसेज हमें पहुंचाती है और सच बोल रही हुए आप, मुरादाबाद की बारिश बिल्कुल आप ही की तरह हो रही है, जैसे आप आती हैं और रुकती नहीं हो और कभी कभी तो कह देती हो आती नहीं हो। अरे वाह, वैसे ही बादल आ जाते हैं, बारिश नहीं होती। ओहो मैम, ऐसा नहीं है, मैं अगर वादा करती हूँ ना तो निभाती भी हूँ, बट हाँ अगर कोई काम होता है तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं आपसे बातचीत करने का, मुलाकात करने का आपसे। मतलब कैसे हम रूबरू कैसे मुलाकात ना करें, मतलब आपके बिना तो दिन अधूरा लगता है। जैसे ही आपसे हम सब बातचीत करते हैं, आप सब हमसे बातचीत करते हैं, आप संदेश पहुँचाते हैं, हम आपके संदेशों को पढ़ते हैं, तो बहुत ही प्यारा लगता है। और इस रिश्ते को मैं कभी भी अलग नहीं होना देना चाहती हूँ, इस रिश्ते को मैं हमेशा अपने साथ ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत प्यारा है ये रिश्ता। मुझे पता है आप भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं। चलो सुबह सुबह इमोशनल नहीं होते हैं, एक प्यारा गाना सुनते हैं, उसके बाद लौटकर आते हैं। नीतू जी ने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें की है, तो बिल्कुल सुनवाएंगे। लेकिन आप दोस्तों अपने संदेश हमें पहुंचाइए, कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा मैसेज पहुंचाने में, वरना देख लीजिएगा आज शाम को चाय नहीं मिलेगी आपको वरना। तो आप चाहते हैं ना कि आप जब ऑफिस से आए तो गर्मा गर्म एक कप चाय कोई बनाकर पिलाए, तो वो तभी मिलेगी जब आप मुझे मैसेज पहुंचाओगे, ठीक है। चलो जब तक आप मुझे संदेश पहुंचाते हैं, मैं आपको एक बेहतरीन ट्रैक सुनवाती हूँ आज की सुबह, आप एंजॉय करें एंड बाकी अपने काम पर भी फोकस करें, ठीक है, क्योंकि काम भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है लाइफ में। अभी फिलहाल ये गाना सुनो, मैं बस लौट कर आती हूँ।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IIM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पी या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111

दोस्तों आप याद आते हैं तभी तो हम एवरी मॉर्निंग आप सभी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद तो यही है कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे इस समय। कुछ ऑटो वाले रिक्शा वाले जो भैया हैं वो अभी ऑटो में बैठकर आराम से रेडियो को सुन रहे हैं, तो कुछ अभी ऑटो चला रहे हैं और कुछ अभी जो हमारे पहले लिस्नर हैं वो शॉप पर बैठे हैं, शॉप को ओपन करके वेट कर रहे हैं कि कस्टमर कब शॉप पर आए। और कुछ

आज उनका जन्मदिन है और मैंने कहा था कि उनकी जर्नी के बारे में हम आपसे बातचीत करने वाले हैं, आपको बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं समय भी बता देती हूँ, वक्त हुआ है 10:54। जी हाँ, 10:54 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में टाइम हुआ है।

0: दोस्तों, क्या आप जानते हैं नीतू कपूर जी का असली नाम हरनीत कौर है। उनका जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली के एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। पिता के निधन के बाद उन्होंने बहुत छोटी उम्र में परिवार की जिम्मेदारी संभाली और सिर्फ 6 साल की उम्र में बेबी सोनिया के नाम से फिल्मों में कदम रखा। साल 1986 में फिल्म सूरत से उन्होंने बतौर बाल कलाकार शुरुआत की। लेकिन उन्हें असली पहचान मिली दो कलियां से, जिसमें उन्होंने डबल रोल निभाकर हर किसी का दिल जीत लिया। इसके बाद 70 और 80 के दशक में नीतू कपूर जी ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। कभी कभी, अमर अकबर, एंथनी एंड खेल खेल में, काला पत्थर और याराना जैसी फिल्मों में उन्होंने बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया गया। और फिर आई खूबसूरत लव स्टोरी फिल्मों में साथ काम करते करते उनकी और अभिनेता ऋषि कपूर जी की जोड़ी रील से रियल लाइफ तक पहुंच गई। 22 जनवरी 1980 को दोनों शादी के बंधन में बंधे। शादी के बाद नीतू कपूर ने अपने करियर के सबसे सुनहरे दौर में फिल्मों से दूरियां बनाई और परिवार, बेटी रिधिमा कपूर एंड शाहिनी और बेटे रणवीर कपूर की परवरिश को अपनी पहली प्राथमिकता बनाई। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चा कलाकार कभी मंच से दूर नहीं होता। करीब 26 साल बाद उन्होंने शानदार वापसी की लव आजकल एंड दो दुधुनी चार, बेशरम और जुग जियो जैसी फिल्मों में उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली कलाकार की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। और दोस्तों, जिंदगी ने उन्हें कठिन परीक्षा भी दी। साल 2020 में उन्होंने अपने जीवन साथी ऋषि कपूर को खो दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, परिवार को संभाला और अपने दूसरी पारी को पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आज नीतू कपूर सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि हिम्मत, सादगी और सकारात्मक सोच की भी मिसाल हैं। एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की ओर से नीतू कपूर जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ, खुशहाल और लंबी उम्र दे। हैप्पी बर्थडे नीतू कपूर जी। तो दोस्तों, ये रही है नीतू कपूर जी की जर्नी और उन्हीं की फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि गाना आपको भी पसंद आएगा। तो चलो, बिना किसी देरी के सुनवाते हैं ये ट्रैक, उसके बाद आएंगे लौटकर और आपके जो यहाँ पर संदेश आए हैं ना, उनको भी मैं शामिल करूंगी। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, यूं ही बने रहिए, चिपके रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अगर आपके दिल में भी कोई बात है तो आप छिपाइए मत, सीधा खुशी को बता दीजिएगा।
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है?

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
5: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: कॉल 9045912348।

अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

देखिए किरण जी तो इस गाने को सुनकर खुश हो गई होंगी, जिनका नाम भी किरण होगा वो तो हो काम वाम छोड़कर ना बस झूमने लगी होंगी। दोस्तों ये प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना और इस गाने की रिक्वेस्ट मुझे भेजी थी गौरव टेलर जी ने नवीन नगर मुरादाबाद से, तो मैंने कहा चलिए इस ट्रैक को भी सुनवा देते हैं। दोस्तों आप सभी का पूरे दिल से आरजे खुशी स्वागत करती है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं आती हूँ कुछ गानों के इस पार और आपके संदेशों को भी मुझे शामिल करने हैं, तो यहाँ पर जो मैसेज आए हैं मैं उनको क्विकली शामिल करती हूँ क्योंकि बहुत देर से सारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं मोहम्मद कामिल जी जिला रामपुर खीटाना से, एंड कहते हैं इन्होंने बड़ी प्यारी सी लाइनें लिखी हैं कि गुलशन में भवरों का फेरा हो गया, गुलशन में भवरों का पहरा हो गया, पूरब में सूरज का डेरा हो गया। अरे वाह क्या बात है, पूरब में सूरज का डेरा हो गया, मुस्कान के साथ आंखें खोलिए प्यारे, एक बार फिर से प्यारा सा सवेरा हो गया। इतना खूबसूरत गुड मॉर्निंग अगर आप विश करेंगे ना तो सबकी सुबह सुनहरी हो ही जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। थैंक यू सो मच कामिल जी, आपने ये मैसेज पहुंचाया। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अलीशा है और मैं मुरादाबाद से हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ अलीशा, और उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे ही होंगे। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर दुर्गेश सैनी जी का और ये कहते हैं, खुशी जी जय श्री राम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से, आपका शो बिंदास चल रहा है, थैंक यू। एक मैसेज और हमारे पास यहाँ पर आया है और ये मैसेज हमें पहुंचाया है मंडी चौक मुरादाबाद से, प्रवीण जी का मैसेज हमारे पास आया आज की सुबह, गुड मॉर्निंग विश करते हैं ये और कहते हैं कि हम एफएम मुरादाबाद सुबह 6 बजे ऑन करते हैं और पूरे दिन हमारा रेडियो चलता रहता है मैम, बहुत ही अच्छा लगता है। हम ये अच्छा, इनकी शॉप है कॉस्मेटिक की और ये पूरे दिन रेडियो सुनते रहते हैं, कस्टमर को भी सुनवाते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। तो चलिए अभी सुनते हैं एक खूबसूरत से गाना, उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत और एक सवाल भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, वो पूछूंगी बस इस गाने के उस पर।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

नहीं जी दोस्तों, हम तो आपके कॉल हैं, आपके कूल कूल रहने वाले हैं जी, ऐसी आपके क्लोज ही रहने वाले हैं। देखो ये लड़की जो है ना, थोड़ी सी पंजाबी मिक्स कर देती है, पता नहीं कहाँ से अंदर से पंजाबी आ जाती है। बट कहते हैं ना, जिस चीज से हमें प्यार होता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर मतलब सामने निकल कर आती रहती है। तो मुझे पंजाबी लैंग्वेज से बहुत प्यार है, मुझे बहुत पसंद है, और मैं पूरी कोशिश भी करती हूँ कि पंजाबी लैंग्वेज मैं बोलूँ। और मैं जब घर पर होती हूँ ना अक्सर, तो पंजाबी में ही, पंजाबी लैंग्वेज में ही मैं बात करती हूँ। तो मेरी मम्मी कहती है, खुशी आपको ना पंजाब में होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ, अच्छा मम्मा मेरे को पंजाब में होना चाहिए? बोलती हाँ, कि पूरे दिन देखो जब भी मेरे साथ बातें करती हो हमेशा पंजाबी लैंग्वेज में बातें करती हो। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा, मैं पंजाब चली जाऊंगी घूमने के लिए, पर आप साथ तो चलो और पैसे भी दे दो। तो मम्मी कहती है, अच्छा बेटा पैसे भी चाहिए? मैंने बोला हाँ जी। अब देखो भैया, बिना पैसों के तो कहीं घूमने जा नहीं सकते हैं, तो पैसा तो चाहिए। और सारी मनी किसके पास होती है? मम्मी जी के पास होती है। तो उनको मनाते हैं, उनसे पैसा वगैरह लेंगे, फिर घूमने के लिए जाएंगे। वैसे दोस्तों मैं आपको टाइम बता देती हूँ, 11:21 हो गए हैं स्टूडियो की घड़ी में, और आज का हमारा आपसे सवाल पूछने का वक्त भी आ गया है। तो आप सब तैयार हैं? तो दोस्तों आज का सवाल बहुत सिंपल सा है, और चलिए अब देखते हैं कि हमारे श्रोता जनरल नॉलेज में कितने आगे हैं। हम आपसे सवाल करने वाले हैं। आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश का राज के स्टेट वृक्ष कौन सा है? जी हाँ, आप मुझे बताइएगा उत्तर प्रदेश का राज के स्टेट वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, आप निश्चिंत रहिए। ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है बरगद। जी हाँ, बताइएगा कौन सा हमारा उत्तर प्रदेश का राज के स्टेट वृक्ष कौन सा है। अब आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अगेन आपको ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है बरगद का पेड़। सही जवाब हमें पहुंचाइए। हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। सही जवाब हमें पहुंचाइएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो संदेश आए हैं मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन सर, बहुत अच्छे हैं। और ये कहते हैं, कभी कभी तो लगता है जैसे हम किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं, पता ही नहीं चलता, बादल आते हैं फिर कब चले जाते हैं, और फिर से वही धूप निकल आती है। ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं हमें जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी, साथ में उस्मान खान जी भी हैं, और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, सात रंग के सपने, एंड इसमें ट्रैक बहुत ही प्यारा है। इस गाने को हम जरूर सुनवाएंगे सर, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी का, और ये कहते हैं कि जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, इसे अपनाओ और अपनी खुशियों को बिखेर दो। काली घटाएं फिल्म का एक गाना हमें सुनवा दीजिएगा मैम। बिल्कुल सुनवाएंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अगला मैसेज हमारे पास आया है बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, ललिता कश्यप जी का। ये कहती हैं, आप कैसी हैं खुशी मैम? आपको और सुनने वाली सभी श्रोताओं को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। इतने प्यार से, इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजोगे ना तो हम आपके घर आ जाएंगे। आ जाएं? अच्छा अच्छा, आ जाएंगे, लेकिन पहले अपने काम तो कंप्लीट कर लें। और चलिए अभी ना सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद हम करेंगे आपसे ढेर सारी बातें, और आप जो सही जवाब हमें पहुंचाएंगे उसको भी हम मेंशन करेंगे, एंड एक गाना भी आपको डेडिकेट करेंगे। तो देखते हैं वो लकी लिसनर कौन है जो सबसे पहले अपना राइट आंसर पहुंचाएंगे। लेकिन एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें बार बार आ रही है, आएगी बरसात कहाँ जाएंगे, आप अगर बारिश आएगी ना तो आप हमारे स्टूडियो आ जाइएगा, ठीक है? आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन जब आएंगे ना आप तो चाय तो मैं बना लूंगी, पकौड़े आप ले आना, ठीक है? डन, चलो डील पक्की है ना।
लेकिन बारिश तो आने दो, तभी तो आओगे ना। चलो बारिश का इंतजार करते हैं, फिलहाल ये गाना सुनते हैं, अब हम आपको और इंतजार नहीं करवाते हैं।

0: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
1: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
0: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
0: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
1: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
0: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
1: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
0: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
1: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
0: EKCC साख से समृद्धि।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित।

0: अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: छत्तीस सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का स्वागत है आरजे खुशी करती है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और अभी वक्त हुआ है 11:36. खूबसूरत गानों ही तो आप सुनी रहे हैं, लेकिन आपसे मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है आज की सुबह. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. आज हम देखते हैं हमारे श्रोता जनरल नॉलेज में कितने आगे हैं. और आज का सवाल भी बहुत सिंपल सा है दोस्तों. उत्तर प्रदेश का राजकीय स्ट्रीट वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ. ऑप्शन ए है नीम का वृक्ष, ऑप्शन बी है पीपल का वृक्ष, ऑप्शन सी है अशोक का वृक्ष, ऑप्शन डी है बरगद का वृक्ष. अब आप इनमें से बताइए कौन सा राइट आंसर है, कौन सा ऑप्शन आप चुनने वाले हैं. वैसे हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे श्रोताओं के जवाब भी आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ जो अभी अभी इस वक्त रेडियो जिन्होंने ऑन किया है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दोस्तों अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो आप पीछे क्यों हैं? फटाफट से फोन उठाइए और हमारा व्हाट्सएप नंबर डायल कीजिएगा 9837896896 98 3978 96. आप तो नंबर आपने डायल कर लिया है ना, अब फटाफट से अपना राइट आंसर पहुंचा दीजिएगा. यह है आपके अपने शहर का फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी खुशी जो ढेर सारी खुशियां आपके लिए लेकर आती है. और हमारे पास यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे से मैसेज भी आए हैं तो मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ. हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, और रिहाना जी कहती हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. अगला मैसेज पहुंचाते हैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, साथ में शैयद शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं, और ये कहते हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत अच्छी हूँ. आपका शो हम सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. और इन्होंने एक प्यारे सी गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, हम पूरा प्रयास करेंगे इसको प्ले करने की. सो अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कश्मीर से मेहराजुद्दीन जी का, और ये हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं आज की सुबह. वेरी गुड मॉर्निंग कहते हैं कि आरजे खुशी जी हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं. अच्छा जी, देखिए मिस मत कीजिए क्योंकि मैं ऑन ईयर ही हूँ एंड मैं आपसे दूर नहीं हूँ, आप ही के पास में हूँ. अब आप सोच रहे होंगे कि खुशी जी हमारे पास कैसे हैं. देखिए आपका रेडियो सेट आपके पास है ना, तो बस समझ लीजिए हम आपके पास ही हैं. और हमारे श्रोताओं ने तो कमाल ही कर दिया है, इतने प्यारे प्यारे जवाब. OMG, चलो इस खुशी में मैं आपको सुनवाती हूँ एक खूबसूरत सा गाना. और ऑन ईयर हम अभी आएंगे लौटकर, तो यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे सही जवाब हमारे श्रोताओं ने पहुँचाए हैं, उनका नाम भी हम यहाँ पर शामिल करने वाले हैं. और इस वृक्ष के बारे में कुछ और विशेष जानकारियां भी आपको देने वाले हैं. बस अभी गाना सुनो.

0: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

0: गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और क्या बात है, लगता है हमारे श्रोता बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं, लगभग सभी ने सही जवाब पहुंचाए हैं। दोस्तों राइट आंसर है अशोक का पेड़, एग्जैक्टली। और हमारे पास जो राइट आंसर आए हैं, जरा उनके मैसेज को भी हम शामिल कर लेते हैं। और हमारे पास एक बड़ा ही प्यारा सा स्वीट सा वॉइस नोट आया है, तो जल्दी से मैं उसको प्ले करती हूँ, आप तक पहुँचाते हैं और सुनवाते हैं कि मैम ने क्या पहुँचाया है आज की सुबह।
1: राधे राधे, खुशी खुशी। अशोक का पौधा हमारा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पौधा है। और आप कैसी हूँ? मैं बढ़िया हूँ। आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है, प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी है, आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है तो कोई बढ़िया गाना सुना देना मौसम के ऊपर। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आपने राइट आंसर पहुंचाया है। और जो मुस्कुराकर आपने थैंक यू बोला है ना, आए हाय हाय, मेरे दिल में बारिशें होने लगी है। अब आप सोच रहे होंगे दिल में बारिशें, जी हाँ, खुशी की बारिशें, खुशी की बौछार होने लगी है। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर पहुंचाया है राइट आंसर नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी ने, जो कि हमारे रेगुलर लिसनर हैं।

हमारे पास यहाँ पर मोहम्मद कामिल जी का भी सही जवाब आया है, अशोक का पेड़। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास पहुँचाया है गौरव टेलर जी ने नवीन नगर से, और ये भी राइट आंसर के साथ जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है अशोक का पेड़। थैंक यू। अगला मैसेज हमारे पास पहुँचाया है रणवीर सिंह जी ने मुरादाबाद से, राइट आंसर के साथ ये भी जुड़े हैं। आप सभी के लिए जोरदार तालियां। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने तो कमाल कर दिया, छा गए हो तुसी जी। सारा दिन अच्छा दोस्तों, अब हमने इस वृक्ष की बात की है तो उसकी विशेषताएं भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों अशोक का अर्थ होता है दुख को दूर करने वाला, इसीलिए इसे सुख और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ये पेड़ साल भर हरा भरा रहता है, इसीलिए इसे सदाबहार वृक्ष भी कहा जाता है। इसके सुंदर नारंगी लाल रंग के फूल बसंत ऋतु में खिलते हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। आयुर्वेदा में अशोक की छाल और पत्तियों का उपयोग कई औषधि में किया जाता है। भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में भी अशोक का पेड़ का विशेष महत्व है। कई प्राचीन मंदिरों में और बगीचों में इसे लगाया जाता है। यही वजह है कि इसे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष चुना गया है। और दोस्तों अशोक का पेड़ सिर्फ उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष ही नहीं, बल्कि इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी बहुत खास है। रामायण में वर्ण मिलता है जब माता सीता का हरण हुआ था, तब उन्हें लंका की जिस वाटिका में रखा गया था उसे अशोक वाटिका कहा जाता था। वहीं माता सीता ने भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की थी वहीं बौद्ध धर्म में भी अशोक वृक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध की माता रानी माया देवी ने अशोक वृक्ष की एक शाखा थामे हुए भी ही भगवान बुद्ध को जन्म दिया था। यही कारण है कि अशोक का वृक्ष प्रेम, शांति, आशा और शुभता का प्रतीक माना जाता है। एंड इसी जानकारी के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत और मैं लौट कर आती हूँ। बस आप कहीं मचाइए, मुस्कुराइए। देखिए दोस्तों कितने जल्दी से समय गुजर जाता है ना, जब अपनों के साथ होते हैं तो ऐसा ही होता है ना, होता है ना। आपको पता है जब घर पे कोई अपना आता है, कभी कोई जैसे बाहर रहते हैं फैमिली मेम्बर्स, और जब वो बहुत दिनों के बाद घर पर आते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं तो लगता है समय का पता ही नहीं चलता है, कैसे समय कंप्लीट हो जाता है। और ऐसा लगता है कि बस बातें करते जाएं, लेकिन जब घड़ी पर नजर जाती है तब लगता है ओ माई गॉड इतना टाइम हो गया है। तो ऐसा ही होता है, ये अपनों का प्यार होता है जहाँ पर वक्त का एहसास नहीं होता है। जैसे हम आपके साथ होते हैं तो बिल्कुल भी समय का पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ मैं आपको एक गाना सुनाए बिना नहीं रह पाऊंगी। तो चलो पहले गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आती हूँ मैं, फिर आपसे करूंगी बातचीत। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने राइट आंसर यहाँ पर पहुंचाए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आप भी कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे होंगे।

0: लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल हमें जाना पड़ेगा। जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन समय को भी ध्यान में रखना होता है और स्टूडियो की घड़ी में 12 बज चुके हैं। तो दोस्तों चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बाहर का मौसम जितना सुहाना है, उम्मीद है आपका मन भी उतना ही मुस्कुराता रहे। एंड अगर कहीं हल्की सी बारिश मिले तो उसकी ठंडक को महसूस कीजिए, और अगर धूप मिले तो उसकी रोशनी में अपनी उम्मीद को चमकने दीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपको 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान एंड खूब पानी पीजिए, अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए और अपना विशेष ध्यान रखिए। अगर बाहर जा रहे हैं तो अगर धूप है तो भी छाता लेकर जाइए, नहीं है तो भी लेकर जाइए, क्योंकि बारिश का पता नहीं है, कभी भी वो हो सकती है। बाकी बस यही कहूंगी कि सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 और अब मुझे दीजिए जाने की अनुमति। बाय बाय, टेक केयर। मैं फिर से आऊंगी आपको थोड़ा सा हंसाने, थोड़ा गुदगुदाने, थोड़ा सा परेशान करने के लिए 3 से 5, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
1: और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
2: प्रधानमंत्री 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक VK बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वाइडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री VD सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: Hacker c'era.
1: क्या सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
4: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
3: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए ekcc.nabard.org।
4: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
3: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
4: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
3: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
4: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
3: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान
4: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
3: EKCC, साख से समृद्धि।
4: नियम और शर्तें लागू।
5: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजरीना। साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने टीबी की इलाज के बारे में विस्तार से बात की थी। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है, सरकार मुफ्त दवाइयां देती है और यहां तक कि दवा प्रतिरोधी यानी MDR टीबी का भी इलाज उपलब्ध है। लेकिन आज हम उस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि सच कहे तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने से नहीं होती बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने से होती है। बहुत सारे मरीज इलाज शुरू कर लेते हैं लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलो अप जांच नहीं करवाते, कई बार काम पर चले जाते हैं या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं और यही छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो आज हम बात करेंगे इलाज को बीच में ना रोकने की, दवाओं को संभावित रिएक्शन की।

0: कैंसर दवा से परेशानी हो क्या करना चाहिए, निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद कैसे करती हैं और परिवार तथा समुदाय का सहयोग कितनी जरूरी है, इन सब विषयों पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारी अपनी स्वास्थ्य साथी टीकन देवी। स्वागत है टीकन भाभी आपका।
1: धन्यवाद आर्जेरीना, और सभी श्रोताओं को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आर्जेरीना जी, पिछले कार्यक्रम के बाद मुझे कई लोगों के फोन आए, अधिकांश लोगों ने तो एक ही बात कही, हमें पता है कि टीवी का इलाज होता है लेकिन महीनों तक दवा लगातार लेना आसान नहीं होता, और सच कहूँ तो यही वह जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है लेकिन इलाज पूरा करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि आज की चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनाए जो इस विषय को समझने में मदद करे तो श्रोताओं को बताओ और अच्छी तरह समझाइए।
1: बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहूंगी जो कुछ वर्ष पहले हुई थी। पास के एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक छोटा सा बच्चा था, रवि। रवि को लगातार बुखार रहता था, वजन कम हो रहा था और खांसी भी लंबे समय से बनी हुई थी। जांच हुई और पता चला कि उसे टीवी है। परिवार घबरा गया लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि चिंता की बात नहीं है, इलाज शुरू हो गया है। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालत सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख लौटने लगी और घर वालों को लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन लगभग 1.5 महीने बाद रवि को एक नई समस्या शुरू हुई। उसके शरीर पर लाल चकत्ते निकलने लगे, उसे मतली महसूस होने लगी, कभी कभी उल्टी भी होने लगी। तब पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी, दवा बंद कर दो, दवा ही नुकसान कर रही है। लेकिन सहयोग से उसी समय उसके पिता ने हमारे इस कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई का एक पुराना एपिसोड सुना था, जिसमें कहा गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को बताना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से दवा बंद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वही किया, अगले ही दिन बच्चे को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यकता बदलाव किए और कुछ अतिरिक्त उपचार दिए। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रण हो गई। आज रवि पूरी तरह स्वस्थ है। सोचिए, अगर उसके माता पिता डरकर दवा बंद कर देते तो बीमारी दोबारा गंभीर हो सकती थी, यानी समस्या दवा से नहीं बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होती है।
0: वाह, यह कहानी सचमुच बहुत सीख देती है, यानी दवा के दौरान कोई परेशानी हो जाए तो घबराना नहीं है बल्कि तुरंत स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क करें। लेकिन भाभी, सबसे पहले यही बताइए कि इलाज की निरंतरता यानी कंटिन्यूटली ऑफ ट्रीटमेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
1: देखिए आर्जेरीना, टीवी का जीवाणु बहुत चालाक होता है। जब मरीज दवा शुरू करता है तो कुछ ही हफ्ते में खांसी कम होने लगती है, बुखार कम हो जाता है और शरीर बेहतर महसूस करने लगता है। यही पर कई लोग गलती कर बैठते हैं, वैसे सोचते हैं कि अब हम ठीक हो गए हैं, लेकिन वास्तव में उस समय शरीर के अंदर मौजूद सभी जीवाणु समाप्त नहीं हुए होते हैं। लक्षणों का कम होना और बीमारी का पूरी तरह खत्म होना दो अलग अलग बातें हैं। इसीलिए राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम बार बार कहता है कि डॉक्टर जितने समय तक दवा लेने को कहें उतने समय तक नियमित रूप से दवा लेना जरूरी है। याद रखिए, आराम महसूस होना इलाज की सफलता का संकेत हो सकता है लेकिन इलाज पूरा होने का प्रमाण नहीं।
0: बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन व्यवहार में लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं क्यों?
1: कारण कई होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब वे ठीक हो चुके हैं, कुछ लोग रोज दवा लेने से उब जाते हैं, कुछ लोगों को काम पर जाना होता है और वे फॉलोअप नहीं कर पाते, कुछ लोग दूर शहर या राज्य में काम करने चले जाते हैं, कुछ लोग दवा के हल्के दुष्प्रभावों से डर जाते हैं और कुछ लोग समाज की डर या शर्म की वजह से इलाज छिपाने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इन चुनौतियों को समझते हुए कई व्यवस्थाएं बनाई हैं ताकि मरीज का इलाज बीच में ना टूटे।
0: यही तो मैं पूछना चाहती थी, अगर कोई मरीज इलाज के दौरान गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाए तब क्या होगा? क्या उसे फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। और यह बात खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में जाते हैं। सरकार ने ट्रांसफर अकाउंट की व्यवस्था बनाई है। अगर मरीज अपने स्वास्थ्य कर्मी या टीवी टीम को जानकारी देते हैं तो उसका रिकॉर्ड निश्चय प्रणाली में अपडेट किया जा सकता है और नए स्थान पर भी इलाज जारी रखा जा सकता है। यानी केवल स्थान बदलने के कारण दवा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जाएं वहां की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़िए और इलाज रखिए।
0: आपने निक्षय नाम का नाम लिया, बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में सुना होगा लेकिन विस्तार से शायद नहीं जानते होंगे।
1: निक्षय वास्तव में टीवी मरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड, इलाज की प्रगति, फॉलोअप, सहायता और निगरानी की जाती है। इसके जरिए स्वास्थ्य कर्मी ये देख सकते हैं कि मरीज इलाज पर बना हुआ है या नहीं। अगर किसी मरीज की फॉलोअप जांच बाकी है तो उसे याद दिलाया जा सकता है। अगर मरीज कहीं और चला गया है तो उसका इलाज एक नए स्थान से जोड़ा जा सकता है और इसी व्यवस्था के माध्यम से कई प्रकार की सहायता भी सुनिश्चित की जा सकती है। यानी निक्षय केवल एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं बल्कि इलाज की निरंतरता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
0: अब बात करते हैं दवाओं से होने वाली प्रक्रियाओं की, यानी साइड इफेक्ट या रिएक्शन, क्योंकि यही वह विषय है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं
1: और डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। आर्जेरीना, जैसे ही किसी को पता चलता है कि टीवी की दवाई कई महीनों तक चलेगी तो उसके मन में एक चिंता भी रहती है, कहीं दवा से कोई परेशानी हुई तो। इसलिए सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि अधिकांश टीवी मरीज बिना किसी गंभीर समस्या के अपना पूरा इलाज सफलतापूर्वक करवा लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान कुछ दुष्प्रभाव या प्रक्रियाएं महसूस हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी को शुरुआत में मितली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, किसी का पेट भारी लग सकता है या जलन महसूस हो सकती है, कुछ लोगों की भूख थोड़ी कम हो जाती है, कई बार त्वचा पर खुजली या लाल चकते दिखाई दे सकते हैं, कुछ मरीज कमजोर, थकान या चक्कर आने की बात भी बताते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे आँखों या त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाना, धुंधला धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होना, सुनने की क्षमता में बदलाव आना या व्यवहार और मानसिक स्थिति में कई असामान्य परिवर्तन महसूस होना। ऐसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी, दुष्प्रभाव होने का मतलब ये नहीं कि इलाज असफल हो रहा है और ना ही इसका मतलब ये है कि मरीज अपने मन से दवा बंद कर दे। वास्तव में सबसे बड़ी गलती यही होती है, कई बार लोग किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या अधूरी जानकारी आधार पर दवा छोड़ देते हैं, जबकि सही कदम ये है कि तुरंत अपने स्वास्थ्य कर्मी, आशा बहन, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को इसकी जानकारी दें। याद रखें, अधिकांश दुष्प्रभावों का प्रबंध किया जा सकता है। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर जांच करेंगे, सलाह देंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इलाज में उचित बदलाव भी करेंगे। लेकिन अगर मरीज बिना बताए दवाएं बंद कर देता है तो बीमारी फिर से सक्रिय हो सकती है और इलाज और भी कठिन हो सकता है। इसीलिए हमारा संदेश बहुत सरल है, दुष्प्रभाव छुपाइए मत, घबराइए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल भी मत रोकिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफलता इलाज की कुंजी है।
0: यानी दवा से परेशानी हो तो पहला कदम दवा छोड़ना नहीं बल्कि डॉक्टर से बात करना।
1: बिल्कुल, क्योंकि हर शिकायत गंभीर नहीं होती, कुछ दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं, कुछ का इलाज किया जा सकता है, कुछ मामलों में डॉक्टर दवा की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये निर्णय केवल परीक्षित स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को लेना चाहिए, मरीज को नहीं। याद रखिए, जल्दी जानकारी देना इलाज बचाता है, जबकि चुप रहना इलाज को खतरे में डाल सकता है।
0: वाह, फॉलो अप जांचों की भी बात होती है। कई लोग सोचते हैं कि दवा मिल गई तो अब अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं।
1: यही एक और बड़ी गलतफहमी है। इलाज केवल दवा खाने का नाम नहीं है, इलाज में नियमित निगरानी भी शामिल है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी जब फॉलो अप जांच के लिए बुलवाएं तो अवश्य जाएं। अगर बलगम का नमूना मांगा जाए, अगर कोई जांच लिखी जाए तो करवाएं। इन जांचों से पता चलता है कि दवा सही काम कर रही है या नहीं, कहीं अतिरिक्त सहायता की जरूरत तो नहीं है, और यदि कोई समस्या है तो उसे समय रहते पकड़ा जा सकता है।
0: भाभी, आपने पिछली बार MDR TB का भी जिक्र किया था, इसके संदर्भ में इलाज की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है?
1: रीना, MDR TB यानी दवा प्रतिरोधी TB में तो यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में इलाज अपेक्षाकृत जटिल हो सकता है, दवाएं अधिक हो सकती है, निगरानी ज्यादा करनी पड़ सकती है और फॉलो अप भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि MDR TB का मतलब इलाज असंभव होना नहीं है। आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी और नए उपचार पद्धतियों के कारण मरीजों के ठीक होने की संभावना पहले से कहीं अधिक है। बस शर्त एक ही है, इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए।
0: और परिवार की भूमिका, कई बार मरीज अकेला पड़ जाता है।
1: परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है आर्जेरीना। सरकार भी मानती है कि टीवी का इलाज केवल मरीज नहीं करता, पूरा परिवार करता है। घर का कोई सदस्य दवा याद दिला सकता है, फॉलो अप में साथ जा सकते हैं, लक्षणों में नजर रख सकता है, मानसिक सहारा दे सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, मरीज को ये महसूस करा सकता है कि वह अकेला नहीं है। कई बार दवा से ज्यादा असर एक सहारा देने वाले शब्द का होता है।
0: और पोषण, क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि रिकवरी में भोजन की बड़ी भूमिका होती है।
1: बिल्कुल, दवाएं बीमारी का इलाज करती हैं, लेकिन शरीर को ताकत भोजन देता है, इसलिए सरकार निक्षय पोषण योजना जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से पोषण सहायता भी उपलब्ध कराती है। मरीज को नियमित भोजन, पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दालें, दूध, अंडे, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर की रिकवरी में मदद करते हैं।
0: तो अगर आज के चर्चा को कुछ मुख्य संदेशों में समेटा हो तो आप क्या कहेंगे?
1: श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगी। पहले, टीवी की दवा कभी अपने मन से बंद ना करें। दूसरी, बेहतर महसूस होना इलाज पूरे होने का संकेत नहीं। तीसरा, दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी को बताएं। चौथा, फॉलो अप जांचें इलाज का जरूरी हिस्सा है। पांचवी बात, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो स्वास्थ्य टीम को बताकर इलाज जारी रखें। छठी बात, निक्षय और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इलाज की निरंतरता में मदद करती है। सातवीं बात, परिवार और उपचार सहयोगी मरीज की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आठवीं बात, MDR TV भी इलाज योग्य है, बशर्ते मरीज नियमित रूप से कार्यक्रमों से जुड़ा रहे।
0: बहुत सुंदर। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, अगर रवि के माता पिता उस दिन डर का दवा बंद कर देते तो शायद आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यही समझ, यही जागरूकता और यही सतर्कता हर परिवार तक पहुँचनी चाहिए। साथियों, याद रखिए, टीवी का इलाज केवल दवाओं से नहीं, बल्कि धैर्य, नियमितता, परिवार के सहयोग और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े रहने से सफल होता है। आइए अंत में हम सब मिलकर लेते हैं सेहत की शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।

0: बहुत ही जच रहा है।
1: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है, दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: खांसी हो लगातार, मत करना इंतजार, समय पे जांच करवाओ, टीवी को दूर भगाओ, सेहत सही लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। साथियों, अगर आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो आपको याद कि हम पहले भी टीवी यानी तपेदिक पर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से इस विषय पर लौटे हैं। वजह है कि टीवी आज भी हमारे देश में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन गई है। मैंने कई बार गांव में लोगों को कहते हुए सुना है कि अरे टीवी तो पहले भी हुआ करती थी, अब कहाँ जाता है, अब कहाँ होती है। कुछ लोग कहते हैं हम तो ठीक ठाक खाते पीते हैं, हमें टीवी कैसे हो सकती है। और कुछ लोग तो महीनों खांसी होने के बाद भी कहते रहते हैं मौसम बदल रहा है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? क्या टीवी केवल कुछ लोगों को होती है? क्या हर खांसी साधारण होती है? और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को टीवी हो जाए तो उसकी पहचान कैसे होगी? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, खासकर टीवी की जांच के बारे में। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कब करवाने चाहिए, क्या सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है, और अगर सही समय पर जांच हो जाए तो कैसे एक व्यक्ति ही नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रह सकता है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी टीकन देवी जी, जो हमारे कठिन स्वास्थ्य विषयों को आसान भाषा में समझा देती हैं। बहुत बहुत स्वागत है टीकन भाभी आपका।
5: धन्यवाद आरजे खुशी, और मेरे सभी श्रोताओं भाई बहनों को मेरा प्यार और विश्वास के लिए धन्यवाद। आरजे जी, आपने बिल्कुल सही कहा, टीवी पर बार बार बात करना जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग लक्षण होने के बावजूद जांच नहीं करवाते। कई बार बीमारी सामने होती है लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मुझे एक महिला की याद आ रही है, जिसकी कहानी मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारे पड़ोस के गांव में सरला देवी नाम की एक महिला थी, सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। पूरे इलाके में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लगभग 35 साल तक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, फिर एक दिन रिटायरमेंट हो गया। शुरुआत के कुछ महीने तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा। हमेशा थकान बनी रहती थी, घर के लोग पूछते थे क्या हुआ तो वे हंसकर कह देती, अब उम्र हो गई है, पहले जैसी ताकत कहाँ रहेगी। कुछ समय बाद उनकी भूख कम होने लगी, कपड़े ढीले होने लगे क्योंकि वजन घट रहा था। शाम होते होते हल बुखार आने लगा, रात में पसीना भी आता था, फिर खांसी शुरू हुई, लेकिन उन्होंने तब भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि अब नौकरी नहीं रही, इसलिए शरीर सुस्त रहता है। परिवार वालों ने भी यही सोचा कि उम्र का असर है। ऐसे करते करते लगभग 2 महीने निकल गए। फिर एक दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी, एक्सरे हुए, बलगम की जांच हुई, फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर पता चला कि सरला देवी को टीबी है। जब उन्होंने यह सुना तो सबसे पहले यही कहा, काश मैंने पहले जांच करवा ली होती।
4: सच कहूं टीकन भाभी, ये कहानी सुनकर लगता है कि सरला देवी अकेली नहीं है। हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जो लगातार कमजोरी, वजन घटना, बुखार या खांसी को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और शायद यही वजह है कि बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन अब एक बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है। हम बार बार टीवी का नाम ले रहे हैं, लेकिन आखिर टीवी है क्या?
5: देखिए खुशी, टीबी एक संक्रमण बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के नाम के जीवाणु से होती है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन हड्डियों, लिम्फ नोड्स, किडनी और दिमाग जैसे अन्य अंगों में भी हो सकती है। इसीलिए टीबी को सिर्फ खांसी की बीमारी समझना सही नहीं है।
4: लेकिन भाभी, लोग तो टीबी का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्या हर बार टीबी मरीज दूसरों में बीमारी फैलाते हैं?
5: नहीं, बिल्कुल नहीं। टीबी दो तरह की हो सकती है, एक लेटेस्ट टीबी जिसमें शरीर में कीटाणु होते हैं लेकिन वो सक्रिय नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं होते, वह बीमारी नहीं फैलाता। दूसरी एक्टिव टीबी जिसमें कीटाणु सक्रिय होकर बीमारी पैदा करते हैं, फेफड़ों को एक्टिव टीबी दूसरों तक फैल सकती है।
4: तो ये फैलती कैसे है?
5: जब फेफड़ों की टीबी वाला व्यक्ति खांसता, छींकता, बोलता या गाता है तो हवा में बहुत छोटे छोटे कण फैलते हैं। इसे सांस के साथ अंदर लेने पर संक्रमण हो सकता है, खासकर बंद और कम हवादार जगहों में।
4: गांव में लोग कहते हैं कि साथ खाने, हाथ मिलाने या बर्तन साझा करने से टीबी फैल जाती है।
5: यह पूरी तरह गलतफहमी है। टीबी हाथ मिलाने, साथ खाना खाने, बर्तन साझा करने, गले मिलने या सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने से नहीं फैलती। इसीलिए मरीज से दूरी नहीं बल्कि सहयोग की जरूरत है।
4: इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
5: अगर दो हफ्ते से ज्यादा खांसी रहे, बार बार बुखार आए, रात में पसीना आए, वजन घटे, भूख कम लगे, कमजोरी महसूस हो, सीने में दर्द हो या गम में खून आए तो तुरंत टीबी की जांच करानी चाहिए।
4: क्या भारत में आज भी टीबी बड़ी समस्या है?
5: भारत ने अच्छी प्रगति की है। 2015 से 2024 के बीच नए टीबी मामलों में लगभग 21% और टीबी से होने वाली मौतों में लगभग 28% की कमी आई है। लेकिन आज भी कई लोग देर से जांच करवाते हैं, इसीलिए जागरूकता और समय पर जांच बेहतर जरूरी है।
4: क्या कुछ लोगों में टीबी का खतरा ज्यादा होता है?
5: जी हाँ, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, HIV और डायबिटीज से प्रभावित लोग, कुपोषित व्यक्तियों, भीड़ भाड़ वाले घरों में रहने वालों और टीबी मरीज के करीबी संपर्क में रहने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और याद रखिए, अगर घर में एक व्यक्ति को टीबी है तो पूरे परिवार की जांच जरूरी है।
4: यानी अगर परिवार में किसी को टीबी है तो ये सोचकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि बाकी सब ठीक, पूरा परिवार सतर्क रहे, यही समझदारी है। लेकिन अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार खांसी, बुखार या वजन कम होने जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर आखिर कैसे पता लगाते हैं कि उसे सचमुच टीबी है?
5: बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग आज भी सोचते हैं कि डॉक्टर सिर्फ लक्षण देखकर कह देते हैं कि टीबी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। टीबी की पुष्टि हमेशा जांच के आधार पर की जाती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग बार बार कहता है लक्षण हो तो जांच करवाइए। और अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTIP के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीबी की जांच पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है।
4: तो सबसे पहले कौन सी जांच की जाती है?
5: सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जांच, बलगम की जांच। जब किसी व्यक्ति को लगातार खांसी होती है तो उसके बलगम का नमूना लिया जाता है, फिर प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है कि उसमें टीबी के जीवाणु मौजूद है या नहीं। यह जांच वर्षों से टीबी पहचानने में मदद करती है और आज भी महत्वपूर्ण है।
4: CBN, AAT और TuneIn जैसे नाम भी सुनते हैं, कई श्रोताओं को शायद समझ नहीं आता कि ये क्या होता है।
5: बिल्कुल, ये आधुनिक तकनीक पर आधारित है, मॉलिक्यूलर टेस्ट है। इसकी खासियत यही है कि ये काफी जल्दी परिणाम दे सकते हैं और केवल यह नहीं बताते कि टीबी है या नहीं, बल्कि कई मामलों में यह भी पता लगा सकते हैं कि कई बीमारी सामान्य दवाओं के प्रति प्रतिरोधी यानी ड्रग रजिस्टेंट तो नहीं। यही जानकारी डॉक्टरों को सही इलाज चुनने में मदद करती है। आज देश भर में ऐसी जांच सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया है ताकि लोगों को समय पर सही निदान मिल सके।
4: और एक्सरे की क्या भूमिका होती है? क्यों जब भी लोग लंबे समय तक खांसते हैं, डॉक्टर अक्सर छाती का एक्सरे लिख देते हैं?
5: बिल्कुल सही, छाती का एक्सरे टीबी की जांच में बहुत उपयोगी है। कई बार स्क्रीनिंग के दौरान एक्सरे में ऐसी बदलाव दिखाई देती है जैसे टीबी की ओर संकेत करते हैं। फिर डॉक्टर आगे की पुष्टि के लिए अन्य जांच करवाते हैं। यानी एक्सरे बीमारी की ओर इशारा करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। और अगर डॉक्टर को संदेह हो कि मरीज को दवा प्रतिरोधी टीबी हो सकती है, तब और भी विशेष जांच की जरूरत होती है, जैसे कल्चर और दवा संवेदनशीलता का टेस्ट। इसमें यह पता चलता है कि कौन सी दवाएं मरीज पर प्रभावित होगी और इलाज किस तरह से आगे बढ़ाया जाए।
4: साथियों, बात बिल्कुल साफ है, अनुमान नहीं जांच जरूरी है। खांसी तो घरेलू नुस्खों में महीनों ना उलझें, बल्कि सही समय पर जांच करवाएं। 2 हफ्तों की खांसी हो जाए, जांच बिना मत समय गवाएं। टीबी का इलाज है तैयार, समय पर जांच है सबसे बड़ा हथियार। टीकन भाभी, एक और बात जानना चाहूंगी, क्या सरकार सिर्फ उन लोगों की जांच करवाती है जो खुद अस्पताल पहुंचते हैं?
5: नहीं आरजे खुशी, अब टीबी नियंत्रण का तरीका काफी आगे बढ़ चुका है। पहले ज्यादातर मामलों में लोग खुद स्वास्थ्य केंद्र आते थे, लक्षण बताते थे और फिर उनकी जांच होती थी। इसमें हम पेसिव केस फाइंडिंग कहते हैं, लेकिन आज केवल इसी पर निर्भर नहीं रहा जाता, अब एक्टिव केस फाइंडिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मी खुद समुदाय तक पहुँचते हैं, गाँव बस्तियों दूर दराज क्षेत्रों और जोखिम वाले समूहों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि जो लोग किसी कारण से अस्पताल नहीं पहुंच पाते उनकी बीमारी भी समय रहते पकड़ी जा सके।
4: यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ लोगों के आने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि खुद लोगों तक पहुंच रही है।
5: बिल्कुल, इसी सोच के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत करोड़ों संवेदनशील और जोखिम वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, लाखों नए मरीजों की पहचान हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीमारी जल्दी पकड़ी जा रही है और मरीजों को जल्दी इलाज मिल रहा है।
4: टीकन भाभी, मान लीजिए घर में किसी एक सदस्य को टीबी हो गई, तब परिवार को क्या करना चाहिए? क्यों अक्सर लोग सोचते हैं कि इलाज तो मरीज करा रहा है, बाकी लोगों को क्या जरूरत है?
5: यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को टीबी है, तो बाकी सदस्यों को भी जांच करवाना बेहतर जरूरी है। इससे संपर्क जांच या कॉन्ट्रैक्ट स्क्रीनिंग कहा जाता है, क्योंकि जो लोग मरीज के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, दिन रात एक ही घर में समय बिताते हैं, उनके संपर्क में टीबी के जीवाणु आने की संभावना अधिक होती है। खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग की जांच जरूरी होनी चाहिए। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, घर में एक व्यक्ति को टीबी हो तो पूरे परिवार की जांच जरूरी। यह छोटा सा कदम बीमारी को फैलने से रोक सकता है और कई लोगों की जान बचा सकता है।
4: लेकिन टीकन भाभी, मुझे लगता है कि टीबी की लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा आज भी डर है और शर्म। कई लोग बीमारी छिपाते हैं, जांच नहीं करवाते और दूसरों को भी बताते नहीं।
5: बिल्कुल सही कहा आपने, टीबी का जीवाणु जितना खतरनाक नहीं है, कई बार उससे ज्यादा खतरनाक उससे जुड़ा सामाजिक डर बन जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या कहेंगे, लोग दूरी बना लेंगे, रिश्ते पर असर पड़ेगा। लेकिन सच यह है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं, यह कोई पाप नहीं, यह कोई चरित्र की कमी नहीं, यह एक माने चिकित्सकीय बीमारी है जिसका इलाज उपलब्ध है और लाखों लोग हर साल पूरी तरह ठीक भी होते हैं। इसीलिए बीमारी छिपाने की बजाय उसका सामना करना ज्यादा जरूरी है। समय पर जांच न करवाने का नुकसान सिर्फ मरीज को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समुदाय को भी हो सकता है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने। तो साथियों, आज की पूरी चर्चा से हम क्या सीख लेकर जा सकते हैं?
5: मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता 6 बातें हमेशा याद रखें। पहली, अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा रहे तो जांच जरूर करवाएं। दूसरी बात, टीबी हवा से फैलती है, हाथ मिलाने या साथ खाना खाने से नहीं। तीसरी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में टीबी की जांच और इलाज मुफ्त उपलब्ध है। चौथा, अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी है तो परिवार के बाकी सदस्यों की भी जांच करवाइए। और पांचवी, टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, सहयोग करें, उसका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि इलाज में परिवार और समुदाय का साथ बहुत मायने रखता है।
4: और मैं इनमें से एक छठी बात जोड़ना चाहूंगी। शुरुआत में आपने सरला देवी की कहानी सुनाई थी। उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? यही कि उन्होंने अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। इसीलिए अगर आपका शरीर बार बार कोई संकेत दे रहा है तो उसे अनदेखा मत कीजिए, समय पर जांच करवाइए, यही सबसे बड़ा बचाव है। तो आइए, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम सब लेते हैं मिलकर सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
5: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
5: साफ सफाई स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
4: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
5: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे,
4: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
5: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
4: सेहत सही तो लाभ कई।
5: खांसी रहे 2 हफ्ते से पार, जांच करवाना है समझदार। टीबी हारेगी हम जीतेंगे, इलाज पूरा करा के ही रुकेंगे।
4: श्रोताओं, मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, FM मुरादाबाद 89.6 सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक बीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से। और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। आज का विषय है क्या कहेंगे लोग। अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, अपना टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ खराब कर लेते हैं। और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है और एक हमारी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त हैं और एक और दोस्त हैं, तो मतलब कुल मिला के चार लोगों के टॉपिक पे चार लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने। सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ आरजे, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ। हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। नया जब हम आप लोग FM पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है। आपको देख के लग रहा है कि आज एक नई मेहमान है, मतलब कुछ नया है।
1: कुछ नया है
0: बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारे सुनने वालों को।
1: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल
0: जी
1: छजलैट, और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्विच करी कुछ कारणवश, और मैं जिम ट्रेनर भी हूँ। योगा जिम मेरा पैशन है, योगा मेरा मैं खुद के लिए करती हूँ। हाउसवाइफ हूँ अभी तो फिलहाल मैं।
0: तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है सोच बदलो। जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आजकल हमारा युवा पीढ़ी सब लोग अपने मोबाइल तक ही सीमित रह गए, सबको मोबाइल में घुसने की आदत है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल से बाहर निकल के सोच बदलने की जरूरत है, राइट? और हमारे साथ कुमकुम भी है, रीना भी है, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी थोड़ा हेलो हाय करो इस प्रोग्राम में। हेलो बोलिए जी, सोच बदलो में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच आरजी आनंद
0: जी।
2: मैं कुमकुम आप सबकी प्यारी दोस्त फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैं हमारे नए शो में
0: जिसका नाम है सोच बदलो।
2: जिसका नाम है सोच बदलो।
0: रीना जी आप कुछ बोलेंगी?
3: हेलो एवरीवन, मैं आरजे रीना, आप सभी मुझे जानते हैं और हम ढेर सारी बातें करने वाले सोच बदलो के ऊपर।
0: बिल्कुल जी, तो सोच बदलो में जैसे कि हमने आज टॉपिक उठाया है क्या कहेंगे लोग, तो सबसे पहले श्रोताओं आपको भी पता है जैसे कि मैंने आते ही जिक्र किया, हम अक्सर कोई भी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो शैली जी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर दुनिया का दूसरा इंसान यही सोचता है कुछ भी करने से पहले?
1: पहले तो मैं शैली सिंह आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और चार लोग क्या कहेंगे ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। चार लोग उस समय कहाँ होते हैं कि जब हमारे बच्चे की फीस नहीं जा रही होती है,
0: करेक्ट?
1: वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है। वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है। वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाए। वो चार लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं, वो चार लोग तभी क्यों आते हैं?
0: करेक्ट।
1: तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं? उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे बुरे।
0: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिलाकर इन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, जब जब ये चीजें होती हैं तो ये चार लोग गायब होते हैं, जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग।
1: उन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, वो चार लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को घर नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप चार लोगों की मत सुनिए। चार लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को अपनी अच्छी ये वाला कॉलेज खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके
0: एडवाइस
1: कर रहे हैं कि तब सुनिए आप उनकी। हमारे हेल्थ इश्यूज का कोई अगर हमें अच्छा सजेशन दे रहा है तब सुनिए आप उन लोगों की। हमारे घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसे रोजगार दिला रहे हैं तब सुनिए आप उनकी।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल शैली जी आप बिल्कुल अच्छा कह रही हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है। मुझे भी ऐसी लगता है कि जब बात चार लोगों की आती है तो हम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खुद की खुद ही भूल जाते हैं, और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की जरूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांग अड़ाते हैं, है ना? बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए हैं, मुद्दे की बात यह है। क्यों कुमकुम, कभी तुम्हें लगा कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
2: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
0: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चार लोगों के बारे में?
3: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोगों की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
0: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

0: एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे लोग? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो मुझे बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे बड़ी शर्म आएगी। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगेगा मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। कई बार लोगों के चक्कर में हम जो चीज हम करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं, और इसी पर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो शाली जी, क्या मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है ऐसा कि लोगों को सोच बदलने की जरूरत है, आपको क्या लगता है, क्या हमें चालू के बारे में सोचना चाहिए या अपना फ्यूचर अपना करियर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए?
1: मेरा क्या सभी का मानना यही होना चाहिए कि चार लोगों को साइड करो, अपने करियर पे, अपने फैमिली पे और अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करो। क्योंकि जब आपके पास एवरीथिंग होगा ना, पैसा, पावर सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
1: वो एक सॉन्ग है, राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है कुछ।

0: बीते न जाए रे ना, कुछ तो लोग कहेंगे।
1: ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए, अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलों में।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है? चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं, हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं, मुझे नहीं पता तुम सोचती हो नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे लगता है कि चार लोगों की जरूरत जब आपको पड़ती है वो आपके साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जब आपको जरूरत नहीं होती तब आपके साथ रहते और बोलते यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तेरे साथ था, बस यार बताना चाहिए था ना। मतलब वो सहानुभूति देते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे पास कुछ काम है मैं भी नहीं आ सकता। तो ये है, तो बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया बोलने सुनने के लिए है।
0: बहुत अच्छा बोला रीना आपने, और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
2: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है, लेकिन जब आप परेशान होंगे आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा।
0: करेक्ट,
2: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना हम ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते हैं जो हमारी पसंद की है, वो डालते हैं जो लोगों को पसंद आए।
2: बिल्कुल,
0: है ना, वो इसलिए ताकि कोई डिप कमेंट ना कर दे। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी हम चार लोगों का सोच रहे होते हैं, जबकि हमारा अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया। भाई अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मैं उसका राजा हूँ, तो मुझे क्यों दुनिया के बारे में सोचना? जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वो डालूंगा ना, बट फिर भी हम वहां भी लोगों का सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अगर हमने ये चीज डाल दी तो इस पर लोगों के क्या कमेंट। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है बहुत जरूरत है सोच बदलने की, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगी?
2: मैं तो इस चीज को आनंद
0: एक्सेप्ट नहीं करती,
2: फेस करती हूँ रोज।
0: ओके, फेस
2: मतलब जब से मेरी जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने फेस करा, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी ही नहीं,
0: मतलब इसका
2: और सही मैं जब सुनी ही नहीं हूँ, तो आज मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो भी कहते हैं जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
0: करेक्ट करेक्ट, मुझे लगता है कि श्रोताओं सोच बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी, और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलो का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ, जैसे हम अपना खान पान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम? जरूरी है ना?
1: मैं एक बात कहती हूँ, सुनो
0: प्लीज।
1: तुमने देखा होगा जब इंसान सामने होता है ना, हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते हैं, जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है हम फिर बोलते हैं यार वो इंसान था बहुत अच्छा, लेकिन कभी हमने उसके सामने नहीं बोला होगा। तो आप इतना क्यों सोचते हो यार किसी के बारे में, हम क्यों सोचे किसी के बारे में?
0: करेक्ट करेक्ट,
2: आप दोनों मैम की बातों से मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे, बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
0: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा हाँ, आगे बोलो
2: जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
0: करेक्ट, सही कहा है।
1: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
2: ये बात बहुत अच्छी है कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा, हाँ, चार लोग अच्छे
1: भी होते हैं,
2: चार लोग केवल निगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होते हैं।
0: क्या बात है, इसी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
1: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हमारा जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले हम चार लोग हैं तो हम चार लोगों की एक एक मैसेज तो होनी चाहिए सोच बदलो प्रोग्राम को लेकर। जी शैली जी, आपका क्या संदेश होगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए?
1: मेरा संदेश तो सबसे पहले महिलाओं के लिए है कि सबसे पहले उन्हें बदलने की जरूरत है। हमारी बेटी या हमारा बेटा कहाँ जाएगा, किसके साथ शादी करेगा, कैसे पढ़ेगा, तो पहले वो अब जो घर की लीडर है वो है, उन्हें सोच बदलिए कि आपने बच्चों को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, उनको अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बच्चों को ठीक लगता है वो करने दीजिए।
0: करेक्ट। और आप कुमकुम क्या कहेंगी?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि मैम ने कहा महिलाओं के लिए, मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने दीजिए जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
0: रीना?
3: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करो आप उनको ताकि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, हम चार लोग चार राय रख रहे थे अपनी अपनी, मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा एपिसोड। फिलहाल हमारा जाने का समय हो रहा है, जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक चाहा दुनिया ने हर बार, फिर भी सपनों ने उड़ना नहीं छोड़ा, जो डर गए लोगों की सोच से उन्होंने खुद को जीना नहीं सीखा। तो आप जो है जीना सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को छोड़िए, अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया ऐसी है, आगे पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूं कि जब आप

0: आगे बढ़ते हो ना तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव ही चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं हम जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कुमकुम, थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर, तब तक के लिए सुनते रहिए
1: 89.6 FM रेडियो मुरादाबाद।
0: क्या बात,
2: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए गाइस, बाय बाय।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। दोस्तों, आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों, आज हम अपनी धरती की आवाज सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास के पेड़, नदियाँ और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए, आज इस यात्रा में हम अपनी धरती को बेहतर बनाने की बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, बल्कि हम सब हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, मिट्टी, जीव जंतु, ये सब कुछ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। क्या आपको गर्मी के दिनों में असहनीय गर्मी महसूस होती है? क्या आपको सांस लेते हुए प्रदूषण महसूस होता है? जरूर होता होगा, क्योंकि आज का हवा पानी सब कुछ बदल चुका है। भारत में वायु प्रदूषण, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन सबसे बड़े मुद्दे हैं। नदियाँ गंदी हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ये सब इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, क्यों ना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमें प्रकृति से जोड़ता है।

0: Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांभानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांभानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांभानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रांभानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी

0: लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगे। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त हो रहा है आपके अपने कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप।

0: 15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के उन खास पहचान से जो परंपरा, स्वाद और विकास का अनोखा संगम है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। आज लेकर आई हूं एक ऐसे स्वाद की कहानी जो दशकों से लोगों की जुबान पर राज कर रही है। एक ऐसा स्वाद जिसके बिना मुरादाबाद की पहचान अधूरी मानी जाती है।
0: जी हाँ दोस्तों, जब भी मुरादाबाद का नाम आता है तो सबसे पहले याद आती है पीतल नगरी। दुनिया भर में अपने पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए मशहूर मुरादाबाद आज एक और खास पहचान बना चुका है।
1: बिल्कुल, अब मुरादाबाद सिर्फ पीतल के लिए नहीं बल्कि अपनी मशहूर मूंग दाल के लिए पूरे देश में जाना जाता है।
0: सुबह की हलचल, बाजारों में लोगों की चहल पहल और दुकानों से उठती गर्मा गर्म मूंग दाल की खुशबू, आय हाय हाय,
1: ऐसा लगता है जैसे हर गली कह रही हो मुरादाबाद आए हो तो मूंग दाल चखे बिना मत जाइए।
0: यही कारण है कि आज देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग यहाँ की मूंग दाल का स्वाद लेने जरूर पहुँचते हैं।
1: और अब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से इस पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्थानीय खानपान और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं
1: और इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना, जिसके तहत मुरादाबाद की मूंग दाल को विशेष पहचान दी जा रही है।
0: दोस्तों, आखिर क्या खास है मुरादाबाद की मूंग दाल में?
1: इसका राज छुपा है इसी की पारंपरिक विधि और बेहतरीन मसालों में।
0: सबसे पहले चुनी जाती है उच्च गुणवत्ता वाली धुली हुई मूंग दाल, फिर उसे साफ करके खास तरीके से भिगोया जाता है।
1: इसके बाद धीमी आंच पर दाल को इस तरह पकाया जाता है कि उसका हर दाना मुलायम रहे लेकिन टूटे नहीं।
0: पर शुरू होता है असली जादू।
1: देसी घी या शुद्ध तेल में जीरा, हींग, हरी मिर्च, अदरक और खास मसालों का तड़का लगाया जाता है।
0: जब यह तड़का दाल में मिलता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है।
1: ऊपर से डाला जाता है हरा धनिया, नींबू का रस और कभी कभी हल्की सी देसी घी की धार।
0: बस यही बनाती है मुरादाबाद की मूंग दाल को सबसे अलग।
1: कहते हैं कि जिसने एक बार इसका स्वाद चख लिया वह दोबारा मुरादाबाद आए बिना रह नहीं पाता।
0: खास बात यह है कि यहाँ की मूंग दाल सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी होती है।
1: इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यह स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखती है।
0: मुरादाबाद की कई पुरानी दुकानें पिछले 50 से 70 वर्षों से इसी पारंपरिक स्वाद को बनाए हुए हैं।
1: पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है यह कला, आज भी उसी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रही है।
0: सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की हल्की भूख तक मूंग दाल हर समय लोगों की पहली पसंद बनी रहती है।
1: कई लोग इसे कुरकुरी नमकीन के रूप में पसंद करते हैं, तो कई लोग गर्मा गर्म मसालेदार दाल के रूप में।
0: यही विविधता इसे हर उम्र के लोगों का पसंदीदा व्यंजन बनाती है।
1: दोस्तों, किसी भी पारंपरिक व्यंजन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सही पहचान भी जरूरी होती है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य यही है कि हर जिले के प्रसिद्ध व्यंजन को नई पहचान मिले।
1: इसी के तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी भी दी जा रही है।
1: अब मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं नहीं रहेगी बल्कि देश और विदेश के ग्राहकों तक पहुंचेगी।
0: इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, छोटे व्यापारियों की आय बढ़ेगी और महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार होंगे। सोशल मीडिया पर भी अब हैशटैग मुरादाबाद दाल तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
1: लोग इसकी तस्वीरें, वीडियो और स्वाद का अनुभव साझा कर रहे हैं।
0: एक समय था जब मुरादाबाद को सिर्फ पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था,
1: लेकिन आज यह शहर अपने पारंपरिक स्वाद, संस्कृति और स्थानीय व्यंजनों के कारण भी नई पहचान बना रहा है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप मुरादाबाद आएं,
1: वहां के शानदार पीतल उद्योग को जरूर देखिए,
0: शहर की ऐतिहासिक विरासत को जानिए
1: और सबसे जरूरी,
0: मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल का स्वाद जरूर चखिए,
1: क्योंकि यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं
0: बल्कि मुरादाबाद की मेहनत, परंपरा और मेहमान नवाजी की पहचान है।
1: और जब स्थानीय स्वाद को विकास का साथ मिलता है
0: तो एक जिले की पहचान पूरे देश की शान बन जाता है।
1: विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
0: सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो घर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण पर। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि घर में सबसे पहले महिलाएं उठती हैं और सबके बाद मैं ही सोती हैं। सुबह बच्चों का टिफिन बनाना, घर का काम संभालना, कई महिलाएं तो ऑफिस भी जाती हैं, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी कंधों पर होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या महिलाएं अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रखती हैं जितना बाकी लोग रख पाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। कई बार महिलाएं जल्दी जल्दी में खाना खा लेती हैं, कई बार अपना खाना ही छोड़ देती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और अपने खान पान में कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकती हैं।
1: क्या बात है, बहुत जरूरी बात तुमने कही आज खुशी। सो अब हम बात करते हैं पोषण का महत्व। महिलाओं के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार महिलाएं अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं पहले पूरे परिवार को खाना परोसती है और बाद में खुद खाती है। कई बार जब तक उनकी बारी आती है तब तक खाना ठंडा हो जाता है या कम बचता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शरीर को ताकत देने के लिए सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने खाने पीने में हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध और अनाज जरूर शामिल करना चाहिए। ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण देती है और शरीर को मजबूत बनाती है। इसी के साथ कोशिश करेंगे कि दिन में 3 बार सही समय पर खाना जरूर खाएं। खाना छोड़ना या देर से खाना खाना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है।
0: बिल्कुल रीना जी, आप सही कह रही हो। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या जो कई महिलाओं में देखी जाती है वह है आयरन की कमी। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी होती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि उन्हें हर समय थकान महसूस होती है। इसका एक ही कारण है, शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। इसीलिए खाने में ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, दाल और हरी पत्तीदार सब्जियां। अगर हम अपने खाने में इन चीजों को शामिल करेंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी और कई बीमारियों से भी बचाव होगा।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है तुमने खुशी। और अब हम बात करेंगे कैल्शियम का महत्व। दोस्तों, महिलाओं के लिए कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती है और आगे चलकर जोड़ों में दर्द या अन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को अपने खाने में दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सूखे मेवे का जरूर शामिल करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी होता है, लेकिन सच यही है कि महिलाओं के लिए भी दूध और कैल्शियम बहुत जरूरी होता है।

0: ताज़ा रखता है
1: और शरीर को गंदगी से बाहर निकालने में मदद करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे अपने पास पानी की बॉटल रख सकती हैं, ताकि आपको याद रहे और आप समय समय पर पानी पीती रहें।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने कि पानी पीना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे आराम की जरूरत। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, सच बताऊं, औरतें आराम मानो तो उनके जिंदगी में है ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया है, ये कोई जादू है या क्या है कि उनको थकान कभी फील ही नहीं होती है। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य के लिए आराम और नींद भी बहुत जरूरी होती है। कई महिलाएं दिन भर काम करती हैं और रात में भी देर तक जागती रहती है, इससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब शरीर को सही आराम मिलता है तो मन भी खुश रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप कोई भी काम फिर आसानी से कर पाएंगे। कहते हैं ना, जब तक आपकी बॉडी आराम नहीं कर पाती है तब तक आप कोई भी काम करिए, आप अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपका सर भारी रहेगा और पूरा दिन लगेगा कि यार क्या ही करूं क्या ना करूं।
0: सर में भी दर्द होने लगता है रीना।
2: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही खुशी ने। आप जैसे सुबह उठोगे, जब तक आपके अंदर थकान होगी ना, आपके सर में दर्द तुरंत बन जाता है। इसीलिए सोना, आराम करना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में।
1: प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लीजिए, ताकि आपका बॉडी अगले दिन के लिए तैयार रहे और एनर्जेटिक रहे।
2: बिल्कुल। सो मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बस आप यूं ही बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ महिला मंच शो में। और बहुत ही शानदार ये गाना आप सभी को हमारी प्यारी वुमनिया के लिए डेडिकेट है।

दोस्तों, रीना जी ने अभी बात की थी आराम के बारे में और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। जी हाँ, सुबह सुबह दोस्तों देखिए, हमारा जीवन जो है ना, वो हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक धन है और उस धन को हमें कैसे एकत्रित करना है, कैसे इकट्ठा करना है, वो हम कैसे करेंगे आपको पता है, जब हम आप अपने फिटनेस का ख्याल रखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही असली धन है। और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं रोज 20 से 30 मिनट की सैर करें या हल्का फुल्का योग करें तो

0: स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसीलिए थोड़ा समय अपने लिए निकाले, अपने मनपसंद गाने सुने, किताब पढ़े या दोस्तों से बात करें। ये छोटी छोटी चीजें मन को खुशी देती है। और बिल्कुल सही बात है, हम क्या है ना, पूरे परिवार की जिम्मेदारी में ना खुद की मनपसंद चीजें भूल ही जाते हैं।
1: अच्छा, इसीलिए आपने बात की है रीना कि भूल ही जाते हैं अपनी दुनिया, अपनी फैमिली को मतलब केयर करने में, उनको
0: संभालने में।
1: तो ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ना तो अभी आपकी शादी हुई है और ना ही आपके बच्चे हैं, आप अभी अकेली हैं, तो आप अपनी मनपसंद की चीजें क्या करती हैं जब आप फ्री रहती हैं?
0: देखो, घर पे भी रहती हूँ तो मम्मी से जो बोलती हूँ वो बनाती हैं। और मम्मी से मैं कभी पूछती हूँ ना क्या आपको क्या पसंद है, तो बोलती है जो तुम्हें पसंद है मैं वही खा लूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज ऐसा नहीं चलेगा, आज आप बताओ कि आपको क्या पसंद है।
1: हाँ।
0: तो मेरी मम्मी को ज्यादा कुछ नहीं, बस खीर।
1: अरे वाह, खीर
0: बहुत पसंद है मेरी मम्मी को, सच में। हाँ, वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खीर बना दो मेरे लिए। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए ना एक बार खीर बनाया और मेरी मम्मी को सच में बहुत पसंद आया। तो मेरी मम्मी कहती है कि जब भी अगर तू खीर बनाएगी ना घर में, मतलब खीर बनाने की बारी आएगी तो तू ही बनाएगी। तो मैं अपने घर में वही बनाती हूँ, और बल्कि मम्मी ने ही सिखाया मुझे खीर बनाना भी।
1: हाँ।
0: तो देखिए, मतलब हम अपने घर में ना अपने साथ साथ मम्मी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है,
1: क्योंकि
0: उन्हीं की वजह से हमारा परिवार आगे बढ़ता है।
1: एग्जैक्टली। और फिर रीना, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो सबका ख्याल रखती है तो उनका भी ख्याल रखने वाला कोई चाहिए ना।
0: बिल्कुल। और आप गाइस ये पूछोगे ना अपनी मम्मी से कि आज आपकी पसंद का खाना बनाते, बताओ क्या खाना है आपको, तो उनके जो चेहरे पर खुशी होगी ना, नेक्स्ट लेवल वाली होगी खुशी। आगे हम बात करते हैं,
1: आगे हम बात करने वाले हैं

0: अभी स्वास्थ्य के ऊपर अब मैं बात करने वाली हूँ, नियमित जांच।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जांच की भी। अच्छा रीना, आपको पता है हमारे जो घर की वुमेन होती है ना, बुमनिया जिसको आप बोल रही हैं, वो सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अपना ध्यान नहीं रख पाती है। लाइक जैसे छोटी छोटी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी वीकनेस फील होती है, तो वो जांच नहीं करवाती है, वो नजरअंदाज कर देती है कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ये जो चीजें होती हैं, जो ये बड़ी प्रॉब्लम कब बन जाए, कब बड़ा रूप ले लें, कुछ नहीं पता है।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। और मैं घर की सभी वुमनिया से के रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी आप ये ना सोचें कि घर के नुस्खे से ही हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी होता है। सो श्रोताओं, हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद फिर से कनेक्ट होंगे और करेंगे और बातें, और फिर हम बोलेंगे आपको बाय बाय।

0: जाने की इजाजत। लेकिन जाने से पहले आज के शो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, अगर महिला स्वस्थ है, खुश है, तो पूरा परिवार भी खुश और स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी प्यारी वुमनिया के जो स्वास्थ्य हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और घर में जितने भी वुमनिया हैं, बस एक दूसरे की हेल्प करें, साथ रहे, क्योंकि आप साथ रहकर आगे बढ़ोगी तो फैमिली और भी आगे जाता है। तो इसीलिए हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो परिवार और समाज दोनों स्वस्थ रहेगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। तो हम आप सभी के साथ फिर से कल कनेक्ट होंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। अभी के लिए दीजिए जाने की इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। यूं ही पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और मौसमी फल खाते रहिए, खरबूज, तरबूज, बहुत से ऐसे फल है, कीवी कहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाल, तो इसीलिए कीवी का सेवन करिए जिसे आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है, और साथ ही साथ अंजीर जो पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, सो उसको भी आप जरूर खाएं। और एक और सब्जी है जो सभी फ्रूट से 10 गुना ज्यादा उसके अंदर विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो है मोरिंगा, जो लंबे फलियां होती हैं, और मोरिंगा का आप सूप बनाकर पीजिए, सब्जी बनाकर खाइए, सभी फलों से भी ज्यादा गुण होता है उसके अंदर, सब्जियों से ज्यादा पावर होती है उसके अंदर, सो इसको जरूर आप अपने डाइट में शामिल करें, इसको शामिल करना बहुत जरूरी है। सो चलिए गाइस, बाय।
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
6: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
5: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए, ekcc.nabard.org।
6: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
5: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए,
6: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन,
5: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
6: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
5: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
6: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
5: EKCC, साख से समृद्धि।
6: नियम और शर्तें लागू।

0: दोस्तों आप तन्हा कहाँ हैं, खुशी आपके साथ आ गई है ना, आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है आप ही के अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियां भी मिलती हैं, एंटरटेनमेंट का डोज भी मिलता है एंड उसके साथ साथ यहाँ पर फन भी होता है और आपको बातचीत करने का हमसे मौका भी मिलता है। एवरी डे आप 3 से 5 हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इस फोन इन कार्यक्रम में और अपनी पसंद के गाने भी सुन सकते हैं। फिलहाल मैं आपको समय बता देती हूँ श्रोताओं, वक्त हुआ है 3:10 स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ और मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी। और हमारे तमाम श्रोता इस समय में सुन रहे हैं, बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और अभी अपने श्रोताओं से हम बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले एक प्यारी सी लाइन है आप सभी के लिए। दोस्तों मुस्कुराहटों का मौसम यूं ही बना रहे, मुस्कुराहटों का मौसम यूं ही बना रहे, हर दिल का हर सपना सजा रहे, जो भी सुन रहा है इस वक्त हमारी आवाज उसकी जिंदगी में खुशियों का कारवां चलता रहे। तो चलिए करते हैं ये प्यारा सा सफर, इस प्यारे से सफर की खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं, अपने फर्स्ट कॉलर से बात करते हैं और जानेंगे उनका गाना। अगर आप भी कोई ट्रैक आपने सोच के रखा है इस वक्त कि आज तो मैं फोन लगाऊंगा एफएम मुरादाबाद में और ये वाला ट्रैक सुनूंगा या सुनूंगी, तो हाँ दिल थाम के बैठिए, अगली बारी आपकी भी हो सकती है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप?
1: गुड आफ्टरनून।
0: वेरी गुड आफ्टरनून, अपना नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है।
0: कार्तिक गुप्ता, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: लाइन पार से।
0: लाइन पार से, ओके। तो बताइए लाइन पार का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो ठीक हो रहा है इस समय।
0: अच्छा।
1: है कि बाहर घूम सकते हो, ऐसा मौसम हो रहा है।
0: ओके, सुहाना मौसम है।
1: हाँ।
0: तो आप बताइएगा कार्तिक, फैमिली में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर और आपकी तबीयत ठीक है?
1: फैमिली में सब ठीक है, बस मेरे थोड़ा फीवर आ गया था।
0: अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि मुझे छोड़कर खुशी जी सब लोग ठीक हैं?
1: हाँ।
0: तो अभी कैसा है आपका फीवर?
1: सही है, वो अभी गोली खाई थी एक, तो अब सही है थोड़ा बहुत।
0: अच्छा, अपना ख्याल रखो ठीक है, मानसून स्टार्ट हो चुका है और मौसम हाँ। बदल रहा है ना इस वक्त, विशेष ध्यान रखने हाँ। की जरूरत है।
1: मम्मी भी यही कह रही थी।
0: हाँ, लेकिन आप बात नहीं मानते हो, ये गलत बात है आपकी।
1: हाँ।
0: तो अब अपनी मम्मा की बात मानना ठीक है। और बताओ कौन सा गाना सुनोगे आज आप?
1: वो जरा सा सॉन्ग सुनना है।
0: जरा सा नहीं, पूरा सॉन्ग सुनवाएंगे हम।
1: मतलब सॉन्ग का नाम जरा सा है।
0: अच्छा ओके, मुझे लगा कि आप बोल रहे हो जरा सा सॉन्ग सुनवाना। मैम
1: जरा सा सॉन्ग है, पूरा गाना सुनाना।
0: जरा सी दिल में दे जगह तू, है ना, ये वाला है ना। ओके चलो कार्तिक सुनवाते हैं ट्रैक आपको, थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: ओके बाय
0: बाय। तो चलिए ये तो कार्तिक से हमारी बात हुई है, नेक्स्ट कॉलर आप ही हमारे शो के हो सकते हैं एवरीवन, बस आपको शिद्दत के साथ नंबर ट्राई करना है और मुझे यकीन है कि आपका कॉल जल्दी से शामिल हो जाएगा। फिलहाल ही प्यारा सा गाना सुनते हैं, उसके बाद मैं आपसे और भी बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। आज हम एक गेम भी खेलते हैं ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो कॉल लगा लीजिएगा।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. देखिए, सुहाने से मौसम में अगर अपने पसंद का गाना हो जाए ना, तो फिर दिन और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है. और खुशी आपके इस दोपहर को बनाने के लिए आई है और भी ज्यादा खूबसूरत. बस दोस्तों, आपको एक छोटा सा काम करना होगा. और वो क्या काम है मैं बता देती हूँ. आप निश्चिंत रहिए, परेशान बिल्कुल भी मत होइए. आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, हाँ हाँ मोबाइल, इसी पर आपको हमें कॉल लगाना है. नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896. और आप मुझे बता सकते हैं आज के मौसम के अनुसार आपको कौन सा गाना सुनना है. बताओ बताओ, जो आपके दिल को खुशी देता हो, हैप्पीनेस देता हो. और अभी बात करती हूँ मैं अपने अगली कॉलर से. कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुई है? हेलो फरमाइश. हेलो, हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अलीशा है.
0: अलीशा, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं मुरादाबाद से बात कर रही हूँ.
0: अच्छा, आप वही अलीशा हैं क्या जो मेरे को एवरी मॉर्निंग मैसेज करते हैं?
1: अलीशा.
0: अरे वाह, क्या बात है, आज तो बात भी हो गई अलीशा जी से. बताइए कैसे हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया.
0: क्या करती हैं आप?
1: कल भी आपको वो मैसेज किया था, तो गाने को बोला था मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट.
0: या आई रिमेम्बर, मुझे याद आया अभी. तो कैसा रहा फंक्शन मैम?
1: फंक्शन बहुत अच्छा रहा.
0: ओके, जम की पार्टी वार्टी चली है? हाँ हाँ. आप भी बहुत सुंदर लग रही थी.
1: आपने वहाँ पर देखा होगा?
0: हमने अपनी मन की आंखों से देखा है आपको.
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम. बताइए अलीशा जी, आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: मैं गाने सुनना चाहती हूँ अपने
0: सिस्टर
1: के लिए.
0: मेरी सिस्टर जी का मंगनी हुई थी. हाँ, बताइए. तो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? कोई डिसाइड किया है आपने?
1: हम आपको इसको भी कहूँ सुना दीजिए.
0: अच्छा, ओके, ये जिम्मेदारी आपने खुशी को दी है?
1: जी मैम, मैंने आप भी को दी है.
0: अच्छा, क्या नाम है आपकी सिस्टर का, बताइए?
1: मेरी सिस्टर का नाम है गुलाबशा.
0: गुलाबशा, बहुत ही प्यारा सा नाम है. और आप क्या करती हैं मैम, अपने बारे में बताइएगा.
1: मैं
0: अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है
1: जी, जी.
0: तो आगे लाइफ में क्या करना है?
1: बस मुझे टीचिंग करनी
0: है. अच्छा, वेरी गुड. हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट. आप टीचिंग करें अच्छे से, बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे खूब आगे जाएं. जी, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया. हम सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको. मोस्ट वेलकम. तो चलिए अलीशा जी, हल्का हल्का शर्मा भी रही हैं. थैंक यू सो मच आपने कॉल किया. तो चलिए अलीशा जी की पसंद पर सुनते हैं एक शानदार सा ट्रैक. तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइए एवरीवन. नंबर हमारा रहेगा 9837896896. और अभी कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया है, तो एड ब्रेक के बाद हम सुनवाएंगे एक प्यारा सा गाना जो अलीशा जी की सिस्टर को हम डेडिकेट करने वाले हैं स्पेशली. तो सुनते हैं पहले कुछ एड ब्रेक, उसके बाद बातचीत करेंगे. आप भी फोन लगाओ जल्दी से.
2: योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर. चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री. साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है. ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट. विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद. कॉल नाउ 9412211111.

0: से 15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसिंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
4: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
3: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: कॉल 9045912348।

0: हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं।
1: अच्छा अच्छा, वही जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर हैं।
2: जी जी,
1: हाँ।
0: और हमारी भाभी जी भोपाल की हैं।
1: अरे हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास ही है।
2: आप लीजिए ना।
1: अरे आप यहाँ आइए।

हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा. और ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी विवाह. क्या खूबसूरत एहसास था ना इस गीत में. कभी कभी दो अजनबी जब मिलते हैं तो किस्मत उनकी कहानी पहले ही लिख चुकी होती है. साथियों, यही मासूमियत और सच्चा प्यार का एहसास हमें फिल्म विवाह में देखने को मिलता है, मिला है. दोस्तों, साल 2006 में रिलीज हुई इस प्यारी फैमिली रोमांटिक फिल्म में शाहिद कपूर और अमृता राव की सादगी भरी केमिस्ट्री ने हर किसी का दिल जीत लिया. फिल्म ने दिखाया कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि भरोसे, सम्मान और साथ निभाने के वादे से मजबूत बनते हैं. यही वजह है कि आज भी विवाह लोगों की सबसे पसंदीदा फैमिली फिल्म में गिनी जाती है. और दोस्तों, गाने भी एक से बढ़कर एक हैं. मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. ये मौका खुशी आपको देती है. कोई बहाना नहीं चलेगा, सीधा आपको फोन लगाना है. नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896. और अभी तो हमारे पास कॉल आया था, लेकिन मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिएगा. जिनका भी कॉल मंडे में लग चुका है वो प्लीज कॉल ना करें, ताकि नए नए लिसनर्स को भी मौका मिल जाए, वो भी इजीली कॉल लगा पाए. एंड दोस्तों, जो भी अभी हमें न्यू लिसनर्स जिन्होंने अभी ऑन किया रेडियो, ज्वाइन किया है हमें, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं. नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896. ये हमारे स्टूडियो का मोबाइल नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिएगा एंड अपने पसंद का गाना हमें बताएगा. और तब तक मैं सुनवाती हूँ आपको एक और बहुत ही प्यारा गाना, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना अलका याग्निक जी साथ में सोनू निगम जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। म्यूजिक डायरेक्टर थे जतिन ललित जी एंड लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानेंगे कि उनकी पसंद का आज कौन सा गाना है जो वो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं ना, तो हमें फोन लगा सकते हैं। बहुत सिंपल सा आपको काम करना है, हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर आपको अपने फोन में डायल करना है। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: कपिल कुमार।
0: कपिल कुमार, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: मुरादाबाद से।
0: मुरादाबाद से बात कर रहे हो?
1: जी,
0: बताइए कपिल, क्या करते हैं आप?
1: मैं पढ़ाई करता हूँ।
0: अच्छा, अभी स्टडी कर रहे हो?
1: जी हाँ।
0: ओके, और रेडियो सुनते हो, कैसा लगता है आपको?
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए आपने कॉल भी किया है ना?
1: हाँ जी।
0: तो बताओ आज कौन सा गाना सुनोगे आप?
1: मौसम का जादू
0: है मौसम। अच्छा, फ्रॉम द मूवी हम आपके हैं कौन, कई गाना आप सुनना चाहते हैं। बाहर का मौसम भी बहुत ही प्यारा है ना?
1: हाँ जी मैम।
0: अच्छा चलो, तो ठीक है, सुनवाते हैं ये मौसम का जादू है मितवा। तो दोस्तों, मौसम वैसे जादू तो दिखा रहा है, कभी धूप हो जाती है तो कभी बादल आ जाते हैं, ठंडी हवाएं तो चली रही है, लेकिन बारिश बहुत लुका छुपी खिल रही है। बारिश क्या करती है, कभी आ जाती है तो कभी चली जाती है ना। हम तो सोचते हैं जैसे ही बारिश आती है तो हम खुश हो जाते हैं, तुरंत खुशी मतलब झूमने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है ओहो बारिश तो बंद हो गई है, मेरा तो नहाने का मन था बारिश में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बट कोई बात नहीं दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर से बारिश होगी, बस आप बने रहो, सुनते रहो, चिपके रहो FM मुरादाबाद 89.6 पर अपने फेवरेट गाने, और आप मुझे कॉल भी लगाओ बिना किसी देरी के, हम इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल ये गाना सुनो, बहुत ही प्यारा है, हम आपके हैं कौन, फ्रॉम द मूवी।
2: 5 4 3

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: और एडमिशन कॉल 9639004077
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद कॉल करें 7055070552
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पील या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई जिग करो स्वच्छता की जिद करो

सच में दोस्तों, मौसम का जादू तो है। इतना खूबसूरत सुहाना सा मौसम है, हवाएं भी चल रही हैं, और जब मौसम अपना जादू दिखाता है ना, तो फिर चारों तरफ प्रकृति में एक अलग ही एहसास होता है ना। इसलिए दोस्तों, मैं भी आपसे कहती हूँ कि प्रकृति के साथ कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, एंड अगर आपको भी पेड़ पौधे लगाने का शौक है तो लगाइए, नहीं है तो भी लगाइए, क्योंकि जब हम नेचर के साथ

0: कनेक्ट होते हैं ना तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और सुबह सुबह जब 5 बजे उठकर वॉक करने जाते हैं, कोई साउंड नहीं होती, कोई गाड़ियां नहीं होती हैं, सिर्फ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। और सुबह सुबह बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं ताकि आपको फिट एंड फाइन रख पाएं अपने आप को। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी प्रकृति से जुड़िए, पेड़ पौधे लगाइए और उनकी देखभाल भी कीजिए। ये मानसून बहुत अच्छा होता है समय पेड़ पौधे लगाने का, तो आप लगा सकते हैं जो भी आपका फेवरेट ट्री है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो फरमाइश।
1: हाय दी, कैसी हो आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, अपना नाम बताइएगा।
1: मैं दरक्षा फातिमा बात कर रही हूँ।
0: दरक्षा फातिमा बात कर रही हैं, बताइए दरक्षा जी, कैसे हैं आपकी फैमिली में सब लोग?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी फैमिली में भी सभी बहुत अच्छे हैं।
0: ओके, और बताइएगा क्या हो रहा है, आज मौसम कैसा है?
1: मैम माशाल्लाह मौसम तो बहुत ही अच्छा है।
0: अच्छा, ओके, मतलब खुशनुमा मौसम है ना?
1: जी
0: जी, बताइए दरक्षा, आप क्या सुनना चाहती हैं आज?
1: जी मैम, आज सॉन्ग है हंसी बन गए।
0: ओहो हो, कौन बन गए हैं आपकी हंसी? हाँ,
1: मेरी बेस्टी है ना।
0: अच्छा, क्या नाम है आपकी बेस्ट फ्रेंड के, बताइए जरा।
1: रुकैया फातिमा।
0: रुकैया फातिमा, ओके। तो
1: उनके लिए एक शायरी है।
0: हाँ अर्शाद, बिल्कुल सुनाइएगा।
1: मेरी चेहरे की हंसी हो तुम, मेरे दिल की हर खुशी हो तुम, मेरे होठे की मुस्कान हो तुम, धड़कता है ये दिल जिसके लिए वही मेरी जान हो तुम।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें आपने अपनी फ्रेंड को डेडिकेट की हैं।
1: जी,
0: तो सुनवाते हैं ये प्यारा सा गाना, कुछ और कहना चाहती हैं आप?
1: जी मैम, मैं नाम लेना चाहती हूँ।
0: हाँ बताइए।
1: मेरी बेस्टी रुकैया फातिमा और मेरी सिस्टर है अफरोज फातिमा, नजमा अपनी, राबिया और...

दोस्तों अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना और इस खूबसूरत ट्रैक में, हाँ जी, इस खूबसूरत गाने में बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया इमरान हाशमी, साथ में विद्या बालन जी ने। हमारी अधूरी कहानी से प्यारा ट्रैक आपने सुना और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वक्त भी बता देते हैं। समय हुआ है 3:00

0: हो जाती है। हाँ
1: हाँ मैम ऐसा ही होता है, लेकिन मैं हर बार यही देखती हूँ। बिल्कुल आप सही कह रही हो।
0: एक्चुअली मैंने सुबह सोचा कि आज स्टूडियो जाऊंगी तो बारिश की बात ही करूंगी, बारिश के ऊपर ही कोई टॉपिक आज हम लेकर आने वाले हैं। लेकिन जैसे ही मैं तैयार होकर स्टूडियो आने के लिए रेडी हुई तो क्या हुआ मैम, बारिश बंद हो
1: हाँ
0: गई मेरा ऊपर। हाँ जी
1: ऐसा ही हुआ।
0: हाँ ऐसा ही हुआ। और मैं सोचती रह गई कि आज मैंने क्या क्या प्लान किया था, सब बेकार हो गया। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बारिश आएगी तब अपने श्रोताओं से बात करेंगे इस टॉपिक पर।
1: बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, बारिश सब झलक दिखलाने को आती है, मुझे चली जाती है एकदम, बस
0: हाँ ऐसा ही हो रहा
1: इसकी
0: है।
1: वजह से ही हो जाता है। मतलब थोड़ी राहत मिलती है, बादल आते हैं, बारिश आती है,
0: फिर उसके
1: नहीं
0: बाद
1: होती
0: और ज्यादा गर्मी हो जाती है।
1: और ज्यादा गर्मी हो जाती है। बस
0: उम्मीद तो यही है कि
1: सोचो
0: बारिश हो जाए।
1: कि मतलब हाँ हम सोच रहे हैं कि मतलब बना भी नहीं पाएंगे, इतनी जल्दी बारिश चली जाती है।
0: चली जाती है, इतना हम सोचते ही इतना बारिश चली जाती है आकर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
1: हाँ क्या पकौड़े बनाए, पकौड़े बनाए, अरे बारिश चली जाती है।
0: आप डिसाइड करते रह जाते हो और वो आकर चली भी जाती है।
1: ऐसा ही हो रहा है अभी
0: जी
1: तक तो।
0: तो नीतू जी आप बताइएगा, आज ना आप ऐसा करना, मतलब आज नहीं, आप ना पहले ही डिसाइड करके रख लेना कि क्या बनाना है, और जैसे ही बारिश आएगी फटाफट से सारी चीजें रेडी कर लेना, ठीक है।
1: हाँ यही तो होता है, इतनी देर में रेडी नहीं कर पाते, तैयारी नहीं कर पाते, तो बारिश कभी चक्कर हो जाती है।
0: तो आज बताइएगा कौन सा गाना सुनने का मन है आपका।
1: गाने सुन रहा है मैम, कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, वर्षा एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। हाँ
0: ओए होए होए क्या बात है, बड़ा ही प्यारा गीत चुना है आज आपने। मिलन अभी आधा अधूरा है, विवाह मूवी का गाना है ना
1: जी, विवाह मूवी का गाना।
0: जी। आपने फिल्म देखी है ना मैम,
1: हाँ बिल्कुल
0: कितनी
1: देखी
0: बार
1: है
0: देखी है,
1: मैंने,
0: कितनी बार देखी है,
1: देखी
0: मतलब काउंटिंग नहीं हो सकती इतनी बार देखी है।
1: हाँ बिल्कुल, जितनी बार देखो अच्छी भी लगती है।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस फिल्म से मन नहीं भरता है। लाइक 90s की फिल्में जितनी भी हैं बहुत ही प्यारी हैं।
1: हाँ बहुत प्यारी है, एक वो है हम साथ साथ, मतलब ये जितनी बार देखो इतनी अच्छी भी लगती है।
0: हाँ हम साथ साथ, हम आपके हैं कौन, कभी खुशी कभी गम, कुछ
1: बिल्कुल
0: कुछ होता है।
1: हाँ बहुत प्यारी लगती है।
0: हाँ और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगी
1: हाँ वो नाम आती रहती है, अच्छी लगती है।
0: अच्छी लगती है। एग्जैक्टली राइट मैम, मुझे भी बहुत प्यारी लगती हैं। तो चॉइस तो हम दोनों की मिल गई है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि स्टूडियो कब आएंगे आप हमसे मिलने के लिए। हाँ बताइए।
1: यो मैम देखो जल्दी आ जाएंगे।
0: अच्छा जल्दी आएंगी, ओके ठीक है मैम,
1: जल्दी आने की कोशिश करेंगे।
0: हम आपकी ट्रेन बुक कर देते हैं, आप आ जाइएगा।
1: नहीं यार पैदल भी आ सकते हैं, ट्रेन की जरूरत नहीं है। हाँ
0: अच्छा पैदल आ फिर इतना वेट क्यों करा रहे हो आप हमें, ये बताओ, इतना इंतजार करवाते हैं।
1: नहीं आप आ जाओ।
0: अच्छा हम आ जाएं, वाह वाह वाह, ठीक है आपने बुलाया हम चले आए। ओके थैंक यू सो मच नीतू मैम, आपने हमें कॉल किया, बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ बातचीत करते हैं, हमें कॉल करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आता होगा हमारा कार्यक्रम।
1: मतलब जानकारी बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें।
0: जी मैम अभी भी लगता है कुछ काम में व्यस्त हैं आप, है ना।
1: नहीं और काम तो मतलब वहाँ रहते ही है घर में।
0: हाँ मुझे मालूम है, पीछे से साउंड भी आ रही है। चलिए आप अच्छे से काम कीजिएगा और खूबसूरत गाने का आनंद लीजिए। जी मोस्ट वेलकम। तो चलिए ये प्यारा सा गाना सुनते हैं दोस्तों, मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: सिर दर्द, लकवा, रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए, ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन,
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC, साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है दोस्तों, जम की डांस कर लिया ना आपने। गुड इवनिंग, 4:11 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में खुशी आपके साथ है और अभी आपने ये प्यारा सा गाना सुना। अभी बात करते हैं अपने अगली कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम, नमस्ते।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्ते। क्या नाम है आपका? नेहा जी बात कर रही है अमरोहा से। बताइए कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आप कैसा?
0: हाँ जी, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आप बताइए नेहा, क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं मैम, घर में ही मम्मी का हाथ बटाती हूँ।
0: अच्छा, घर पर ही रहते हो? ओके, बड़ों की हेल्प करते हो काम में? हाँ
1: जी मैम।
0: चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है।
1: बोल रही है मैम, बहुत खुशी
0: हो रही है नेहा जी आपको?
1: जी मैम।
0: ओके, ये खुशी हमेशा आपके चेहरे पर ऐसे ही बनी रहे। आप बताइएगा आज कौन सा गाना आप सुनना चाहते हो?
1: कौन के बोले हैं ये, तूने क्या किया?
0: हमने तो कुछ भी नहीं किया, जो भी किया आपने किया। देखिए आपने हमें कॉल किया और बातचीत हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है नेहा।
1: आप
0: सुनिए
1: मैम, कुछ लाइनें बोलने चाहती।
0: हाँ हाँ बिल्कुल इरशाद।
1: आँखों में रहने वालों को याद नहीं करते। आँखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों से बात नहीं करते। हमारी तो रूह में बस गई खुशी में, हम आप कभी कम आपसे मिलने की फरियाद नहीं करते।
0: ओए होए होए, क्या बात है भैया, लड़की दिल जीत लिया आपने तो हमारा। बहुत ही प्यारी सी लाइनें हैं आपकी और आप मैसेज हमें कहते हैं एवरी मॉर्निंग, बहुत ही अच्छा लगते हैं नेहा। आप प्रॉपर अमरोहा में ही रहते हो?
1: नहीं मैम, अमरोहा के पास ही नहीं
0: था। अच्छा अच्छा, ओके, थोड़ा डिस्टेंस है। ओके, तो कैसा लगता है आपको FM मुरादाबाद, आप सुनते हो?
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, तो पूरे दिन घर पे रहते हो और रेडियो सुनते रहते हो? हाँ
1: जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, सुनवाएंगे प्यारा से गाना नेहा। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो चलिए नेहा जी से तो फाइनली बात हो गई है और इनकी पसंद का अब गाना भी हम प्ले करने वाले हैं। बस अब आपकी बारी है, आप मुझे कॉल लगाइए। मोबाइल नंबर खुशी आपको बताती है 9837896896। ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, खूबसूरत गाने गुनगुनाते रहिए।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
2: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
1: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: कॉल 9045912348।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
7: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
8: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
7: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का आरजी खुशी स्वागत करती है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और वक्त हुआ है 4:26। बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, जानेंगे उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी।
1: हेलो, सॉन्ग सुनाए दीदी एक हमें।
0: सॉन्ग तो सुनवाएंगे लेकिन अपना नाम तो बताइए।
1: हमारा नाम डिंपल शर्मा।
0: डिंपल शर्मा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद से दीदी।
0: मुरादाबाद से जी, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हो?
1: हमको दीदी जंग जंग फिल्म का सुनना है, जंग फिल्म का।
0: हाँ बताइए कौन सा गाना सुनना है?
1: वो वाला गाना गाके बताए थोड़ा सा।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, गुनगुनाइए।
1: जब से तुमको देखा है मेरे दिल की धड़कनें जाती है। दीदी वो कितना याद है।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा है, आपने गुनगुनाया। आपको गाने का शौक है ना?
1: दीदी
0: अच्छा, तो पूरे दिन गुनगुनाते रहते हो घर में?
1: नहीं दीदी, मैं जॉब करती हूँ यहाँ पे पार्किंग में।
0: अच्छा, अरे वाह मैम, कहाँ पर?
1: अरोमा होटल में।
0: ओके मैम, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आज आपकी छुट्टी है क्या?
1: छुट्टी नहीं, हम तो वहीं रहते हैं।
0: अच्छा, अरे वाह, वहीं पर रेडियो सुन रहे हो आप?
1: जी, जो परी आपसे बात कर रहे हैं, जो परी बैठे हैं कुर्सी पर।
0: अच्छा बहुत अच्छी बात है, मोबाइल में आप सुन रहे हो ना हमें?
1: जी, आप तो मोबाइल में देख रहे हैं दीदी।
0: अच्छा, देख नहीं पा रहे होंगे लेकिन हाँ सुन जरूर पा रहे होंगे आप मुझे।
1: जी, बारिश आ रही है यहाँ पर तो, हमारे तो मुरादाबाद में बारिश है।
0: अच्छा, बारिश कब से हो रही है?
1: बारिश तो सुबह से ही हो रही है, बढ़िया मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है दीदी।
0: अच्छा तो चलिए आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गाना आपके पसंद का।
1: दीदी मुझे आपकी आवाज भी अच्छी लगती है।
0: थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वेलकम दीदी। तो
0: ओके, अपना ध्यान रखिए अच्छे से। और सुनवाते हैं मैम की पसंद का ये प्यारा सा गाना। दोस्तों आप मुझे कॉल कीजिएगा, मेरा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये हमारे स्टूडियो का मोबाइल नंबर है, आपको इस पे कॉल लगाना है और सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और श्रोताओं, जिस तरह एक बारिश चार महीने की गर्मी को कम कर सकती है, उसी तरह तुम्हारी एक अच्छी कोशिश जिंदगी भर को सरल कर सकती है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ श्रोताओं, कि किसी जरूरतमंद की जरूरत, जो इंसान आपको लगता है कि उसको मदद की नीड है, तो आप ज़रूर किसी की मदद करें, किसी की हेल्प करें, क्योंकि बिलीव इन कर्मा, जो हम कर्म करते हैं वही हमें रिटर्न में मिलता है। तो अच्छा कर्म कीजिए किसी के साथ, गलत मैं कहती हूँ कि किसी के साथ अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हो, तो किसी के बारे में, किसी के प्रति गलत मत सोचिए, ना ही किसी के लिए गलत करिए, क्योंकि जो हम देते हैं रिटर्न में वही हमको मिलता है। तो अच्छा करो, दुनिया बहुत खूबसूरत है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं ना, जब एक इंसान का नज़रिया अच्छा होता है ना, तो उसे पूरी दुनिया खूबसूरत लगती है। तो अपना नज़रिया बदलिए, पूरी दुनिया बहुत प्यारी है। और कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर वक्त भी मैं आपको बता देती हूँ श्रोताओं, समय हुआ है 4:36। हमारे नेक्स्ट कॉलर भी इंतजार कर रहे हैं कि अब हम ऑनियर आने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी भी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको भी आदाब, नाम बताइएगा अपना। जी बताइए सर, कैसे हैं आप? जी हमारी दुआएं तो ऑलवेज सभी के लिए हैं, और हम प्रार्थना भी करते हैं कि सभी हमेशा खुश रहें। जी आप बताइएगा, आपकी फैमिली में सब ठीक है ना?
1: हाँ मैम, फैमिली में सब ठीक है। वाइफ हमारी उस दिन आपसे बात करके खुश हुई और वो शर्मा रही थी।
0: हाँ जी जी जी, फर्स्ट टाइम उन्होंने कॉल किया, हमें भी बहुत अच्छा लगा मैम से बातचीत करके। तो आज हाँ थोड़ा सा होता है फर्स्ट टाइम में, सर नर्वस हो जाते हैं कभी ऐसे बात नहीं की, फर्स्ट टाइम बात करते हैं, तो कॉमन सी बात है, सबके साथ होता है।
1: वो मुझसे पूछ रही है क्या बात करनी है, मैंने कहा जैसे करती हो अपने दोस्त से वैसे बात करो।
0: हाँ बिल्कुल, हम भी उनकी दोस्ती है। और आज आप बताइए सर, मैम के लिए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हो?
1: आज मौसम के ऊपर मैं सॉन्ग सुनना चाहता हूँ।
0: हाँ बताइए,
1: लता मंगेशकर जी की आवाज में।
0: जी जी बताइए।
1: मौसम है आपसे गाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना।
0: ओके, बहुत प्यारा आपने गाना सुना है।
1: जी मैम, ये ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग है ये।
0: आपकी चॉइस बहुत अच्छी होती है, और आप कभी भी जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं तो हमेशा पुराने ही गाने सुनते हैं।
1: शुक्रिया मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए सर, सुनवाते हैं ये प्यारा सा गाना आपको।
1: ये परसों से चले आ रहा है।
0: हाँ जी, और जितनी बार इनको सुनते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। जी तो मोस्ट वेलकम सर, आपकी पसंद का प्यारा गाना हम प्ले करते हैं, आप एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप भी मुझे फटाफट से कॉल करो बिना किसी देरी के, कोई बहाना नहीं चलने वाला है। हाँ नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 98 3 98 8 96। और फिलहाल ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन, जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: गुड इवनिंग माय ऑल लवली लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। बाहर हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं, हवाओं में ठंडक घुल गई है और मौसम जैसे दिल को सुकून देने निकला हो। जो श्रोता इस वक्त घर पर हैं, उनके लिए बस एक ही सलाह है, एक कप गर्मा गर्म चाय, अपनी पसंद का कोई गाना और अपनों के साथ कुछ प्यारी सी बातें। यकीन मानिए मौसम और भी खूबसूरत हो जाएगा। और जो सफर में है या फिर बाहर है, उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बारिश का मजा जरूर लीजिए, लेकिन अपनी सेफ्टी का भरपूर ध्यान रखिए। जी हाँ, अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए। अगर सड़क फिसलन भरी हो तो आराम से ड्राइविंग कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। मौसम की हर फुहार आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून लेकर आए, यही दुआ हम करते हैं। बाकी अपने कार्यक्रम में अगले कॉलर से भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी, आपको भी आदाब, अपना नाम बताइएगा सर।
1: मैं महराज अंसारी बोल रहा हूँ, करोला सुल्तान मस्जिद मुरादाबाद से।
0: जी बताइए सर, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, आप बताइए, आप
0: लोग
1: कैसे हैं?
0: हाँ जी, सभी प्रेजेंटर्स बहुत ही अच्छे हैं और इस समय बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं।
1: बारिश का मौसम का मजा ले रहा हूँ और छप्पर हूँ, मोबाइल भी है मेरे पास साथ में।
0: अच्छा, मोबाइल को मत भिगाइएगा। अच्छा अच्छा, ओके।
1: आगे पेड़ रहे झमलों में, उनका आनंद उठा रहा हूँ और अभी बाहर से बारिश पड़ रही है।
0: अरे वाह, क्या बात है,
1: ठंडी हवाएं चल रही हैं,
0: बहुत खूबसूरत नजारा है आपकी साइड। तो बताइएगा, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचा आपने सर। बताइएगा कौन सा गाना आप सुनेंगी?
1: सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया।
0: अच्छा, ये गाना आप किन के साथ सुनना चाहते हैं सर?
1: हमारे साथ में डॉक्टर सैयद तारिक अली एस दवाने से, निजाद हुसैन अंसारी हैं
0: जी,
1: आजी साहब रामी समाज रामपुर से, डीवाई से बीपुर से मकसूद भाई हैं।
0: हाँ जी,
1: जामा मस्जिद अफानपुर से आरिफ खान
0: है,
1: सफिया अहमद अंसारी है और रहीदुल्ला अंसारी, ये सब लोग सुनना चाहेंगे।
0: ठीक है सर, आपकी आपकी सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं प्यारा गीत आपको, आपने कॉल किया बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी निगाहें से और हम लौट कर आते हैं। तब तक आप भी प्रयास कीजिए कि आपका कॉल भी जल्दी से लग जाए। हम तो प्रार्थना करते हैं कि सभी लिसनर्स का कॉल लग जाए, बट आगे आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है और आप कितनी स्पीड में नंबर ट्राई कर रहे हैं, कितनी बार लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।

0: बिल्कुल दोस्तों, बाहर बारिश हो रही है, बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो गया है और इस मौसम में ना लाइक एक ही मन करता है कि गर्मा गर्म बस कोई चाय बनाकर लेकर आ जाए और अच्छा लगता है जब अपनों के साथ इवनिंग की चाय पीते हैं और मौसम भी सुहाना हो। फिलहाल अभी हम बात करते हैं अपनी कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश। हाँ जी, कैसी हैं सोना जी आप?
1: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ।
0: ओके, मैं भी ठीक हूँ मैम। आप बताइएगा क्या कर रही हैं इस वक्त आप?
1: मैम मैं तो फिलहाल तो बैठी थी। अच्छा, सुन रही हूँ
0: जी। बताइएगा सोना मैम, आज क्या रिक्वेस्ट है आपकी, कौन सा ट्रैक आप सुनना चाहते हो?
1: सावन की बरसातें ले आया।
0: ओहो, बारिश तो आ गई है ना
1: जी?
0: हाँ, तो बारिश का लुत्फ उठाइए। आज शाम में क्या बनाने वाली हैं आप बताइए?
1: शाम को?
0: हाँ, इवनिंग में
1: पूड़ियाँ बनाएंगे हम, छोले पूरी।
0: अच्छा, ओके, चलिए अच्छी बात है। इस बारिश का लुत्फ उठाइए, छोले पूरी खाइए, ठीक है? ओके, थैंक यू कॉल करने के लिए। मोस्ट वेलकम मैम। तो चलिए विवन, सुनते हैं सोना जी की पसंद पर ये प्यारा गाना और अभी फिलहाल मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। मैं मिलूंगी आपको सुबह 10 से 12, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और इस मौसम में विशेष ध्यान रखना है विवन, ज्यादा भीगने नहीं। अगर आप भीग भी जाएं तो घर आकर यू नो फ्रेश वाटर से नहाना और बालों को भी वॉश करना अच्छे से, क्योंकि क्या होता है ना, अगर बारिश के पानी में

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रमाणन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीनों देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। नागर विमानन मंत्री

राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। इस बीच श्री नायडू ने बताया कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। 450 मीटर लंबे इस अंडरपास के ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री VD सतीशन से बातचीत की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र, गुजरात और केरलम के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े हैं। इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, 5 करोड़ 24 लाख महिलाएं और 17 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ये अभियान स्वस्थ और अनुशासित युवाओं के निर्माण पर केंद्रित महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माण पहल है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म को और मानव तस्करी मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने श्रीगंगानगर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हाय, क्या बात है जी। बारिश होले होले शुरू हो गई है मुरादाबाद में श्रोताओं, और आप सभी से यही कहना चाहेंगे। देखिए, आप सोच रहे थे ना कि आज की सुबह हल्की सी बारिश हुई थी, और हल्की सी बारिश होने के बाद बस हर किसी के मन में यही ख्याल आ गया कि अब बारिश तो नहीं आएगी, चलिए बिना छाता और बिना रेन कोट के ही चलते हैं, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था आज का, और बिना दुपट्टे के चल लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में किसको क्या पता था कि भैया फिर से बारिश आ जाएगी, और देखिए अभी बारिश आ गई, और हर कोई बस यही सोच रहा है कि यार बारिश में भीग तो लेते हैं। ठीक है, बहुतों की एक ख्वाहिश होती है कि चलो हम बारिश में भीग जाते हैं, लेकिन बाल नहीं भीगने चाहिए, जैसे कि मैं हूं। मैं भी अभी बारिश में से ही आई हूं, और मैं बस मुझे मेरे बाल गीले नहीं होने चाहिए। मेरे को बारिश में अगर बाल गीले हो गए तो मुझे को बड़ा मतलब अजीब सा लगता है। तो बहुत ऐसे होंगे जिनको मतलब पसंद नहीं है बारिश में नहाना, ये नहीं कि मेरे को पसंद नहीं, बस बाल गीले नहीं होना चाहिए। तो बहुत से आज बिना छाता रेनकोट के चले गए हैं। भैया वो थोड़ा सा बारिश का मजा लीजिए और यूं ही अपने घर की तरफ रवाना हो जाइए। बाइक स्कूटी से हैं ये बेचारे, तो देखिए मतलब भीग ही जाते हैं, क्या ही कह सकते हैं। जो गाड़ी वाले हैं वो मजे लेते हैं। भैया रेडियो सुनते हुए वॉल्यूम बढ़ाइए और गाने सुनते रहिए और अपने घर पहुंच जाइए। फाइनली मैं आपको बता दूं कि मैं आरजे रीना हूं। आप इस शो में कनेक्ट हो गई हूँ, इवनिंग मस्ती शो में। बारिश की तरह मैं भी आ गई स्टूडियो में भीगते भीगते। मैंने सोचा देखिए अगर मैं भीग जाऊंगी चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप सबसे बातें करना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर समय की बात करूं तो 5:08 हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में, यानी कि 2 घंटे आप सभी के साथ ढेर सारे बातें करने वाले श्रोताओं। कहीं पर तो इतनी तेज बारिश है कि भैया जो बाढ़ आ चुके हैं, बताइए मंदिर भी डूब रहे हैं, और कहाँ के मंदिर डूब रहे हैं वो मैं बताऊंगी आपको, और आखिरकार देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो भी बताने वाली हूँ। फिलहाल उन सब से यही कहना चाहूंगी कि जो ट्रैफिक में है, ऑफिस छुट्टियां हो गई है, भैया कृपया करके अपनी जो गाड़ी है वो होले होले चलाइए। अपने आस पास वालों का भी देखना बहुत जरूरी है, जो ई रिक्शा से है, बाइक से है, स्कूटी से है, आप आराम से चलाएंगे तो उनको छींटे नहीं लगेंगी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम बारिश में इतने मजे मगन हो जाते हैं ना कि ऐसे चल देते हैं, भैया कोई ये भीगे तो भीगे हमें क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी में है तो दूसरों को भीगो दे, गलत बात है नहीं जी। हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्या करना है आपने, वॉल्यूम बढ़ाना है क्या? अरे रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाइए, क्योंकि गाना भी बहुत शानदार आ रहा है आपके पास। चलिए जी सुनते रहिए गाना और लौट के आते हैं आप सभी के बीच।

0: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
1: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
0: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
0: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
1: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
0: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
1: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
0: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
1: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
0: EKCC, साख से समृद्धि।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
3: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
2: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: कॉल 9045912348।
4: कतल करे लख कतल जो मूव करे करे लख कतल।
5: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आज रीना के 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं श्रोताओं, तो 5:19 हो चुके हैं और हल्की हल्की बारिश आए या तेज बारिश आए, बारिश अक्सर हमें क्या कहती है आप सोच रहे होंगे, है ना, यानी कि बारिश की बूंदे किसी के लिए सुकून होती है तो किसी के लिए बचपन की यादें। कोई गर्मा गर्म चाय के साथ बारिश का मजा लेता है तो कोई भीग कर हर पल को यादगार बना देता है। वैसे क्या आपको बारिश पसंद है या फिर आप खुद बारिश को पसंद करते हैं? क्योंकि जब हम बारिश से प्यार करते हैं ना, तो हर बूंद हमें मुस्कुराने की एक नई वजह देती है। तो बताइए श्रोताओं, बारिश की पहली फुहार आपके लिए क्या लेकर आती है? खुशियां, यादें या किसी एक खास इंसान की याद? तो आप मुझे देखिए मैसेज करके बता सकते हैं कि जैसे बारिश आती है ना, तो आपको बारिश आते ही सबसे पहले किसकी याद आती है? चाय पकौड़ों की याद आती है या फिर उस शख्स की याद आती है जिसके साथ कहते हैं ना तुम और मैं और बारिश, है ना? या फिर आपको उसकी याद आती है, या बारिश आते मम्मी बोलती है अरे बेटा छत पर जाओ, जरा कपड़े सूख रहे उसको उठा के ले आओ, और आप ऊपर से कपड़े नहीं ला रहे हो और बारिश में भीगने लग जाते हो, फिर मम्मी के ताने जो भर भर के हमें सुनने को मिलते हैं ना गाइस, क्या ही कह सकते हो। ऊपर से ऑफिस से आते हैं तो कभी कभी इतने ज्यादा गीले हो जाते हैं कि हमारे बैग में जो फाइल रखे होते हैं वो भी गीली हो जाती है। इनफैक्ट मैं स्कूल की बात करूं, कॉलेज की बात करूं, तो उस टाइम हम भीगते भीगते आते थे और अगले दिन अपनी कॉपी को देखते थे ना, सिट यार दोबारा हमें बनाना पड़ेगा, है ना, फिर से दोबारा रिटर्न करना पड़ेगा, ये हमारे दिमाग में बहुत। और जब बारिश आती है ना भाई, बारिश का अलग ही मजा होता है। तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब बारिश आती है तो सबसे पहले आपको किसकी याद आती है? आप मैसेज कर देखिए, मैसेज करके बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मैसेज नहीं करेंगे तो देखिए कल बारिश नहीं आएगी। सही बात है। हमें मैसेज करना है, नंबर है 9823789896, कि बारिश आते ही सबसे पहले आपको किसकी याद आ जाती है। चलिए एक और बरसात वाला गाना हम आप सभी को सुनवाते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही फैंटास्टिक है, और अलका याग्निक जी की आवाज में है, जिनकी मधुर आवाज सुनते ही बरसात भी यही कहता है कि चलो यार हम और बरस जाते हैं, जमकर बरस जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जमकर बरसे तो मैसेज जरूर भेजिए। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ। और समय की बात करूं तो 5:33 हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में। कहते हैं ना श्रोताओं, जिंदगी भी एक बगीचे की तरह होती है, जहां हर फल सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक कहानी भी लेकर आता है। कुछ फल मौसम की पहचान बनाते हैं तो कुछ अपनी सेहत से जुड़ी खूबियों की वजह से दुनिया भर में खास जगह बना लेते हैं। ये बातें आखिरकार क्यों कहा मैंने आप सभी को, क्योंकि आज है नेशनल ब्लूबेरी डे, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाल। अब ये बड़ा धमाल कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। यह दिन ब्लूबेरी जैसे छोटे लेकिन बेहद पौष्टिक फल के महत्व को, यानी कि जो इनकी इम्पोर्टेंस है उसका जागरूकता के लिए ये डे मनाया जाता है। यानी कि ब्लूबेरी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन के और फाइबर पाए जाते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, दिल को स्वस्थ रखने और दिमाग की कार्य क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह दिन लोगों को, यानी कि ब्लूबेरी से बनी समूदी, पैनकेक, जैम या फिर मफिन और कई स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। तो भले ही ये अगर आपको कहीं मार्केट में छोटे फल दिखे ना, तो भले ही छोटे हैं लेकिन उनके गुण बहुत ज्यादा है, यानी कि बड़ा छोटा पैकेट बड़ा धमाल वाला है। तो आज यानी कि ब्लूबेरी का डे है, यानी कि आकार छोटा हो सकता है लेकिन इसके गुण छोटे नहीं होते। श्रोताओं, तो स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। क्योंकि देखिए, हमारे साथ साथ आपका प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और आज मैंने आप सभी से पूछा भी है कि पहली बारिश आते ही, बारिश की बूंदे आपके चेहरे के ऊपर पड़ते ही, आंगन में पड़ते ही, गाड़ी के ऊपर पड़ते ही, आपको किसकी याद आती है। तो मेरे पास मैसेज आए हैं, शामिल करते हैं, क्या कहना चाह रही है ये। हेलो रीना मैम, गुड वाला इवनिंग है, कैसी है आप इवनिंग मस्ती शो में? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। क्षमा छम वेलकम है मैम आपका, क्या बात है जी। ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है कि चाय पी लीजिए मैम। देखिए मैम, स्टूडियो में भिजवा दीजिए अदरक इलायची वाला चाय, तो हम पी लेंगे, ठीक है जी। और इनका कहना है कि मैम कितनी भीग गई हो आप तो ऊपर से आराम से ऑफिस आती हो और पहुंच जाती हो। देखिए मैडम, जरूरी नहीं कि मैं ऊपर रहती हूँ तो मैं भीगती नहीं हूँ, क्योंकि हमारा बाहर का काम कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि भीगने की बात तो छोड़िए, कभी कभी थक भी जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम के चक्कर में, कोई भी इंसान हो, काम के चक्कर में खाना स्किप हो जाता है। तो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा काम होता है, काम है तो फिर और काम तो आराम से कर ही लेंगे हम, है ना। और इनका कहना है कि मैम बारिश बहुत तेज हो रही है, क्या बात है जी, एंजॉय करिए, नाचिए, बारिश में नहाइए, आनंद लीजिए, क्योंकि बारिश की एक बूंद यानी कि नीले कलर का वो बूंद भगवान का आशीर्वाद होता है उसमें। जैसे गंगा जल का पानी शीतल होता है ना, वैसे ये पानी शीतल होता है। तो इस पानी में भीगे, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। और इनका कहना है कि बारिश आते ही मुझे बचपन की यादें आने लग जाती है। वो बचपन की यादें इसलिए आती है ना कि गली मोहल्ले में भाग कर जाते थे, नहाते थे, तो इसीलिए बचपन की यादें आती है, नाव बनाकर घूमते थे, है ना। बहुत सी चीजें हैं जो बचपन की हमें याद दिलाती है, लेकिन काश वो बचपन फिर से एंजॉय करने का मौका मिल जाए, है ना, तो कितना अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। देख, लेकिन एक काम अभी भी आप कर सकते हैं, अपने आप को बच्चा बना कर रखिए। क्यों इतना सिंसियर बनाना है अपने आप को, है ना, और क्यों टेंशन लेना है, जिंदगी है, एंजॉय करते रहिए। और एक और प्यारा सा गाना, उसके बाद आप सभी के जो मैसेज आ रहे हैं वो भी शामिल करेंगे और भी ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल ये गाना सुनते हैं, लौट कर आते हैं। जिस समय की बात करूं इवनिंग मस्ती शो में, तो 5:37 हो चुके हैं।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, क्योंकि देखिए गुनगुनाना बहुत जरूरी है। और समय की बात करूं इवनिंग मस्ती शो में, तो समय हो चुका है 5:00 यानी कि 47 मिनट श्रोताओं, और समय कैसे निकल जाता है बिल्कुल भी नहीं पता चलता है हमें, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं पर जमीनें बंजर है और कहीं कहीं पर इतना ज्यादा बाढ़ आ चुका है कि लोग परेशान हो चुके हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं मुंबई, पुणे और सूरत की, तो सूरत में बारिश हुई है, यानी कि 36 घंटे में 18 इंच बारिश में आधा सूरत डूब चुका है। अब सोचिए, कहीं कहीं पर फसलें भी डूब चुकी हैं और कहीं कहीं पर अभी फसलें लगाई जा रही है। लेकिन जहां पर मतलब अभी इस टाइम के लिए किसान भाइयों के लिए बारिश बहुत जरूरी है, लेकिन 36 घंटे, ऐसा भी ना हो कि शहरी डूब जाए। लेकिन जब ये बारिश आती है ना भैया, तो ये अपना रुद्र अवतार लेकर आती है। कब कहां पे इनका रुद्र अवतार दिखाना होता है कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल इसमें किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे, जो बहुत जहां बारिश नहीं हो रही है, ट्यूबवेल से धान की रुपाई की जा रही है, बुआई की जा रही है, कहीं कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा है जहां पर ट्यूबवेल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये चीजें बड़े हैटिक हो जाता है कि कभी कभी हम खेत में जो ट्यूबवेल से धान की बुआई करते हैं और उसके बाद जब बारिश इतनी ज्यादा आ जाती है कि फसलें खराब हो जाती है, तो बारिश हमारे लिए अच्छा भी है, थोड़ा सा नुकसान भी है। जब फसलें खराब हो जाती है तो उन किसान भाइयों की मेहनत, मतलब सोचिए कितना मेहनत करते हैं वो। तो कहीं कहीं पे भैया बहुत बारिश है, कहीं कहीं पे बहुत ही नाममात्र बारिश है, बस इसमें ख्याल रखना है अपना। और इस टाइम देखिए बरसात शुरू हो चुकी है, तो खासकर घर में ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम जैसे बरसात शुरू होती है मच्छरे बहुत ज्यादा पनपने शुरू हो जाते हैं, तो इसमें आपने खास ध्यान रखना है। अपने घर में जो कूलर है उसका पानी आपने चेंज करते रहना है, बालकनी में जो आपने गमले लगा रखे हैं उनकी साफ सफाई करते रहना है और उनमें भी साफ पानी डालते रहना है, और देखना है कि आसपास कहीं कूड़ा इकट्ठा नहीं करना है आपने, क्योंकि जब भी देखेंगे आप कूड़ा इकट्ठा हो जाता है या छत पर पानी इकट्ठे हो जाते हैं तो मच्छर बहुत ज्यादा पनपने लग जाते हैं, जब वही मच्छर काटते हैं तो बीमारी का घर बन जाता है। तो इस चीज का बरसात में हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, आप जितना ध्यान रखेंगे उतना ही स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। और यूं ही आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहेंगे और सुनते रहेंगे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। फिलहाल एक और मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, ये मैसेज आता है हमारे पास। हेलो, गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं। और इनका कहना है कि भैया बारिश आपने छमछम करा रखी है, क्या बात है जी। सर आप बहुत कहते थे ना कि देखिए बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो हमने सोचा कि सर जब इतना कहते हैं तो बारिश करवा देते हैं। तो आप इंजॉय करिए बारिश में। और ये विक्की सागर जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, और जो सब्जी बेच रहे हैं ठेले पर है, भैया अपना भी ध्यान रखिए, सब्जी भी बेच लीजिएगा लेकिन थोड़ा सा पहले बारिश से बच जाइए। चलिए फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के भी श्रोताओं, कहीं नहीं जाना है आपने, आर्जुरीना के साथ कनेक्ट रहना है 89.6। और जरूरी नहीं है कि आप घर पर ही, मतलब जो ट्रैफिक में है तभी आप रेडियो सुन सकते, बल्कि घर बैठे भी आप रेडियो सुन सकते हैं। हमारा रेडियो कभी ये नहीं कहता भैया कि आप सिर्फ ड्राइविंग करते टाइम ही सुन सकते हो, बल्कि आप ऐप पर भी सुन सकते हो। प्ले स्टोर पर जाना है, एफएम मुरादाबाद 89.6 आपने डालना है, वहां पर आपको रेड कलर का लोगो दिखेगा, उसे आप डाउनलोड करिए और आप रेडियो ऑल इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आप आराम से सुन सकते हैं। चलिए जी पहले गाना सुनते हैं, उसके बाद
1: सुबह कहाँ जा रहे हो?
2: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
1: बहू को अभी 2 दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
2: 2 दिन 2 साल जैसा नहीं लग रहा।

0: अहमदाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: ये दर्शन होते हैं, ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
4: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव

0: कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।
2: एक छोटे से शहर की छोटी सी कहानी, यह है हमारा नया जोड़ा। निकले हैं नवरात्रि की रात गरबा खेलने, आइए देखें। अरे ये क्या हो गया?
3: 2 साल बाद हम
4: तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है?

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया। इसमें तो भीगना बहुत अच्छे लगते हो। नेहा कक्कर की आवाज में आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। और दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, 6:09 हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है श्रोताओं जो हमारे सोच के बिल्कुल परे होता है। अब सोच के परे ये है कि देखिए, आप किसी की आस्था के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो। चाहे कोई तिलक लगाता है, तिलक लगा कर स्कूल जाता है, उसको तिलक लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए तिलक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लगाया जाता है। तिलक लगाने से जो आपका माथे के जो बीच में हम तिलक लगाते हैं ना, वो सीधा हार्ट से कनेक्ट होता है और वो हमारे दिल को, हमें खुद को शांति सुकून देता है। लेकिन अब इसी के ऊपर स्कूल में ये कहा जा रहा है कि भैया जो तिलक लगा कर आएंगी, गले में तुलसी माला, उसके ऊपर बच्चे के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन इसके ऊपर इतना ज्यादा विवाद छिड़ चुका है कि भैया कुछ नहीं कर सकते। लेकिन स्कूल में तिलक लगा कर जाना, तुलसी माला पहन के जाना, मुझे लगता है कोई गलत नहीं है ये। अगर आपको लगता है कि कहीं से गलत है तो आप मैसेज करके बता सकते हो। लेकिन ऐसे तिलक लगाकर जाना, तुलसी माला पहन के जाना, बच्चों को पनिशमेंट देना, ये तो मेरे ख्याल से ये गलत है। बाकी श्रोताओं आप भी अपना राय बता सकते हैं। और मैंने आप सभी से आज पूछा है कि पहली बारिश आते ही, यानी कि जब बारिश की फुहारे आपके ऊपर गिरती है आंगन में, तो आपको सबसे पहले किसकी याद आती है। तो यहाँ पर मैसेज आए हमारे पास, यानी कि हेलो मैम, कैसी हैं आप, मिस यू, ओ माय गॉड, मुझे तो प्यार की याद आती है। ओहो क्या बात है जी, इनको बारिश आते ही प्यार की याद आती है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है कि यही है ना, बारिश में तुम और मैं और ये बारिश, बस। लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, ये तो गलत बात है जी। लेकिन इनके नंबर के 4 डिजिट है, 4288। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे पास मैसेज आता है, यानी कि हेलो दी, मुझे इनको फीवर भी है लेकिन फिर भी बारिश में ये एंजॉय कर रही है, क्या बात है। पीहू जी गागन मुरादाबाद से कनेक्ट होती हैं, गागन से ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं। और पीहू जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, देखिए आपको कोल्ड है इस टाइम, यानी कि फीवर है, तो जुखाम खांसी है, तो आपने क्या करना, बस देखिए बारिश हर किसी को पसंद होता है, लेकिन बस थोड़ा सा आपने बच के रहना है इस बारिश में, क्योंकि पता चले कि ये कोल्ड और ज्यादा ना हो जाए फिर घर वाले एक ही बात बोलेंगे, और भीगो और भीगो और तबीयत खराब करो, मतलब हम तुम्हारी मतलब तुम्हें इलाज करवाते रहते हैं और तुम भीगते रहते हो। घर वालों के कॉमन सा भैया ताने होते हैं जो घर वाले अक्सर देते ही देते रहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा बच के रहिए। हर किसी को बारिश पसंद है, आप ठीक हो जाइए, फिर बारिश में एंजॉय करिए, खूब एंजॉय करिए। चलिए, इसके बाद हम लेकर आने वाले आप सभी के लिए कड़क सवाल। और कड़क सवाल क्या रहने वाला जी, बहुत ही शानदार। फिलहाल एक गाना सुनेंगे जो कोई बहुत ही फैंटास्टिक वाला एक गाना है, और आई होप कि आपको ये गाना पसंद है और आप भी डांस करें। चलिए

0: 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: क्या आप सर दर्द कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर्नी और समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट मिर्गी ब्रेन ट्यूमर रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर संपर्क करें 9548539705

0: 18 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: क्या बात है जी, बिल्कुल सही बात है। अगर हर बच्चा पढ़ेगा तभी शिक्षित होगा और हमारा देश भी और ज्यादा शिक्षित बनेगा। श्रोताओं, आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। 6:24 हो चुके हैं और बारिश झमाझम हो रही है ना। और बहुत से भाई चाय पकौड़ियों के साथ चुस्की लगा रही होंगे और बहुत से ये कह रहे होंगे कि आज तो कचौड़ी पूरी बन जाए, क्योंकि बरसात भी हो रही है और मजा आएगा, है ना। सो चलिए, आरजे रीना के साथ अब कनेक्ट है और काम की बातें बहुत जरूरी है। फिलहाल दिलजीत सिंह की एक मूवी जो कि काफी विवादों में आ चुका है, और कहते हैं ना श्रोताओं, जिस मूवी को जितना जो विवाद में आता है, लोग उतने ज्यादा उत्सुक होते, एक्साइटेड होते कि भैया आखिरकार इस मूवी में है क्या जिसके ऊपर इतना विवाद हो रहा है और इस पे रोक लगाया जा रहा है, आखिरकार क्यों है। कहते हैं ना, जिस चीज पर आप जितना रोक लगाओ, लोग उतनी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए कि कुछ तो बात है इस मूवी में। और ये दिलजीत सिंह की मूवी यानी कि सतलुज ओटीटी प्लेटफॉर्म से इसको हटा दिया गया है, जिसके डायरेक्टर है अनुराग कश्यप जी। उनका कहना है कि आप जितना इसे हटाइए, लोग उतना उत्सुक होंगे देखने के लिए और उतना ही देखेंगे। और कहते हैं ना, कभी किसी की मेहनत खराब नहीं जाती है, आज नहीं तो कल जरूर रंग लाती है। तो फिलहाल तो ये मूवी भाई देखना पड़ेगा, आखिरकार ओटीटी पर आई है यानी कि सतलुज, जिसको ओटीटी पे से हटा दिया गया है और विवादों में ये घिर गया है। अब ये देखना है कि ये मूवी फिर से कब ओटीटी पर रिलीज होगी। फिलहाल इन्हीं का एक गाना है दिलजीत सिंह का, जो कि मुझे बहुत पसंद है, आई होप कि आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सो इस गाने को सुनेंगे और इसके बाद में लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए कड़क सवाल। और आप जरूर बता सकते भैया बारिश बहुत फैंटास्टिक वाली हो रही है, कि आखिरकार शाम का प्लानिंग क्या है आपका, क्या है बनाने का इंतजार, आखिरकार आज किचन में खुशबू बड़ी प्यारी आने वाली है। तो आप बता सकते भैया शाम की क्या प्लानिंग है, ओहो किचन की क्या बनने वाला है आज घर पे। चलिए फिलहाल खाना बनाते बनाते पकौड़ियों और चाय का एंजॉय करते करते गाना सुनिए। दिलजीत सिंह का ये गाना है, बहुत ही फैंटास्टिक वाला।

0: इस वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IIM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111
4: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए

खुशखबर वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। इवनिंग मस्ती शो में आरजे रीना के साथ है आप और सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो। समय की बात करूं तो 6:35 हो चुके श्रोताओं और बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं, उनको शामिल करते हैं। और आज का कड़क सवाल क्या रहने वाला है जी, वो भी तो उसके ऊपर भी तो बात करनी है ना जी।

भाई ललिता कश्यप जी का मैसेज आता और इनका कहना है कि मैम हम खाना बनाने जा रहे हैं, सब्जी आलू और साथ ही साथ चावल रोटी साथ में रहेगा। क्या बात है जी, आपका शो भी सुन रहे हैं बिंदास, क्या बात है जी, आ जाओ मैम खाने पर। बिल्कुल जी, इस बरसात में हम सीना चीरते हुए भीगते हुए आ जाएंगे आपके घर। अगले मैसेज की बात करूं तो मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं रणवीर सिंह जेठालाल जी, लिखते हैं ओके जी, और इनका कहना है रीना मैम आपको कैसे पता है, कैसे पता कि हमारे यहाँ पकौड़ी बन रही है, क्या आपके पास कोई जादू की झड़ी है? ओके जी, मेरे पास कोई जादुई उदी तो देखिए मेरे पास है, और मेरे पास दूरबीन भी है जिससे मैं, और जादू की छड़ी भी है मेरे पास जिससे मैं देख सकती हूँ कि कहाँ पर भीड़ लगी है कहाँ पर नहीं, और घर में क्या आज बनाया जा रहा है, क्या आज रसोड़े में क्या पकाया जा रहा है। तो मेरे पास जादू ही जादू है सर, जादू की छड़ी है मेरे पास, दूरबीन है जो मैं देख सकती हूँ बाहर। देखिए गाइस, आपसे यही कहना चाहेंगे, और मौसम बारिश हो रही है तो जो पैदल सवारी है वो थोड़ा सेफ होकर जाइए, और गाड़ी हौले हौले चलाइए क्योंकि अगले इंसान को छींट ना लग जाए, बस इतना कहना चाहेंगे। और लेकर आने वाली आप सभी के लिए क्या एक कड़क सवाल, आखिरकार आज कड़क सवाल में क्या रहेगा वो तो बाद में सुनने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आपसे यही कहना चाहेंगे रेडियो के वॉल्यूम है ना वो बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन भाई रिपीट मैं कर सकती हूँ लेकिन आप सुनना तो आपका काम है ना, और रिप्लाई देना भी आपका काम है ना जी। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, जो कि शादियों में बहुत ये गाना सुना जाता है, इसके बिना शादी अधूरी लगती है। चलिए गाना सुनते हैं लौट।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार। आप क्या है, पैक बलिए, ओए होए, पैक बलिए जी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। और समय की बात करें तो 6:41 हो चुके श्रोताओं, आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और इसी बीच लेकर आ गई आरजे रीना आप सभी के लिए क्या, आए हाय, आपको भी पता है जी, कड़क सवाल आ चुका है आप सभी के लिए, जो कि ये बेहद पसंद होता है हर किसी को। गली मोहल्ले से निकलते अगर खुशबू आ जाए तो रह नहीं पाता है, कोई भी नहीं रह पाता है। किसी को मसालेदार वाला पसंद होता है, किसी को सिर्फ भुना हुआ पसंद होता है, किसी को सिर्फ बॉयल किया हुआ पसंद होता है, और उसके ऊपर नमक, नींबू, काला नमक और नींबू लगाकर, आए हाय, पूछिए मत, मजा ही आ जाता है। तो आखिरकार क्या है उसका क्वेश्चन, अभी बताते हैं जी, सुनिए जरा ध्यान से सुनिएगा, तभी आप राइट आंसर बता पाएंगे श्रोताओं। यानी कि हरी थी, मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, और वो हमें बगीचे में ग्रीन पत्तियों से घिरी हुई मिलती है, और बरसात आते ही भाई खुशबू आ जाती है, बरसात आए ना आए लेकिन वो मिलता जरूर है। उसकी डिमांडे भी बहुत ज्यादा है, मसाले वाली अगर आप खाएंगे तो और भी ज्यादा महंगा मिलता है भैया। आखिरकार कौन है ये जो हरी थी, भरी थी, लाख मोतियों से घिरी हुई थी, मार्केट में जाओ तो महंगी मिलती है, गली में जाओ तो खुशबू आती है, और उसे खाए बिना रह नहीं पाता है कोई। आखिरकार क्या है, जल्दी महसूस करके बताइए। नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करके बताना है। वंस अगेन एक बार और सुनिए क्या है आज का कड़क सवाल। हरी थी, मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, और वो हरे पत्तेदार से घिरी हुई थी। भैया आप अगर उस बगीचे में, उस खेत के बगान में अगर आप घुस गए ना, आप तो खुजली बहुत लगती है, ये याद रखिएगा। आप समझ गए होंगे गाइस कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सोचिए और फटाफट मैसेज करिए। फिलहाल अगला गाना भी भैया बहुत ही शानदार है।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
4: हेलो जी, गुड वाली मुरादाबाद जी, और समय की बात करूं तो है जी, तो देखिए आपके पास बस लास्ट चांस और है सोचने के लिए कि आखिरकार बरसात के महीने में क्या सबसे ज्यादा खाया जाता है। पकौड़ियों के साथ साथ एक और है जो हर किसी के दीवाने होते हैं, और वो खेत में भैया मिलता है, हरी भरी पत्तियों से ढकी हुई होती है और लाख मोतियों से वो जड़ी हुई होती है, सजी हुई होती है। मसाले के साथ खाओ, बॉईल करके खाओ, आता है उसको खाने में बड़ा ही मजा। तो वो आखिरकार कौन है जिसको खाने में बड़ा मजा आता है? फिलहाल मेरे पास कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, उनको भी हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और उनको वेट करवाते हैं क्योंकि आपको भी एक थोड़ा सा सोचने का मौका मिल जाएगा, और उसके बाद इसी छोटे से गाने के बाद उनको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। भैया इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा करवा लेते हैं इंतजार।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। चलिए श्रोताओं, फाइनली वो समय आ ही गया है। ओहो, अब मैं इनका कॉल अटेंड करने वाली थी, इतने इनका कॉल ही कट गया। ओ माय गॉड, चलिए कोई बात नहीं, कॉल नेटवर्क इशू भी हो जाता है, सो कॉल कट जाती है। लेकिन इन्होंने मुझे राइट आंसर पहुंचा दिया था। जैसे मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा था, इनका राइट आंसर मेरे पास पहुंच गया था। सो अब मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। आज का कड़क सवाल यही था कि आखिरकार बरसात होते हमें किसकी खुशबू आती है? गली मोहल्ले से निकलते ही बाजार में जाते तो और भी ज्यादा खुशबू होती है, और हरी भरी भरी होती है, लाख मोतियों से जड़ी हुई होती है, और बहुत ही सुंदर लगती है, और हेल्दी होता है वो खाने के लिए। तो देखिए, जिनको पसंद नहीं है ना, आप मसाले वाली खाइए, बॉयल करके खाइए, नमक, काला नमक और नींबू उसके ऊपर निचोड़ कर, आए हाय मजा आएगा जी, बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए फिलहाल मैसेज देखते हैं किनका क्या आया है हमारे पास।

कनेक्ट होती है रीना दी, मुझे मसालेदार भूटा बहुत पसंद है और आप, मैं बोल रही हूँ पीहू गांगन मुरादाबाद से, और आपको जी मुझे मसालेदार हो या बॉयल हो, मुझे भूटा बेहद पसंद है। चलिए मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, किनका क्या मैसेज आता है भाई भाई क्या। जय श्री राम रीना जी, जय श्री राम जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है जी, आप बताइए कैसे हैं। और ललिता जी का मैसेज आता है जो कि सबसे पहले आया है, इनका कहना है कि भुट्टा है। अगले मैसेज की बात करूं तो मुरादाबाद से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं। ये मुरादाबाद में कोई जेठालाल कुछ जगह है या फिर आपका नाम है सर, ये मुझे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन इनका आंसर आता है बरसात के मौसम में भुट्टा ज्यादा खाया जाता है। जी, ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं। राधिका जी कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है कि राइट आंसर है भुट्टा, अंदर से दानेदार होता है, ऊपर से नमक और नींबू लगाकर खाते हैं बड़ा ही, और इसको बरसात के मौसम में खाया जाता है। क्या बात है जी, ओहो चटकारे ले रही हैं मैडम जी, देखिए तो वही इमोजी भेज रही हैं, क्या बात है। इसलिए लगता है आपको भी ज्यादा ही पसंद है भुट्टा। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हरपाल सिंह चौधरी, हरपाल सिंह जी कनेक्ट होते हैं, गंगा मंदिर के पास से हैं, और इनका कहना है कि हरथला मुरादाबाद से भुट्टा है। सर थैंक यू। अगले मैसेज की बात करूं तो

बबली अंजान जी कनेक्ट होती है, गीता कश्यप, ललिता जी, रीना मैडम आप भी बहुत संभल कर जाना। ओके जी, बारिश पड़ रही है, हम आपके श्रोता है रेगुलर वाले, बिल्कुल जी हमें पता है, और बरसात हो रही है, संभल के जाना। देखिए मुझे भीगना नहीं पड़ेगा, मैं ऊपर ही चली जाती हूँ आराम से, मुझे एक बूंद के छींटे नहीं आने वाली मैम मेरे पास तो। और ये कहती है आपके

कर खाइए, मसालेदार बना के खाइए, बड़ा ही अच्छा लगता है। इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, बाय, टाटा, टेक केयर। और आप सभी ने बहुत ही प्यारा मैसेज किया है, तो आज आप अपने घर में देखिए बरसात हो रही है, तो भुट्टा जरूर खाइए बॉईल करके, ये मसालेदार, क्योंकि बॉडी के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है। और क्या ही कह सकते, भुट्टा तो है ही बड़ा ही शानदार वाला, और ताजा ताजा खेत का मिल जाए तो और भी बड़ा मजेदार होता है जी, है ना। लेकिन जो शहर में रहते हैं, ताजा तो बहुत ही रेयर मिल पाता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, ताजा मिले या 2 दिन के, 2 दिन का वो जो खेत से निकाला तोड़ा जाता है वो मिले, खाना जरूर चाहिए भुट्टा। और इसी के साथ एक मेरा बहुत प्यारा गाना है, जो कि ये गाना तो मैं डेफिनेटली आपको सुनाऊंगी, और सावन के महीने में भैया ये गाना ना सुना तो आपने बरसात के महीने तो क्या ही सुना। चलिए जी, ये गाना मेरी तरफ से आप सभी के लिए, बाय बाय।

0: और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है। दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने

कहा कि नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से गिफ्ट सिटी एक वैश्विक विमान लीजिंग और वित्तीय पोषण केंद्र के रूप में उभर रही है। श्री नायडू ने कहा कि 2026 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाकर

0: 20 वर्ष कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। यह मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन के हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए निजी कंपनी और उसकी संबंध इकाइयों में स्थानांतरित किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 27 मार्च की मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। यह योजना खाड़ी देशों के उन नियमित विद्यार्थियों के लिए थी जिनकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण रद्द हो गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार और CBSE से जवाब मांगा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के उन खास पहचान से जो परंपरा, स्वाद और विकास का अनोखा संगम है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। आज लेकर आई हूं एक ऐसे स्वाद की कहानी जो दशकों से लोगों की जुबान पर राज कर रही है। एक ऐसा स्वाद जिसके बिना मुरादाबाद की पहचान अधूरी मानी जाती है।
0: जी हाँ दोस्तों, जब भी मुरादाबाद का नाम आता है तो सबसे पहले याद आती है पीतल नगरी। दुनिया भर में अपने पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए मशहूर मुरादाबाद आज एक और खास पहचान बना चुका है।
1: बिल्कुल, अब मुरादाबाद सिर्फ पीतल के लिए नहीं बल्कि अपनी मशहूर मूंग दाल के लिए पूरे देश में जाना जाता है।
0: सुबह की हलचल, बाजारों में लोगों की चहल पहल और दुकानों से उठती गर्मा गर्म मूंग दाल की खुशबू, आय हाय हाय,
1: ऐसा लगता है जैसे हर गली कह रही हो मुरादाबाद आए हो तो मूंग दाल चखे बिना मत जाइए।
0: यही कारण है कि आज देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग यहाँ की मूंग दाल का स्वाद लेने जरूर पहुँचते हैं।
1: और अब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से इस पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्थानीय खानपान और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं
1: और इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना, जिसके तहत मुरादाबाद की मूंग दाल को विशेष पहचान दी जा रही है।
0: दोस्तों, आखिर क्या खास है मुरादाबाद की मूंग दाल में?
1: इसका राज छुपा है इसी की पारंपरिक विधि और बेहतरीन मसालों में।
0: सबसे पहले चुनी जाती है उच्च गुणवत्ता वाली धुली हुई मूंग दाल, फिर उसे साफ करके खास तरीके से भिगोया जाता है।
1: इसके बाद धीमी आंच पर दाल को इस तरह पकाया जाता है कि उसका हर दाना मुलायम रहे लेकिन टूटे नहीं।
0: पर शुरू होता है असली जादू।
1: देसी घी या शुद्ध तेल में जीरा, हींग, हरी मिर्च, अदरक और खास मसालों का तड़का लगाया जाता है।
0: जब यह तड़का दाल में मिलता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है।
1: ऊपर से डाला जाता है हरा धनिया, नींबू का रस और कभी कभी हल्की सी देसी घी की धार।
0: बस यही बनाती है मुरादाबाद की मूंग दाल को सबसे अलग।
1: कहते हैं कि जिसने एक बार इसका स्वाद चख लिया वह दोबारा मुरादाबाद आए बिना रह नहीं पाता।
0: खास बात यह है कि यहाँ की मूंग दाल सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी होती है।
1: इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यह स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखती है।
0: मुरादाबाद की कई पुरानी दुकानें पिछले 50 से 70 वर्षों से इसी पारंपरिक स्वाद को बनाए हुए हैं।
1: पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है यह कला, आज भी उसी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रही है।
0: सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की हल्की भूख तक मूंग दाल हर समय लोगों की पहली पसंद बनी रहती है।
1: कई लोग इसे कुरकुरी नमकीन के रूप में पसंद करते हैं, तो कई लोग गर्मा गर्म मसालेदार दाल के रूप में।
0: यही विविधता इसे हर उम्र के लोगों का पसंदीदा व्यंजन बनाती है।
1: दोस्तों, किसी भी पारंपरिक व्यंजन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सही पहचान भी जरूरी होती है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य यही है कि हर जिले के प्रसिद्ध व्यंजन को नई पहचान मिले।
1: इसी के तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी भी दी जा रही है।
1: अब मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि देश और और विदेश के ग्राहकों तक पहुंचेगी।
0: इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, छोटे व्यापारियों की आय बढ़ेगी और महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार होंगे। सोशल मीडिया पर भी अब हैशटैग मुरादाबाद दाल तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
1: लोग इसकी तस्वीरें, वीडियो और स्वाद का अनुभव साझा कर रहे हैं।
0: एक समय था जब मुरादाबाद को सिर्फ पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था,
1: लेकिन आज यह शहर अपने पारंपरिक स्वाद, संस्कृति और स्थानीय व्यंजनों के कारण भी नई पहचान बना रहा है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप मुरादाबाद आए,
1: वहाँ के शानदार पीतल उद्योग को जरूर देखिए,
0: शहर की ऐतिहासिक विरासत को जानिए
1: और सबसे जरूरी,
0: मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल का स्वाद जरूर चखिए,
1: क्योंकि यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं
0: बल्कि मुरादाबाद की मेहनत, परंपरा और मेहमान नवाजी की पहचान है।
1: और जब स्थानीय स्वाद को विकास का साथ मिलता है,
0: तो एक जिले की पहचान पूरे देश की शान बन जाता है।
1: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
0: सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज, और कर रहा हूं आपसे बात। तो दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आपको सतर्क कर रहा है। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे आपके मोबाइल फोन और UPI से जुड़ी सुरक्षा के बारे में, क्योंकि आज आपका मोबाइल सिर्फ फोन नहीं बल्कि आपका बैंक है। तो दोस्तों, आखिर मोबाइल और UPI सुविधा भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम मोबाइल से पैसे भेजते हैं, बिल जमा करते हैं, खरीदारी करते हैं और साथ में बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही आपका पूरा बैंक बैलेंस लीक कर सकती है। इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं साइबर ठग। तो चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बात समझाता हूँ। रमेश, हेलो, उधर से आवाज आती है। मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपके बैंक अकाउंट में संदिग्ध निशान हुई है। क्या मेरा पैसा सुरक्षित है ना? हाँ सर, बस सुरक्षा के लिए आपके फोन पर जो OTP आएगा वह बता दीजिएगा। OTP आया है, मैं बता देता हूँ। अरे, मेरा अकाउंट तो खाली हो गया और पैसे कट गए हैं। और इस तरह रमेश UPI फ्रॉड का शिकार हो जाता है। आखिर UPI और मोबाइल फ्रॉड कैसे होता है? दोस्तों, मोबाइल और UPI फ्रॉड आम तौर पर इन तरीकों से होता है। बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया जाता है, OTP या UPI पिन मांगा जाता है, फर्जी ऐप इंस्टॉल करवाए जाते हैं, स्क्रीन शेयर करवाई जाती है, रिफंड या इनाम का लालच दिया जाता है। याद रखिए, OTP और UPI पिन सिर्फ आपके लिए ही है। खतरे के संकेत, अगर कभी ये बातें हो तो समझ जाइए खतरा है। कोई OTP या आपका पिन पूछे, जल्दी करने का दबाव डाले, कहे अकाउंट बंद हो जाएगा, अनजान ऐप डाउनलोड करवाए, तो असली बैंक कभी ऐसा नहीं करता है। मोबाइल और UPI को सुरक्षित कैसे रखें? दोस्तों, इन आसान नियमों को अपनाइए। OTP, UPI पिन किसी को ना बताएं। मोबाइल में लॉक और बायोमेट्रिक रखें। केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। फोन और एप्स को अपडेट रखें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। खासकर मैं सलाह देना चाहूंगा बुजुर्गों और बच्चों को। श्रोताओं, UPI और मोबाइल फ्रॉड के शिकार ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे, नए स्मार्टफोन यूजर, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए कोई भी कॉल आए तो पहले परिवार से पूछें, OTP को चाबी समझें, किसी को बिल्कुल ना दें, शक हो तो कॉल तुरंत काट दें। अगर गलती से आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो पैसे कट गए हो, OTP शेयर हो गया हो, गलत ऐप इंस्टॉल हो गया हो, तो देर ना करें, कॉल करें 1930। हाँ जी, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मोबाइल और UPI सुरक्षा के लिए 5 सुनहरे नियम। OTP और पिन कभी साझा न करें। बैंक बनकर आने वाली कॉल पर भरोसा न करें। अनजान ऐप और लिंक से बचें। मोबाइल को हमेशा लॉक रखें। डर नहीं, समझदारी से काम लें। श्रोताओं, डिजिटल भुगतान आसान है लेकिन सावधानी के बिना खतरनाक। मोबाइल आपका साथी है, उसे सुरक्षित रखिए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको कर रहा है सतर्क फ्रॉड से, ताकि आप बच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि इस कार्यक्रम में बात हुई कि आपका UPI, हाँ जी, उसकी वजह से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपका ये जो स्मार्टफोन है सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, ये आपका बैंक है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं तो सावधान होकर करें, क्योंकि कभी कभी गलत QR कोड से भी आपका नुकसान हो सकता है और शायद आपका पैसा जा सकता है। हम सभी को पता है पैसा कमाने में जितनी मुश्किलें आती हैं ना, तो अगर वो गलती से कोई आपसे ले ले बिना आपकी परमिशन से, तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को होता है। तो सतर्क रहें, सेफ रहें, ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से। मैं हूँ आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। अभी के लिए लेता हूँ यहाँ से अलविदा, तो स्टे सेफ।
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। यह है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जिसपे हम कुछ ना कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद है, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी बातें करती है, और बहुत ही अल्टीमेट सी वाइब आ रही है मुझे इनके साथ बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्क्ड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था ना मैम, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी उनकी, आपको अल्टीमेटली वो एक फील आएगी बातों में। और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम, आपको स्टेशन आके कैसा लगा? हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
1: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट, मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's great, ma'am. Thank you so much, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? So guys, I hope आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आप हमें भेजते हैं बेसिकली। और आज हमारे पास आप ही के क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
1: जी जी, बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानेंगी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जिसे पुराने जमाने में दाई का
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ चीजें, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के पास पा सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडीज इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है, तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल, तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी, वी हैव गॉन थ्रू दैट फेज, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं। बट ऐसे में ना हमारे घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती हैं, उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभालनी करनी है बट उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
1: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते।
1: आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ। देयर वर टू पीपल, ठीक है, हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है। अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड। तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट ताकि हम इंटरवीन कर लें। तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ, एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं हम जो पैप स्मियर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो, डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे, आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे। तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ, अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकती, और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
0: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, जैसे कि मैम ने कहा। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं आज, विमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच, आजकल के लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप, उन्हें कब कब कराने चाहिए?
1: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर।
0: ठीक है
1: अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20-30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1-2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर। ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21-65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, एक स्पैचुला से आपकी सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है। इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे। करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है, इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रहे हैं। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले। पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है, कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि वो आपके बुरे के लिए,
0: करेक्ट करेक्ट,
1: गवर्नमेंट इज रनिंग कि
0: एब्सोल्युटली
1: अब पोलियो इराडिकेट हो गया हमारे। ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता था, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवेंट तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए। अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3-4 हजार रुपए की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट,
0: फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल,
1: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। अब एक इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डेसिल, ये सब वैक्सीन होती है, डोजिंग का भी है कि 9-15 ईयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0-6 मंथ के इंटरवल पे, और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है 15 साल से ऊपर हैं तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन। ठीक है, और ये लगवानी चाहिए, इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन। आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है, सब अपनी बच्चियों को लगवाएं और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स आप प्लीज इसे लगवाएं। दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट, तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप ईयरली, नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली बाय ईयरली आप मेमोग्राफी करा ले प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती है।
0: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया। यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं जो HPV वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है। पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है, आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
1: I would say कि प्लीज लगवाइए, ठीक है, इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन, कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही, कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए।
0: Absolutely.
1: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा।
0: करेक्ट मैम, बिल्कुल।
1: और पहले जब पैसे देके लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार का कोई स्कैम है। नो, इट इज नॉट अ स्कैम, इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को। प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें।
0: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एवी का वैक्सीन आप जरूर कराएं, ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। मैम थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में। अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेके बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं? पैड्स मत यूज करो, ये मत करो।
1: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है, आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है, ठीक है। अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है, इफ यू सी सनातन धर्म दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल। क्यों क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना। जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, दैट द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच। तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन। अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी।
0: Correct.
1: मंदिर ऊपर हुआ करते थे
0: Right.
1: तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था। तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं। दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा, ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था। इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है, हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना। सो अभी भी अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस, उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। द थिंग इज जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू, आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो, ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माई मदर, ठीक है, मम्मी जब होती है तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स की, ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माई होम आई फॉलो माई रिचुअल्स। तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते, थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी। जब इतना लास्ट पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, तो थिंग्स आर चेंजिंग, व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग व्हाई कांट वी अपडेट ना।
0: करेक्ट। अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं?
1: Exactly.
0: तो उसके विषय में थोड़ा सा आप बताएं।
1: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज, आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज, ठीक है। अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमेनोरिया यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज। तो ये सब बीमारियां हैं। अब पीरियड नहीं आए, एक दो दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है, बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है, विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास तीन पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s के एज में है, 30, 31, 32 एंड 3 साल से एमिनोरिक है, यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा. हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम.
0: ओके वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. सो आई होप जो भी वुमेन्स जो भी लेडीज सुन रहे हैं इस शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे. आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम यहाँ पे कर रही हैं. एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को यू नो एक्सप्लेन कर पा रहे हो, हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज़ से कहीं ना कहीं.

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: बायो माइनिंग कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में अचल संपत्तियों से जुड़े फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के पंजीकरण संबंधी नियमों को सख्त बनाने का निर्णय लिया। दिल्ली के रोहिणी में एक इमारत ढही, राहत और बचाव कार्य जारी। और दिल्ली के भारत मंडपम में प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 14 जुलाई से आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क के बड़े विस्तार की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई ईवी नीति की समीक्षा बैठक में कहा कि अगले 4 वर्षों में दिल्ली में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या मौजूदा लगभग 9,000 से बढ़ाकर 32,000 की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: बैठक में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को वास्तविक अर्थों में ईवी सिटी बनाने के लिए आधुनिक और फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाएगा। उन्होंने सोलर आधारित चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा देने, पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा सभी स्लो चार्जिंग स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से फास्ट चार्जिंग स्टेशनों में बदलने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार्जिंग स्टेशन दिल्ली मेट्रो की पार्किंग, डीडीए बाजारों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी परिसरों, मॉल और प्रमुख क्षेत्रों के आसपास स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने मेट्रो, डीडीए और वाहन निर्माताओं के साथ समन्वय बढ़ाकर ईवी चार्जिंग अवसंरचना का तेजी से विस्तार करने पर भी बल दिया। प्रादेशिक समाचार के लिए आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगी। यह समारोह सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। 12 किलोमीटर से अधिक लंबा 10 स्टेशनों वाला यह कॉरिडोर पश्चिम, मध्य और पुरानी दिल्ली को जोड़ेगा। परियोजना के पूरा होने के बाद सड़कों पर यातायात का दबाव कम होने, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलने और प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था और गाजीपुर, ओखला तथा भलसवा अपशिष्ट निपटान क्षेत्रों पर चल रहे बायो माइनिंग कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। महापौर ने बताया कि ओखला अपशिष्ट निपटान क्षेत्र पर अब तक लगभग 80 लाख मीट्रिक टन लेगसी वेस्ट का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है, जबकि लगभग 15 लाख मीट्रिक टन फ्रेश वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के कार्य का तीव्र गति से जारी है। उन्होंने जानकारी दी कि ओखला और भलसवा अपशिष्ट निपटान क्षेत्रों को इस वर्ष दिसंबर तक तथा गाजीपुर अपशिष्ट निपटान क्षेत्र को अगले वर्ष दिसंबर तक समाप्त करने का लक्ष्य है। श्री वाही ने कहा कि वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आधुनिक तकनीक के माध्यम से दिल्ली को स्वच्छ, हरित और अपशिष्ट मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम तेजी से कार्य कर रहा है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में अचल संपत्तियों के पंजीकरण में स्टैंप ड्यूटी की चोरी रोकने और संपत्ति से जुड़े फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी GPA के पंजीकरण संबंधी नियमों को और सख्त बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सभी सब रजिस्ट्रारों को GPA दस्तावेजों की गहन जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
4: मुख्यमंत्री ने बताया कि माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन और बच्चों जैसे रक्त संबंधों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित जीपीए को पंजीकरण से पहले अनिवार्य रूप से कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के पास जांच के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ऐसे प्रत्येक संदर्भ पर 30 दिनों के भीतर कारण सहित तर्कसंगत लिखित आदेश पारित करेगा। जांच में विशेष रूप से यह देखा जाएगा कि कहीं दस्तावेज में किसी प्रकार के पैसे के लेन देन, संपत्ति का कब्जा सौंपने, जीपीए अपरिवर्तनीय और संपत्ति को बेचने, उपहार देने, ट्रांसफर करने या बंधक रखने का स्थायी अधिकार तो नहीं दिया गया है। पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रत्येक सब रजिस्ट्रार कार्यालय में ऐसे मामलों का अलग रजिस्टर रखा जाएगा और उसकी मासिक रिपोर्ट भेजी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य जीपीए के माध्यम से कम स्टाम्प शुल्क पर संपत्ति की बिक्री, कब्जा, हस्तांतरण या मालिकाना हक का अवैध हस्तांतरण रोकना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में देश का सबसे बड़ा और प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 14 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन द्वारा आयोजित इस आयोजन को भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। यह आयोजन वस्त्र फैशन निरंतरता, तकनीक, नवाचार, निवेश और विश्व बाजार में भारत के संपूर्ण वस्त्र उद्योग की व्यापकता और विविधता को एकीकृत वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। 17 जुलाई तक चलने वाले इस आयोजन में 140 से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद है। भारत टेक्स के तीसरे सत्र में वैश्विक कपड़ा उद्योग से अंतर्राष्ट्रीय खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता और अन्य हितधारक शामिल होंगे। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है।
5: हथकरघा हैकेथॉन का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। विद्यार्थी, स्टार्टअप, शोधकर्ता, डिजाइनर, उद्यमी तथा हथकरघा पेशेवर पंजीकरण करने के साथ अपने विचार www.youthideathon.in/handloom पर साझा कर सकते हैं। चुनी हुई टीमें 1 अगस्त को अपने समाधान ज्यूरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। इसका आयोजन IIT दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन ट्रांसफर में होगा। इस पहल के बारे में वस्त्र मंत्रालय में हथकरघा मामलों के विकास आयुक्त डॉक्टर एम वीना ने बताया कि हथकरघा हैकेथॉन का उद्देश्य देश की युवा रचनात्मकता को हथकरघा क्षेत्र की समृद्ध विरासत के साथ जोड़ना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय राजधानी में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया के सदस्यों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि दिल्ली सदियों से देश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र रही है और आज वैश्विक कूटनीतिक तथा प्रौद्योगिकी संचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी है। दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज IT विभाग की समीक्षा बैठक में डिजिटल क्षमता निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को IT प्रशिक्षण लैब और प्रस्तावित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि विकास भवन 2 का AI आधारित IT प्रशिक्षण प्रयोगशाला उद्घाटन के लिए तैयार है और जल्द ही सरकारी अधिकारियों को डिजिटल प्रशासन तथा AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से स्टार्टअप, नवाचार और बेहतर जनसेवा को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष ओम प्रकाश व्यास ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान बच्चों के अधिकार की सुरक्षा और बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि बच्चों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील और भरोसेमंद वातावरण विकसित करना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वेस्ट वाइज सिटीजन्स नामक नागरिक जागरूकता पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर NDMC अध्यक्ष केशव चंद्रा ने पुनर्चक्रण योग्य कचरे के घर घर संग्रह के लिए रिड्यूस रिसाइकल रीयूज RRR ऑन व्हील्स वाहनों को झंडी दिखाई। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने क्राफ्ट सस्टेन्स ट्रेडिशनल ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक का लोकार्पण किया। यह पुस्तक भारत की शिल्प परंपराओं, पारंपरिक ज्ञान और रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। पुस्तक में 19 शोध लेखों के माध्यम से भारतीय शिल्प परंपराओं के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और समकालीन विकास पर प्रकाश डाला गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संशोधित पारगमन उन्मुख विकास TOP नीति के अंतर्गत भूमि विकास के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह आवेदन DDA के ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम के माध्यम से किए जा सकेंगे। इस नीति के तहत मेट्रो क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली RRTS और रेलवे कॉरिडोर के आसपास 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसमें पहली बार करीब 80 वर्ग किलोमीटर नया क्षेत्र जोड़ा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत के गिरने की खबर सामने आई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि उन्हें इस घटना की सूचना शाम 4:19 पर मिली थी। विभाग ने बताया कि इस दुर्घटना में घायल दो लोगों को स्थानीय निवासियों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं खबर लिखे जाने तक इस दुर्घटना में 4 से 5 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य मौके पर लगातार जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को रोहिणी के बुद्ध विहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 100 ग्राम उच्च स्तर की मादक पदार्थ बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी अन्य 15 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वहीं ऐसे ही एक अन्य मामले में एक महिला आरोपी को 20 ग्राम से अधिक उच्च स्तर के मादक पदार्थ के साथ दिलशाद गार्डन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयन मंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। यह तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
6: आयन मंडल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का अयनित भाग है, जो संचार और उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व में होने वाले दैनिक बदलाव, GPS और भारत की नाविक प्रणालियों जैसे संकेतों को प्रभावित करते हैं। मंत्रालय के अनुसार इस तकनीक से ऊपरी आयन मंडल की संरचना और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा तथा भारतीय क्षेत्र के लिए अधिक सटीक आकलन उपलब्ध होगा। ये तकनीक विशेष रूप से भूचुंबकीय भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण आयन

की वर्षा के साथ साथ बादल छाए रहे। आज का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है। सुबह और दोपहर के समय कई जगहों पर हल्की वर्षा का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई ईवी नीति की समीक्षा बैठक में कहा, ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 32,000 की जाएगी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था और अपशिष्ट निपटान क्षेत्रों पर चल रहे बायो माइनिंग कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में अचल संपत्तियों से जुड़े फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के पंजीकरण संबंधी नियमों को सख्त बनाने का निर्णय लिया। दिल्ली के रोहिणी में एक इमारत ढही, राहत और बचाव कार्य जारी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद।

0: कॉल नाउ 94122111।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आज हमारा एपिसोड बहुत खास है, अयोध्या का स्वाद, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश से जो परंपरा और प्रगति की सुंदर संगम है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। आज लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है आस्था की मिठास, संस्कृति की खुशबू और स्वाद का ऐसा जादू जो सीधे दिल तक पहुँच जाता है।
0: जी हाँ दोस्तों, आज हम चलेंगे उस नगरी में जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि, सरयू की पावन धरती और अब स्वात की नई राजधानी।
1: सुबह का समय, सरयू के घाटों पर उगता सूरज, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और गलियों में उठती ताजी कचौड़ियों, जलेबियों और पेड़ों की खुशबू।
0: वाह, ऐसा लगता है जैसे अयोध्या सिर्फ दर्शन नहीं कराती बल्कि अपने स्वाद से भी आपका स्वागत करती है।
1: और यही कारण है कि आज लाखों श्रद्धालु सिर्फ रामलला की दर्शन ही नहीं बल्कि अयोध्या के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने भी पहुंच रहे हैं।
0: भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बना चुकी है। सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, घाट, हर क्षेत्र में विकास की एक कहानी लिखी जा रही है।
1: लेकिन विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों का नहीं होता, असली विकास तब होता है जब स्थानीय लोगों की कला, संस्कृति और स्वाद को भी नई पहचान मिले। और यही काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या की पारंपरिक खाद्य विरासत को भी नई उड़ान दी जा रही है।
1: और इसी प्रयास का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
2: फिलहाल मैं मौजूद हूँ मौर्य मिष्ठान भंडार में। यहाँ मौजूद होने का मेरा कारण है ODOC में चुने गए हमारे शहर के और इस दुकान के कुल्लड़ वाली दही जलेबी, जिसको हमारे प्रदेश में एक नई पहचान मिली है और इससे हमारे प्रदेश को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। अब जब शहर में लोग आएंगे, जब टूर से लोग आएंगे और जब वो ये कह के आएंगे कि भाई अयोध्या जाना है और हमें कुल्लड़ वाली दही जलेबी खानी है, तो अयोध्या का नाम और अयोध्या का व्यापार दोनों बढ़ेगा। और इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौर्य मिष्ठान भंडार से इसके ओनर।
3: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के बाद अयोध्या वासी तो भाई बोलते जो आमदनी बढ़ी है तो सही चीज है। कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं तो आमदनी जाती बात यहाँ लोगों को बढ़ेगी। रही बात ODOC की, तो अयोध्या में दही जलेबी हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है
4: जी।
3: और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर आते ही रहते हैं अयोध्या में, तो जो है आपके यहाँ अधिकारी लोग जो है आपका दही जलेबी लेके जाते हैं तो कितने भक्ति सब शायद माइंड में रहा होगा। अच्छा लगा हमको भी कि चलिए अयोध्या से इतनी पानी तो गई ऊपर तक।
4: बहुत अच्छी बात है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह अपना धन्यवाद आप प्रकट करेंगे?
3: उनके लिए जितना कहा जाए उसमें कम ही है। अयोध्या क्या था और क्या बना दिए तो भाई अभी देख रहे हैं, उसमें कहना ही नहीं, कोई शब्द नहीं है
4: जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार
3: जी। नमस्ते
0: दोस्तों, अगर अयोध्या के स्वाद की बात हो, खुरचंद पेड़े का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है।
0: कल्पना कीजिए, बड़े से कढ़ा में घंटों तक पकता दूध धीमी आँच, धैर्य और अनुभव।
1: जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता है, कढ़ाई की किनारों पर मलाई की सुनहरी परत जम जाती है। कारीगर इसे बड़ी ही सावधानी से खुरचते हैं और फिर उसी से तैयार होता है खुरचंद।
0: इसके बाद उसमें देसी खांड, इलायची और पारंपरिक तकनीकी का जादू मिलाया जाता है।
1: जब ये पेड़ा तैयार होता है तो उसकी हर परत में दूध की मिठास और मेहनत की कहानी छिपी होती है।
0: कहते हैं कि एक अच्छा खुरचंद पेड़ा मुंह में जाते ही घुल जाता है लेकिन उसका स्वाद देर तक याद रहता है।
1: यानी दर्शन का प्रसाद दिल में बसता है और खुरचंद पेड़ा स्वाद की याद बनकर साथ चलता है।
0: तो दोस्तों, अब बात उस जोड़ी की है जिसके बिना अयोध्या का फूड टूर अधूरा माना जाता है।
1: गर्मा गर्म जलेबी और ठंडी मलाईदार दही।
0: और सबसे खास बात, ये परोसी जाती है मिट्टी के कुल्हड़ में।
1: कुल्हड़ सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। मिट्टी की सौंधी खुशबू दही के स्वाद को और बढ़ा देती है।
0: सुबह सुबह दुकानों के बाहर लगी कतारें, चाशनी में डूबी सुनहरी जलेबी और ताजी दही,
1: ऐसा लगता है जैसे स्वाद और संस्कृति एक साथ थाली में परोस दिए गए गए हैं। जलेबी की तैयारी भी कम दिलचस्प नहीं है। खमीर उछे हुए घोल को गोल गोल आकार देकर घी में तला जाता है, फिर उसे मीठी चाशनी में डुबोया जाता है। और जब वही जलेबी ठंडी दही के साथ मिलती है और स्वाद का ऐसा संतुलन बनता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
0: तो श्रोताओं, यही वजह है कि अयोध्या की दही जलेबी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है और फूड फेस्टिवल में लोगों का दिल जीता है।
1: लेकिन अयोध्या का स्वाद सिर्फ मिठाइयों तक सीमित नहीं है।
0: बिल्कुल, यहाँ की मसालेदार कचौड़ी और कुरकुरी टिकिया भी उतनी ही मशहूर है।
1: सुबह के नाश्ते में कचौड़ी, सब्जी और शाम को चटपटी टिकिया, यहाँ के लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है।
0: हर दुकान की अपनी विशेष रेसिपी है, अपना स्वाद और अपनी पहचान होती है।
1: दोस्तों, इन व्यंजनों की लोकप्रियता के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य है कि हर जिले के विशेष व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले।
1: इसके तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: उन्हें आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, FSSAI मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है।
1: अब अयोध्या की स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचेंगे।
0: यही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करेगा।
1: आज सोशल मीडिया पर हैशटैग अयोध्या फूड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
0: लोग कुल्हड़ वाली दही, जलेबी, खुरचन पेड़ा और अयोध्या के स्ट्रीट फूड की तस्वीरें साझा कर रहे हैं।
1: एक समय था जब लोग अयोध्या को सिर्फ धार्मिक दृष्टि की सोच से जानते थे
0: और आज अयोध्या अपनी संस्कृति, पर्यटन और खान पान के जरिए एक नए भारत की तस्वीर पेश कर रही है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप अयोध्या जाएं,
0: रामलला के दर्शन कीजिए,
1: सरयू आरती का आनंद लीजिए
0: और फिर जरूर चखिए खुरचन, पेड़ा, लड़वाली दही, जलेबी, कचौड़ी और टिकिया,
1: क्योंकि ये सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि अयोध्या की आत्मा का स्वाद है।
0: और जब स्थानीय परंपरा को विकास का साथ मिलता है
1: तो एक शहर की पहचान पूरे देश की शान बन जाती है।
0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश,
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी नई।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप ही की पसंद का ये कार्यक्रम है, जिसमें आप ही के लोकल फॉर वोकल के लोग यहाँ मौजूद होते हैं और वो बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पसंद होती है, हमें पसंद होती है और हमारे इस पूरे शहर वालों को पसंद आती है। इनफैक्ट जहां जहां आप ये प्रोग्राम सुनते हैं, आप सभी को पसंद आती है। और ये जो शेरो शायरी का माहौल है ना, यहाँ पर शेरो शायरी एक अलग अंदाज में होती है, तो प्रोग्राम का जो रुतवा है वो पूरा चेंज हो जाता है। और इस प्रोग्राम को धांसू बनाने के लिए अखिल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपनी ऐसी शायरियां मारेंगी जिसे सुनकर मैं बाहर भागना तो चाहूंगा लेकिन भाग नहीं पाऊंगा क्योंकि स्टूडियो बंद कर दिया। हेलो जी, हाउ आर यू? कैसे आपका ये मैंने तारुफ कराया है, ये आपकी आइडेंटिटी है।
5: धन्यवाद, आपने इतना अच्छा हमारा
4: धासू वाली वेलकम किया, मैंने वार्म वेलकम जिसे कहते हैं।
5: आपके धासू वेलकम पे मुझे कभी कभी ना ऐसा लगता है कि बस
4: कोई शायरी मारूं,
5: आज की जो कुंडी है ये गेट वाली खुलेगी नहीं पहले।
4: अरे अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा मत कीजिएगा, हम आपसे निवेदन करेंगे। खैर ये तो जोक सपाट की बात है। अखिल जी बहुत बहुत स्वागत है, और आप बिल्कुल धाकड़ आरजी बनते जा रहे हैं डेली, दिन प्रतिदिन आप जो है उन्नति प्रगति दोनों ही कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
5: आशीर्वाद है हमारे पास, बाबा आनंद जी का हम पे आशीर्वाद है।
4: अच्छा ये कोई नए देवता है कि मुझे उनकी फोटो जरूर शेयर करिएगा,
5: मैं भी आपको बस अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में।
4: ठीक है, सो दोस्तों ये तो जोक सपाट चलता रहेगा, तो अखिल भैया आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल हो गया है ना,
5: बहुत
4: क्योंकि आज आपने बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी को बुलाया है।
5: और जिन्हें हमने बुलाया है वो इसलिए नहीं बुलाया है कि हमने बुलाया है, उसे
4: लिसनर्स की डिमांड पे दोबारा बुलाया गया है।
5: लिसनर्स की डिमांड पे उन्हें दोबारा बुलाया गया है, उन्होंने ऐसा कमल खिलाया है कि उसे हर कोई अब देखना चाहता है।
4: क्या बात है, और सुनना भी चाहता है। तो हम एक काम करते हैं, इसी बात के साथ उनका स्वागत करते हैं। तो सर आपका हमारे स्टूडियो में इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार,
6: मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आप लोग कैसे हैं?
4: हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं सर, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे।
6: बहुत अच्छा हूँ सर, बाकी आप लोगों की कृपा है, दोस्तों का साथ है
4: जी। तो थोड़ा सा अपने बारे में एक बार बता दीजिए, थोड़ा अपना तारुफ करा दीजिए हमारे मुरादाबादीज को।
6: सर तारुफ है, पिछला वाला है, कुछ चेंज नहीं हुआ अभी तक।
4: लेकिन अभी तो आप आए हो तो ये तो आप चेंज हो, टी शर्ट चेंज है आपका, लुक चेंज है, स्टाइल चेंज है,
6: कपड़े
4: तो
6: चेंज
4: हो सकता है आप भी थोड़ा चेंज करके बोले क्यों अखिल जी?
6: बस सर कपड़े चेंज हुए, बाकी इंट्रोडक्शन है पुराना वाला ही चल रहा है अभी।
4: जो नए लोग सुन रहे हैं,
6: उसमें कोई नई चीज ऐड नहीं हुई।
4: देखिए पिछली बारी जब कमल सर आप आए थे तो वो लिसनर तो थे ही, अब कुछ नए भी जुड़े होंगे तो वो तो जानना चाहेंगे ना आपके बारे में, क्योंकि रेडियो पे तो हर दिन नए लोग सुनते हैं, जो अभी आपको सुन रहे हैं उनको तो अपने बारे में थोड़ा बताइए ना।
6: चलिए सर, मेरा नाम शर्मा है जी, मुरादाबाद का निवासी हूँ, आप छोटे से मोहल्ले चंद्रनगर का
4: जी जी,
6: और पिछले कई सालों से सर्जिकल सेल्स के जुड़ा हुआ हूँ जॉनसन जॉनसन के साथ, और थोड़ा सा शौक है लिखने लिखाने का, तो इस वजह से कुछ भाई लोग याद कर लेते हैं, कभी कभी बुला लेते हैं मुझे, और कुछ लोग पसंद भी कर लेते हैं।
5: आज बढ़िया, आज जो है एक मन में एक सवाल उठा है कमल जी से पूछने के लिए। हाँ। और ये मेरा ही सवाल नहीं है, ये आनंद जी का भी सवाल है, और जितने भी हमारे लिसनर
4: सभी का सवाल है
5: कि कमल जी एक बात बताइए कि आपके लिए जो शायरी है वो सिर्फ एक शब्द है या एक एहसास है?
6: सही कहूँ तो मेरे लिए एक एक एक, एक शांति है, एक सुकून है, क्योंकि जब भी कुछ नया लिखता हूँ, कुछ ऐसी दिमाग में कोई ऐसी चीज क्लिक करती है और उसको आगे बनाता हूँ, तो मन में बहुत सेटिस्फेक्शन सा लगता है कि हाँ कुछ किया है, अलग हटके कुछ
5: तो
6: किया।
5: ये शांति सुकून आपको शादी के बाद से कब कब महसूस हुई? मतलब
6: आप फिर उसी विषय पर पहुंच रहे हो।
4: देखिए ये इनकी शादी हो गई इसलिए आपको स्टार्टिंग में वहीं ले जाना है। खैर ये बात तो हम जरूर आपसे पूछेंगे,
5: ये वर्ड आजकल सुनने में अच्छे लगते हैं।
4: कोई बात नहीं, बिल्कुल हम
6: सुनेंगे अखिल जी, क्योंकि खुद शादी शुदा था वो जानते
4: हैं, इसीलिए कमल सर आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है दोस्तों आप समझ ही होंगे बहुत ही स्पेशल होगा, और कुछ लाइनें अगर आपकी हो जाए हम जो है कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कुछ आगाज अगर आप कर दें अपनी चंद पंक्तियों से तो प्रोग्राम में चार चांद लग जाएंगे, क्यों अखिल जी?
5: बिल्कुल सही बात,
4: मैं निवेदन करूंगा अखिल जी आप अपनी पंक्तियों को जरा दबा के रखें, थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकालेंगे
5: जो मेरे अंदर से निकल रही है।
4: तो थोड़ा कंट्रोल वो नाना पाटेकर करते हैं ना, कंट्रोल। जी जी सर, मुरादाबाद के लिए आप कुछ अभी जिक्र कर रहे थे हमसे।
6: सबसे पहले जिक्र करते हैं जिससे आजकल सब लोग मतलब एक दो चार हो रहे हैं, गर्मी
5: गर्मी
4: बिल्कुल। आज तो खैर मौसम काफी ठंडा है,
6: मौसम काफी ठंडा,
5: दो चार भी हो रहा है, रात में दो दो बजे चार चार बजे भी एक साथ हो रहे हैं,
6: क्योंकि बत्ती नहीं आ रही है। धन्यवाद योगी जी का कि एक दिन भरपूर बत्ती मिली है हमें। तो चार पंक्तियां देखेगा गर्मी पर कि तुम जून सुलगती गर्मी के,
4: वाह,
6: तुम जून सुलगती गर्मी के मैं ठंडक की सिफारिश हूँ,
4: वाह जी वाह,
6: तुम जून सुलगती गर्मी के मैं ठंडक की सिफारिश हूँ, तुम पहरेदार हो सूरज के, मैं मानसून की बारिश हूँ।
4: क्या बात, मानसून की बारिश, मैं मानसून की बारिश हूँ। अच्छा मानसून की बात हुई है तो अखिल भाई क्यों ना एक वो ऐसा ही गाना हो जाए थोड़ा सा, है ना, बारिश वाला, तो प्रोग्राम जो है और भी खूबसूरत हो जाएगा। फिर हम अखिल भाई की शायरी सुनेंगे इसी बात पे। तो कमल सर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे इस प्रोग्राम में, और बाकी जितने भी लिसनर्स हैं वो भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए इस प्रोग्राम को। अभी थोड़ी देर में लौटेंगे एक अमेजिंग ट्रैक के बाद, आप कहीं मत जाइए और रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, खूबसूरत गाना उसके बाद लौट कर आ रहे हैं।

0: खूबसूरत गाने के बाद वेलकम बैक एक बार फिर से आनंद और अखिल के साथ हैं आप इस प्रोग्राम में जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। साथ में हमारे स्पेशल मेहमान कमल जी मौजूद हैं आज की इस खूबसूरत सी वाइब को और भी फुल ऑन हैपनिंग बनाने के लिए। तो अखिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मेरे इस दिल से दिल तक के सेशन पे बहुत ही मतलब कहते हैं चार चांद लग गए हैं जिसमें आनंद जी और साथ के साथ कमल जी भी जुड़ गए हैं।
0: तो क्या बात है,
1: कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ थोड़ा सा मांगो आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने आज तो मिलता ही बहुत ज्यादा है, आप तो शुरू से ज्यादा वाले रहे हैं जिसमें कोई इतनी शोक्ति नहीं है।
1: आज मैंने बस थोड़ा सा मांगा था कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए
0: जी जी,
1: मगर
0: दिल से दिल तक वाला चाहिए था।
1: हाँ दिल से दिल तक में मैं चाहता था कि मेरे साथ कोई तो ज्वाइन हो।
0: हाँ
1: मैंने एक को मांगा, दो लोग ज्वाइन हो गए।
0: भाई आज आप ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं, आपके ऊपर जो है एक साथ दो फूलों की बारिश हो गई है ना, तो कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: मैं तो बस ये कहूंगा ऐसी फूल जो है
0: पंक्ति आप छोड़ना चाहते हैं या फिर हम सीधा कमल जी के पास चलें?
1: मैं
0: अगर
1: बस
0: कोई दिल से निकल रही है तो सुना दीजिए सर,
1: मेरा
0: नाम इस्तेमाल ना करें कृपया करके आप क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारे लिसनर्स को पता है मैं बहुत ही वाहियात शायरी करता हूँ, आप फिर भी अच्छी कर लेते हैं।
1: मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, शायरी नहीं है मगर ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। अल्फाज अगर दिल से निकले
0: जी
1: तो किताब नहीं
0: वाह
1: किसी की जिंदगी बन जाते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: तो जो दिल से निकले हुए अल्फाज हैं या दिल से निकली हुई बातें हैं कभी कभी वो आपकी जिंदगी को भी रिलेट करती हैं।
0: करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी जो जिंदगी में रिलेट बातें हो रही हैं वो आजकल आप ऑफ ईयर बताते हैं मुझे, खैर उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सर आप कुछ यू नो आजकल मतलब जो है आजकल तो अखिल भाई आपको ही पता है ना शेर व शायरी का कितना ट्रेंड चल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम खोलो कोई ना कोई शायर दिख जाता है, हर कोई आजकल शायर हो गया है ठीक है, और कुछ होते हैं ओरिजिनल वाले।
1: हर कोई शायर नहीं बन गया है मगर हर कोई जो है शायरी को अब आनंद के साथ लेने
0: नहीं चाहता। मैं आपको बताता हूँ हर कोई शायर का मेरा मतलब ये है अखिल भैया कि आजकल क्या हो रहा है ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो लिखते हैं सिर्फ बोलते नहीं है, बट जो बोलने वाले हैं वो उसको उठा के फिर अपने फ्लो में अपने अंदाज में बोलते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं फिर उनको लगता है हम भी शायर हो गए हैं, लेकिन एक जो ओरिजिनल शायर होता है उसकी बात अलग ही होती है क्योंकि वो कलम से जो निकली बात होती है वो एक सच्ची वाली होती है क्योंकि दिल से दिल वाली बात होती है। अब जैसे कमल सर आए तो वो एकदम जेन्युइन कंटेंट लेकर आए क्योंकि वो उनका ओरिजिनल है।
1: बस कमल सर ये सोच रहे हैं ये दोनों चुप हो तो मैं कुछ बोलूं।
0: नहीं नहीं उनको पता है, कमल सर को ये पता है कि अगर ये दोनों चुप हो गए तो फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप बोलते रहो बच्चों। खैर एनीवे सर हां आपका स्वागत है जी सर, तो आज आप जो है हमारी इस महफिल को कैसे शानदार करेंगे, आपने वो मॉनसून वाली चार लाइनें सुना दी तो देखिए बाहर का मौसम भी अच्छा हो गया है, लेकिन अब आप आगे बढ़ते हुए क्या सुनाना चाहेंगे हमारे मुरादाबाद को, क्या नया लिखा है आपने इन बीते दिनों में?
2: आपने अभी बात करी नए शायरों की
0: जी,
2: जो कुछ जेन्युइन लिखते हैं और कुछ ऐसे ही शौकिया
0: शौकिया बिल्कुल बिल्कुल,
2: मतलब किस तरह से बस पिक्चर आ जाए। तो दो लाइन उनके लिए देखिएगा कि औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए,
0: वाह
1: क्या बात है,
2: औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: वाह वाह वाह क्या बात है क्या बात है,
2: उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सर ने बात बोली है ना वो बात आई डोंट नो पूरी हुई या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी करना चाहता हूँ कि जो आपने बोला ना बिल्कुल रियलिटी है, एकदम जेन्युइन बोला है आपने।
2: नहीं आप इसको अखिल जी पर मत ले जाना।
0: नहीं मैं अखिल जी पे बिल्कुल लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अखिल जी खुद कहीं और जाने वाले हैं अभी इसीलिए मैं अखिल जी को बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करूंगा,
1: कि थोड़ा सा चाहता हूँ कि अपना स्ट्रेस वो करूं थोड़ा सा दूर करूं, इसलिए कमल जी जैसी दिख गए तो मेरा तो आधा स्ट्रेस वैसे ही दूर हो गया।
0: क्या बात है बिल्कुल,
1: मैं तो बस ये कहूंगा जो हंसते हंसते सब कुछ सह जाए वही इंसान सबसे मजबूत होता है, और जो प्यार में भी मजाक कर जाए वही सबसे प्यारा होता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही अखिल भैया आपने, आजकल आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए दिल से दिल तक करते करते।
1: थैंक यू,
0: बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया जी। सर आप कुछ फरमाए?
2: बिल्कुल फरमाता हूँ सर, चैलेंज देखिएगा कि लगी गांठें ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, लगी गांठें ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो सब इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ।
0: क्या बात,
2: लगी गांठें ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो स्वाद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, तू हिंदी में सुना अपनी मैं उर्दू बोल सकता हूँ।
1: क्या बात है क्या बात है, ये तो आपने बहुत एकदम मेल मिलाप कर दिया हिंदी और उर्दू का, और कहाँ से आप कहाँ से एकदम कौन से वक्त में सोचते हैं, सुबह के 3 बजे या सुबह के 4 बजे?
2: सर इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, ये ज्यादातर जो नए नए आइडिया आते हैं सुबह सुबह जब दिमाग आपका एकदम फ्रेश होता है आप उठते हैं, या कभी कभी रात में जैसे अचानक आप उठे टॉयलेट के लिए तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक कर जाती है, और वो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चोट करती रहती है।
1: तो आपका कहने का मतलब यह है कि दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: नहीं, दिल टूटने का सुबह मतलब नहीं है। आप फिर उसी ट्रैक पर चले जाएं। नहीं, मैं आपको उस ट्रैक से हटाता हूँ, आप फिर उसी ट्रैक पर चले जाएं।
1: मैं इसलिए उस ट्रैक पे आता हूँ ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं और हमारे आनंद जी जो आजकल अपना दिल एक अकलौता दिल लिए घूम रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे थे, कह भी रहे थे मुझसे कि अगर कमल भैया आए तो उनसे जरूर ये बात पूछना कि क्या दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: दोनों ही चीजें हैं।
0: मुझे तो लगता है हो सकता है सर।
2: मैंने कहा ना दोनों चीजें हैं।
0: हाँ हाँ, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता। हाँ, है। हाँ, आपके पिटारे में दोनों ऑप्शन है।
2: डिपेंड करता है कि बंदा किस नेचर का है।
0: हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है।
1: मोबाइल की बैटरी की तरह है कि अगर बैटरी डाउन,
2: मोबाइल की बैटरी के साथ मजबूरी है, उसको चार्ज होना ही होना है। लेकिन दूसरे वाले केस में डिपेंड करता है कि आदमी कदम बढ़ाए या ना बढ़ाए।
0: ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर मुझे लगता है जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा लव होता है, वो एक ही बार होता है, मेरा ऐसा मानना है।
2: मतलब
0: जनरली मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन जो दिल से प्यार निकलता है वो एक बार ही होता है। और जो आपका मुझे लगता है लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम दोनों चलता है।
2: बिल्कुल
0: है ना। आपका भी अखिल भाई, मैं खैर बाद में जिक्र करूंगा। एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं इसी बात पे। इस कॉन्वर्सेशन
1: पसंद नहीं है कि मैं खाना टाइम पे खाऊं।
0: नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं एक गाना सुन लेते हैं। प्रोग्राम्स में जो बातें हैं वो तो चलती रहेंगी। प्यार प्यार की बातें कर रहे हैं हम, एक प्यार वाला गाना हो जाए, उसके बाद वापस आएंगे। दोस्तों आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: अभी बजाते हैं अखिल भाई एक गाना, टेंशन मत।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसे सही, जिंदगी सही।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए, ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC, साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
3: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
4: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
5: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेन देन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
6: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95.56 रुपए पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जैस्मीन पाओलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से

0: का संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्षा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha.

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89।

0: सुनप्रत गाने के बाद वेलकम बैक एक बार फिर से आनंद और अखिल के साथ हैं आप इस प्रोग्राम में जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। साथ में हमारे स्पेशल मेहमान कमल जी मौजूद हैं आज की इस खूबसूरत सी वाइब को और भी फुल ऑन हैपनिंग बनाने के लिए। तो अखिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मेरे इस दिल से दिल तक के सेशन पे बहुत ही मतलब कहते हैं चार चांद लग गए हैं जिसमें आनंद जी और साथ के साथ कमल जी भी जुड़ गए हैं।
0: तो क्या बात है,
1: कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ थोड़ा सा मांगो आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने आपको आज... तो मिलता ही बहुत ज्यादा है, आप तो शुरू से ज्यादा वाले रहे जिसमें कोई इतनी शोक्ति नहीं है।
1: आज मैंने बस थोड़ा सा मांगा था कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए
0: जी जी,
1: मगर
0: दिल से दिल तक
1: वाला
0: चाहिए था।
1: हाँ दिल से दिल तक में मैं चाहता था कि मेरे साथ कोई तो ज्वाइन हो।
0: हाँ
1: मैंने एक को मांगा, दो लोग ज्वाइन हो गए।
0: भाई आज आप ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं, आपके ऊपर जो है एक साथ दो फूलों की बारिश हो गई है ना। तो कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: मैं तो बस ये कहूंगा ऐसी फूल जो है
0: पंक्ति आप छोड़ना चाहते हैं या फिर हम सीधा कमल जी के पास चलें?
1: मैं
0: अगर
1: बस...
0: कोई दिल से निकल रही है तो सुना दीजिए सर, मेरा नाम इस्तेमाल ना करें कृपया करके आप, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारे लिसनर्स को पता है मैं बहुत ही वाहियात शायरी करता हूँ, हम फिर भी अच्छी कर लेते हैं।
1: मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, शायरी नहीं है मगर एक कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। अल्फाज अगर दिल से निकले
0: जी
1: तो किताब नहीं
0: वाह
1: किसी की जिंदगी बन जाते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: तो जो दिल से निकले हुए अल्फाज हैं या दिल से निकली हुई बातें हैं कभी कभी वो आपकी जिंदगी को भी रिलेट करती हैं।
0: करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी जो जिंदगी में रिलेट बातें हो रही हैं वो आजकल आप ऑफियर बताते हैं मुझे। खैर उसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सर आप कुछ यू नो आजकल मतलब जो है आजकल तो अखिल भाई आपको ही पता है ना शेरो शायरी का कितना ट्रेंड चल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम खोलो कोई ना कोई शायर दिख जाता है, हर कोई आजकल शायर हो गया है ठीक है। और कुछ होते हैं ओरिजिनल वाले,
1: हर कोई शायर नहीं बन गया मगर हर कोई जो है शायरी को अब आनंद के साथ लेने
0: नहीं चाहता। मैं आपको बताता हूँ हर कोई शायर का मेरा मतलब ये है अखिल भैया कि आजकल क्या हो रहा है ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो लिखते हैं सिर्फ बोलते नहीं है, बट जो बोलने वाले हैं वो उसको उठा के फिर अपने फ्लो में अपने अंदाज में बोलते हैं। तो मतलब कहना कि फिर उनको लगता है कि हम भी शायर हो गए हैं, लेकिन एक जो ओरिजिनल शायर होता है उसकी बात अलग ही होती है क्योंकि वो कलम से जो निकली बात होती है वो एक सच्ची वाली होती है क्योंकि दिल से दिल वाली बात होती है। अब जैसे कमल सर आए तो वो एकदम जेन्युइन कंटेंट लेकर आए क्योंकि वो उनका ओरिजिनल है।
1: कमल सर ये सोच रहे हैं ये दोनों चुप हो तो मैं कुछ बोलूं?
0: नहीं नहीं उनको पता है, कमल सर को ये पता है कि अगर ये दोनों चुप हो गए तो फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप बोलते रहो बच्चों। खैर एनीवे सर हाँ आपका स्वागत है जी सर। तो आज आप जो है हमारी इस महफिल को कैसे शानदार करेंगे, आपने वो मानसून वाली चार लाइनें सुना दी तो देखिए बाहर का मौसम भी अच्छा हो गया है, लेकिन अब आप आगे बढ़ते हुए क्या सुनाना चाहेंगे हमारे मुरादाबाद को, क्या नया लिखा है आपने इन बीते दिनों में?
2: आपने अभी बात करी नए शायरों की
0: जी,
2: जो कुछ जेन्युइन लिखते हैं और कुछ ऐसे ही शौकिया
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: मतलब किस तरह से बस पिक्चर आ जाए। तो दो लाइन उनके लिए देखिएगा कि औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए,
0: वाह
1: क्या बात है,
2: औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: वाह वाह वाह क्या बात है, क्या बात है,
2: उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी।
0: मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सर ने बात बोली है ना वो बात आई डोंट नो पूरी हुई या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी करना चाहता हूँ कि जो आपने बोला ना बिल्कुल रियलिटी है, एकदम जेन्युइन बोला है आपने।
2: नहीं आप इसको अखिल जी पर मत ले जाना।
0: नहीं मैं अखिल जी पे बिल्कुल लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अखिल जी खुद कहीं और जाने वाले हैं अभी इसीलिए मैं अखिल जी को बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करूंगा,
1: थोड़ा सा चाहता हूँ कि अपना स्ट्रेस वो करूं थोड़ा सा दूर करूं, इसलिए कमल जी जैसी दिख गए तो मेरा तो आधा स्ट्रेस वैसे ही दूर हो गया।
0: क्या बात है बिल्कुल,
1: मैं तो बस ये कहूंगा जो हंसते हंसते सब कुछ सह जाए वही इंसान सबसे मजबूत होता है, और जो प्यार में भी मजाक कर जाए वही सबसे प्यारा होता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही अखिल भैया आपने, आजकल आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए दिल से दिल तक करते करते।
1: थैंक यू,
0: बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया जी। सर आप कुछ फरमाए?
2: बिल्कुल फरमाता हूँ सर, चैलेंज देखिएगा कि लगी गांठे में मन की देख सारी खोल सकता हूँ, लगी गांठे में मन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो सब इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ।
0: क्या बात,
2: लगी गांठे में मन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो स्वाद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, तू हिंदी में सुना अपनी मैं उर्दू बोल सकता हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये तो आपने बहुत एकदम मेल मिलाप कर दिया हिंदी और उर्दू का। और कहाँ से आप कहाँ से एकदम कौन से वक्त में सोचते हैं, सुबह के 3 बजे या सुबह के 4 बजे?
2: सर इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, ये ज्यादातर जो नए नए आइडिया आते हैं सुबह सुबह जब दिमाग आपका एकदम फ्रेश होता है आप उठते हैं, या कभी कभी रात में जैसे अचानक आप उठे टॉयलेट के लिए तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है आपके दिमाग में कहना कि क्लिक कर जाती है और वो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चोट करती रहती है।
1: तो आपका कहने का मतलब यह है कि दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: नहीं दिल टूटने का सुबह मतलब नहीं है। आप फिर उसी ट्रैक पे चले जाएं। नहीं, मैं आपको उस ट्रैक से हटाता हूं, आप फिर उसी ट्रैक पर चले जाएं।
1: मैं इसलिए उस ट्रैक पे आता हूं ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं और हमारे आनंद जी जो आजकल अपना दिल एक अकेलौता दिल लिए घूम रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे थे, कह भी रहे थे मुझसे कि अगर कमल भैया आए तो उनसे जरूर ये बात पूछना कि क्या दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है।
2: दोनों ही चीजें हैं,
0: मुझे तो लगता है हो सकता है सर।
2: मैंने कहा ना दोनों चीजें।
0: हाँ हाँ, नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। हाँ, आपके पिटारे में दोनों ऑप्शन है।
2: डिपेंड करता है कि बंदा किस नेचर का है।
0: हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही
1: है। मोबाइल की बैटरी की तरह है कि अगर बैटरी डाउन,
2: मोबाइल की बैटरी के साथ मजबूरी है, उसको चार्ज होना ही होना है। लेकिन दूसरे वाले केस में डिपेंड करता है कि आदमी कदम बढ़ाए या ना बढ़ाए।
0: ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर मुझे लगता है जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा लव होता है, वो एक ही बार होता है, मेरा ऐसा मानना है।
2: मतलब
0: क्यों, जेनरली मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन जो दिल से प्यार निकलता है वो एक बार ही होता है। और जो आपका मुझे लगता है लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम दोनों चलता है।
2: बिल्कुल
0: है ना, आपका भी अखिल भाई, मैं खैर बाद में जिक्र करूंगा। एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं इसी बात पे, इस कॉन्वर्सेशन
1: पसंद नहीं है कि मैं खाना टाइम पे खाऊं।
0: नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं एक गाना सुन लेते हैं। प्रोग्राम्स में जो बातें हैं वो तो चलती रहेंगी, ये प्यार प्यार की बातें कर रहे हैं हम, एक प्यार वाला गाना हो जाए, उसके बाद वापस आएंगे। दोस्तों आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: अभी बजाते हैं अखिल भाई एक गाना, टेंशन मत।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना ही अपना एफएम मुरादाबाद।
1: बिल्कुल आपने कहा अखिल भैया, आपका अपना ही अपना और सब कुछ अपना ही तो है यहाँ पे। हम भी आपके अपने हैं, हमारे कमल जी भी हमारे अपने हैं, और जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी हमारे अपने हैं। तभी तो ये कनेक्शन बनता है दिल से दिल तक का। और इसीलिए आपने अपने शो का नाम भी रखा है, बहुत चालू हो रहे हो, दिल से दिल तक शो रख लिया है।
0: आज सारे लिसनर्स आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा,
1: अखिल भैया की थोड़ी फिरकी ले रहा हूँ, पहली बार मैं इनके साथ शो में, मतलब ऐसे दिल से दिल तक में तो पहली बार ही हम मिल रहे हैं।
0: आज कॉल बहुत आ रही है मेरे पास की मैं अगर मैं उनकी कॉल उठा नहीं पा रहा हूँ।
1: मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत पॉपुलर आ रहे हैं अखिल भैया, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है यार। ऑफ कोर्स इतनी कॉल तो मुझे भी नहीं आते, मैं खुद देख रहा हूँ, अभी भी फोन ब्लिंक हो रहा है आपका। देखो
0: ये, देखो ये आनंद जो है हर चीज का जो है ना वो दिल का ताड़ बना देता है।
1: मैं जो सच बात है ना दोस्तों वही करता हूँ, और मुझे लग रहा है कि हमारे गेस्ट है कमल जी, इससे पहले वो नाराज होकर भाग जाए हमें छोड़ के, हम वापस उनके पास चलते हैं इज्जत के साथ।
0: तभी मैं आप लोगों की कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे साथ कमल जी हैं, और कमल जी बहुत ही अच्छी शायरी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इनको बुलाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो अखिल जी का है। वैसे इस टाइम पे मुझे स्टूडियो में होना नहीं चाहिए, लेकिन इनकी मेहरबानी जो मैं अभी तक बैठा हूँ यहाँ पे।
0: धन्यवाद धन्यवाद आनंद जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे भी लगातार कुछ ना कुछ निकलता जा रहा है। अखिल भैया हमारे बहुत प्रिपेयर करते हैं, वो जब तक वो कहते हैं जो लिखा नहीं वो दिखा नहीं, ये उनकी खासियत है। तो खैर एनीवेज जी, कमल सर आप प्लीज, बहुत सारा चिट्ठा आप, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में है, प्रॉपर लिख के लेकर आए हैं कमल सर हमारे, बहुत ही जेन्युइन कंटेंट आज डिलीवर कर रहे हैं वो। पहले ये बताइए सर, आपको मजा

0: ही नहीं आ रहा है,
1: बिल्कुल आ रहा
0: है। एसी चला दें क्या अगर आप कहें तो?
1: चलाते रहिए, बंद करते रहिए। मौसम मौसम का आनंद तो लेना ही है, गर्मी का भी सर्दी का भी।
0: बहुत ही बढ़िया,
2: चलिए हम आ चुके हैं, ये
0: हम चला ही देते हैं यार, टेम्परेचर थोड़ा गर्म।
2: इस बार उन्होंने टॉवल जो है गीला रख दिया ना बेड पे, तो भाभी जी छोड़ेंगे नहीं।
0: भाई वो आपको पता होगा कि अभी हम तो शादीशुदा है नहीं, तो हमें इस विषय में आइडिया है नहीं।
1: तभी तो टॉवल और ये सब उनकी फिरकी ले रहे हैं आप जो है।
0: सर ऐसा तो देखिए, अब आप भी उनकी टीम में शामिल हो रहे हैं, मैंने सोचा था एटलीस्ट आप तो मेरा साइड देंगे।
2: देखिए साहब, ये एक ऐसा लड्डू है कि जो है ना आपको खाना तो पड़ेगा कभी ना कभी। हाँ, तो अभी आप जब तक बचे हैं, जब तक आप मंदिरों में चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर चक्कर उस लड्डू से बच रहे हैं, मगर एक ना एक दिन वो लड्डू तो आपको खाना है।
1: सही मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सही जगह अप्रोच करें।
0: हाँ, देखिए अखिल भैया, लड्डू खाने से पहले मैं आप जैसे लोगों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ लड्डू को हजम कैसे करना है, ये भी तो बहुत जरूरी है।
2: सारी ट्रेनिंग धरी की धरी रह जाती है,
0: समझ सकते हैं।
2: चलिए आइए कमल जी, आप बताइए कुछ कुछ तो अपने उसमें हमें साझा कीजिए अपनी शायरी में।
0: देखिए मैं इस शायरी से पहले इतना कहना चाहूंगा, ये जो लड्डू और ये जो बातें थी ना, ये मैं जब भाभी कभी स्टूडियो आई तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा वो कौन सा लड्डू था जो आपने इनको खिलाया था, वो मुझे भी बताइए आप। खैर कमल जी आप बताइए, अपनी शेर और शायरी के माध्यम से कोई लड्डू का जिक्र नहीं होगा मुझे पता है, अब आप सीधे पॉइंट की बात करेंगे।
1: ठीक सर, तो अपने प्यारे से शहर मुरादाबाद के लिए कुछ पंखे।
0: हाँ जी,
1: उम्मीद करता हूँ पसंद करेंगे।
0: बिल्कुल सर,
1: सुनिएगा कि ना कोई पहले मेरे ना किसी के बाद हूँ मैं।
0: वाह।
1: ना कोई पहले मेरे ना किसी के बाद हूँ मैं, आती जाती हर घड़ी में शाद हूँ आबाद हूँ मैं। आती जाती हर घड़ी में शाद हूँ आबाद हूँ मैं, नाम पीतल है मगर सोना हूँ मैं।
2: क्या बात है।
1: नाम पीतल है मगर सोना हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं।
2: क्या बात कही,
1: देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं। राम गंगा से लगा एक शहर हूँ मैं।
2: बहुत खूब।
1: राम गंगा से लगा एक शहर हूँ मैं, उर्दू से हिंदी जोड़ती एक बहर हूँ मैं। राम गंगा से लगा एक शहर हूँ मैं, उर्दू से हिंदी जोड़ती एक बहर हूँ मैं। हूँ जिगर पर जाने क्यों नाशाद हूँ मैं।
2: क्या बात है।
1: हूँ जिगर पर जाने क्यों नाशाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं।
2: बहुत खूब, बहुत खूब। आज आपने मुरादाबाद से एकदम गुफ्तगू और ऐसी रूबरू करवाया आपने मुरादाबाद की बात।
0: नहीं, ये दिल से दिल वाला कनेक्शन था अखिल भाई, और ये मुरादाबाद के बारे में तो जितनी बातें कही जाए खैर वो कमी है, लेकिन आपने जो एक शहर के बारे में चार पंक्तियां रखी, ये कहीं हमें मिल नहीं सकती, ना चैट जीपीटी पे ना जेमिनी पे, ये सिर्फ कमल जी के पास मिल सकती
1: है।
2: तो
0: हमें लगा था एंड हो गया है। जी सर कहिए।
1: पीत के निर्यात में तो खास हूँ मैं, पीत मतलब पीतल।
2: हाँ जी,
0: अच्छा ठीक है जी।
1: पीत के निर्यात में तो खास हूँ मैं, यूं समेटे खुद में एक इतिहास हूँ मैं।
0: वाह।
1: यूं समेटे खुद में एक इतिहास हूँ मैं, यूं ही कितनी सदियों से नाबाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं।
2: क्या बात है।
1: देखिएगा
0: जी
1: कि भोर में खिलती हुई एक धूप हूँ मैं, भोर में खिलती हुई एक धूप हूँ मैं, ओढ़ कर एक नई छवि नव रूप हूँ मैं। स्मार्ट हूँ फिर भी कहीं अपवाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ।
2: क्या बात।
0: देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं। क्या बात है।
1: और अंतिम चालन देखिएगा कि मंचे जिगर बसता हुआ एक राग हूँ मैं।
2: बहुत बढ़िया।
1: मंचे जिगर बसता हुआ एक राग हूँ मैं, देता हूँ सबको कंपनी, देता हूँ सबको कंपनी वो बाग हूँ मैं।
0: क्या बात।
1: देता हूँ सबको कंपनी वो बाग हूँ मैं, शामो शहर रोशन शरर आबाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद।
2: बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये कंपनी बाग से तो जुड़ी हुई कई कहानियां हैं हमारे साथ, कंपनी बाग के आसपास घूमना, और इस समय तो कंपनी बाग के नजारे ही बदल गए। आपने कभी देखा उसके अंदर?
0: मुरादाबाद के नजारे बदल गए, आप कंपनी बाग पे अटके पड़े हो यार अखिल जी। देखो ना, जिस भी चौराहे पे जाओगे वही लाइटें और मतलब चकाचौंध से भरा हुआ है पूरा मुरादाबाद। और इस समय में जब मैं और आप और कमल जी बात कर रहे हैं, हमारा पूरा शहर लाइटों से नहाया हुआ है।
2: ऐसा क्यों होता है कि जब मैं कभी लाइट देखता हूँ मुरादाबाद में चमकती हुई,
0: तभी भाग जाती है? ऐसा तो नहीं होता।
2: एक हफ्ते बाद मुझे लाइट मिलती क्यों नहीं है?
0: क्योंकि वो मुझे पता है, आप जब उसको ध्यान से देखते हो उसे नजर लग जाती है कि उतार के ले जाता होगा। अखिल ने मुझे देख के नजर लगा दी, अब मैं रोड पे दिखूंगी नहीं तेरे को जा भाई,
1: क्योंकि आपकी रोशनी के आगे उसकी रोशनी फीकी पड़ जाती है।
0: ये तो
2: कमल जी बचा रहे हैं,
0: तारीफ करिए।
2: लाइट लेके गए कमल जी ने, बचा लिया उन्हें आज।
0: सही बात है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ अखिल भाई, वो तो खैर दूसरी दूसरी बात है, लेकिन सच में मुरादाबाद की जो भैया ने तारीफ करी है अभी कमल भैया ने, वो उसकी बात ही अलग है। मतलब अपने शब्दों में आपने रूबरू करा दिया है, तो एक काम करते हैं इसी रूबरू रोशनी में एक बढ़िया से गाना सुनते हैं। ये बातचीत तो हमारी लगातार जारी रहेगी, और मुझे लगता है कार्यक्रम में गीत संगीत भी बहुत मैटर करता है।
2: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कही। और मैं इसी बात पे कहना चाहूंगा इस गाने से पहले रिश्ते अगर हंसी से निभाओ तो दूरियां भी पास लगती है।
0: वाह वाह वाह,
2: रिश्ते अगर हंसी से निभाओ तो दूरियां भी पास लगती है, और अगर मोहब्बत सच्ची हो तो खामोशी भी बात कर।
0: क्या बात है अखिल जी, मैं आपकी लाइनें सुन के बस चुप हो गया था।
2: हाँ, वो उसके बाद जो खामोशी आई थी मैं समझ में आ गया था कि आपको बात समझ नहीं,
0: मैंने एक मिनट पॉज इसलिए लिया कि मैं क्या बोलू क्या ना बोलू ये बड़ा मैटर करता है। एक मेरी स्क्रीन पे भी शायरी आ रही है लेकिन मैं बाद में सुनाऊंगा। चलिए एक काम करते हैं, गीत संगीत का आनंद लेते हैं, फिर मिलते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। बहुत ही खूबसूरत गाना, और इस गाने के बाद वेलकम बैक है आप सभी का। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आज की जो ये बेहतरीन वाइव है इसको फुल ऑन सैटिस्फैक्टरी और अमेजिंग बना रहे हैं अखिल जी, मैं और साथ में कमल सर जो हमारी बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और हमारे साथ ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। तो कमल जी, आपको आनंद आ रहा है यानी हमारे स्टूडियो में?
1: आनंद ही आनंद है, अखिल ही अखिल है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी।
2: मैं बस सभी अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा जो गाड़ी में हमें सुन रहे हैं या जो आसपास कहीं बाइक चलाते हुए सुन रहे हैं, तो हॉर्न का इस्तेमाल कम से कम करें, मतलब हॉर्न फ्री रखें। इतना शोर शराबा हो जाता है कभी कभी हॉर्न से कि साउंड पोल्यूशन भी अपनी जगह बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे आप कमल जी इस बारे में?
1: सर ये थोड़ा सा मैटर सब्जेक्ट से अलग हो
0: जाएगा। सही कह रहे हैं आप, ये अखिल जी दिल से दिल तक बात बनाते हैं।
2: इसके ऊपर कोई शायरी है?
1: अब इस विषय पर भी विचार करना पड़ेगा अगली बार इस टॉपिक पर भी विचार करना पड़ेगा।
0: मैं बताता हूँ कमल जी, यहाँ रेडियो वाले ना कुछ भी पूछ सकते हैं, इनका ट्रैक कभी भी हट जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हर डायरेक्शन में प्रिपेयर होना चाहिए। क्यों जी,
1: मैं तभी तो उनको सही ट्रैक पर लाता हूँ, ये फिर दूसरे ट्रैक पर चले जाते हैं।
0: एक मेरे को शायरी दिख रही है कि बहुत अच्छी सी है, मुझे लगता नहीं वैसे अच्छी होगी क्योंकि मैं करता नहीं हूँ शेर शायरी।
2: नहीं, ये व्हाट्सएप पे दिख रही है आपको?
0: हाँ, नहीं मेरे को व्हाट्सएप पे नहीं दिख रही है, मेरे को किसी ने लिख के भेजी है, मेरे को वो दिख रही है। तो मैं भी इसको पढ़ता हूँ कि तुम्हें जो भी बहाना चाहिए था हमें तो कुछ बताना चाहिए था, कि तुम्हें जो भी बहाना चाहिए था हमें भी तो कुछ बताना चाहिए था। मुझे तो जुदाई का सदमा लगा, तुम्हें तो घर बसाना चाहिए था।
2: क्या बात कही,
0: अच्छी बात है ना।
2: वो तो घर बसा लेगी आप, आनंद जी ऐसी लिखते रहोगे सामने वाला घर बसा जाएगा।
0: ये मैं अपने लिए नहीं बता रहा था यार, देखो कोई बंदा खुद पे थोड़ी देर चिपकाएगा यार, कैसी बात कर रहे हो। ये तो किसी ने मेरे को भेजी तो मैंने पढ़ के सुना दी। एनीवेज, हमारी शायरियों में वो कहां दम है जो कमल जी की बातों में है। क्यों अखिल जी,
2: बिल्कुल सही।
0: बैक टू कमल जी के पास चलते हैं और कुछ बढ़िया से सुनते हैं।
2: कमल जी कितने साल हो गए आपकी शादी को?
1: 13 साल।
2: 13 साल का तो एक्सपीरियंस कमल जी के साथ है ही।
0: क्या बात है, बट हम उससे एक्सपीरियंस की बात ही नहीं कर रहे हैं।
1: हम आज लिखने लिखाने का 13 साल का नहीं
0: है। हाँ, आज मुझसे
1: लिखने लिखाने 4-5 साल का।
0: अच्छा, जो अभी लिखते लिखाते हैं आप ये वाला, बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे कुछ फरमा दीजिए जनाब आप। अच्छा, अभी जो है मौसम चेंज होने वाला है, जैसे अभी गर्मियों के से हम सीधा मानसून की तरफ जाने वाले हैं, मतलब बारिश हरियाली चारों तरफ और रोमांस का महीना, रोमांटिक महीना कहते हैं
2: सावन, बच्चे स्कूल जाने वाले।
0: तो इसमें कुछ सुनाओ यार आप सर, बच्चे स्कूल जाने वाले
2: कल से,
0: बच्चों के लिए कोई शायरी नहीं है फिलहाल।
1: तो उसके तो मानसून की चाली पहले चिपका देना।
0: हाँ हाँ, अगर कुछ और हो तो वो भी चिपका सकते हैं आप। नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने चार पंक्तियां उन्होंने अच्छी से लगा दी थी, हमने
2: ये फेविकॉल का ऐड था जो कमल जी कर रहे थे।
1: चार पंक्तियों में जीवन की सच्चाई देखेगा कि जिंदगी क्या है।
0: अच्छा चलिए, बिल्कुल सर,
1: कि अंक गणित के अंक से उलझी जीवन की इतनी सच्चाई।
0: वाह वाह,
1: अंक गणित के अंक से उलझी जीवन की इतनी सच्चाई, नींद दहाई ख्वाब सैकड़े और खुशियां हैं एक इकाई।
2: क्या बात है, क्या बात है। हमारे पास नेहा जी का मैसेज आया है कि कमल जी की शायरी सुनकर तो मुझे कॉलेज के दिन वापस याद आ गए। तो नेहा जी आपको, मतलब कमल जी हमारे इतने भी पुराने नहीं है, मगर हाँ शायरी उनकी बहुत ही अंदर तक जाती है, तो पुराने दिन तो हमेशा सभी को याद आ जाते हैं।
0: True, got it, एकदम भाई, एक बहुत ही अच्छा। और मुझे लगता है कि देखो यार अखिल भैया, पता है जो शेर शायरी का माहौल होता है ना, इसका डबल मजा हो जाता है अगर एक शायर आपके सामने जबरदस्त बैठा हो, है ना, जैसे कि आप बैठे हैं मेरे सामने, आप भी कुछ ना कुछ अतरंगी सतरंगी सुनाते रहते हैं, मजा आ जाता है। मुझे लग रहा है कि कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद हमें चुप हो चाहिए यार, इज्जत का मामला है।
2: जी कहेंगे चार लाइनें सुन के मेरी वाहवाह कर देते, उसके बाद वो कोई बोलता नहीं, ये अपनी बात बोल देते
1: यार। मुझे कहना पड़ता है कि पूरी तो सुन लो,
0: अभी तो मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों
2: हाँ, पूरी कीजिए आप पहले। हाँ, आपके वो चार लाइनों में दिल एकदम अंदर तक भरा आता है ना।
1: नहीं, जो मुझे भी पता चल जाता है कि चार लाइनों को दम था या नहीं था।
2: देखा चुपर उस समय।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर हम थोड़े से अनजान हैं इस फील्ड में, तो आप जरा हमें बख्श दीजिएगा और आप अपनी आगे की लाइनों को पूरा करिएगा।
1: चलिए जिंदगी पर ही कुछ चार पंक्तियां और देखिएगा।
0: बिल्कुल सर,
1: कि जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है।
0: वाह
2: बहुत खूब,
1: जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है, किसी के मन में छिपा है क्या ये ऐसे पता कहाँ चलता है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: किसी के मन में छिपा है क्या ये ऐसे पता कहाँ चलता है।
0: जी जी,
1: वैसे तो जितने भी मुंह हैं उतनी तरह की बातें हैं, वैसे तो जितने भी मुंह हैं उतनी तरह की बातें हैं, कोई खुलकर मिलता है तो कोई मिलकर खुलता है।
2: क्या बात है,
1: जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है।
2: बहुत सही बात कही आप, दिल खोल के बातें करें जिससे कि आपका दिल ना खोलना पड़े कभी। इतनी अच्छी बात कही, मोहब्बत में लोग चांद तक पहुंचने की बात करते हैं, हम तो बस इतना चाहते हैं कि सामने वाला सीन करके भी जवाब दे दे।
0: क्या बात है, बिल्कुल आपको जवाब मिलता भी है, वो बात की कि आप जवाब नहीं देते हैं। बहुत अच्छी आपने करी है, थैंक यू सो मच। और ये जो बातों का सिलसिला है ये और भी मजेदार हो जाता है जब इसमें चार लोग बैठे होते हैं, फिलहाल तीन लोग बैठे हैं। मजे की बात ये है,
2: तीन का जो ये कॉम्बिनेशन है, हाँ। ये आनंद बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है।
0: बिल्कुल, ये बचपन से हमने कहावत सुनी थी, तीन लोग की जो जोड़ी होती है वो खतरनाक ही होती है।
2: ऐसी तीन दोस्त होते हैं जो गाड़ी में बैठ के एक दूसरे को अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं इस समय।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बात अलग है, आपने स्टेशन में बैठ के अपनी कहानी कभी नहीं सुनाई। खैर, कभी फुर्सत से सुनेंगे हम जरूर। जब तक कमल सर कुछ नया निकाल रहे हैं, हम एक काम करेंगे, गाने की तरफ बढ़ेंगे, छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक होगा और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे, फिर सर से इजाजत लेंगे और कुछ उनसे सुनेंगे भी।
2: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
0: गाना सुना है अपने किशोर कुमार का, जिंदगी एक सफर है सुहाना,
2: हाँ, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो अगले एपिसोड में, अगले लिंक में क्या हो जाए अभी किसने कुछ नहीं जाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आगे की लाइन बताओ या भूल गए हो? गाइस अभी काम करते हैं, गाना सुनते हैं, मुझे खुद को भी याद नहीं आ रही है, कमल सर भी सोच रहे हैं आगे कुछ तो कहा था किशोर कुमार ने। अखिल भाई तो पूरा ही डूब चुके हैं। खैर, एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं, आप कहीं मजा।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
6: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
5: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
6: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
5: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
6: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
5: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
6: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
5: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
6: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
5: EKCC, साख से समृद्धि।
6: नियम और शर्तें लागू।
7: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। धड़कना सीख जाते हैं,
1: हाँ,
0: टूटे हुए दिल भी फिर धड़कना सीख जाते हैं जब कोई सच्चा इंसान जिंदगी में आ जाता है।
1: क्या तो बात है, और इनकी जिंदगी में भी एफएम आ गया है तो इसलिए ये अपना दिल बहुत धड़का रहे। सही बात है, क्या
0: दिल से दिल तक चल रहा है
1: नई बात,
0: दिल से दिल तक चल रहा है। आज हमारे पास कई लिसनर्स के कॉल आ रहे हैं, हम उठा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए माफी। मगर आज आप सभी सुन रहे होंगे हम सबके दिलों की बात, क्योंकि जो हमारे साथ बैठे हैं ना शख्स कमल जी, वो ऐसे हैं कि अगर कोई बात भी निकल रही है, अगर हंसी मजाक में भी निकल रही है ना, तो आज उनके डायरेक्ट दिल से निकल रही है। और आनंद को तो आप जानते हो,
1: तो
0: ये
1: मतलब
0: तो हिला ही देता।
1: कहना क्या चाहते हैं, उनकी बात घर पे दिल से नहीं निकलती है?
0: अब घर पे तो
1: भाभी जी के लिए
0: भाभी के आगे क्या क्या बातें इनकी निकल रही नहीं निकल रही हमें तो नहीं पता।
1: वो आपको तो खैर पता है, अभी तो शादी शुदा है। मैं ये बोल के सबको बता देना चाहता हूँ कि अखिल इट्स नॉट सिंगल, आप उस नजर से नहीं देखेंगे हमारे अखिल भाई को, नहीं तो भाभी जी हमें बहुत मारेंगी। बैक टू पॉइंट, इससे जोक से पार्ट, अखिल भाई मैंने कहा था ना जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हमने कहा था हम कमल जी से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अखिल जी ने सुना दिया, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है कभी भी। खैर सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं एक बार फिर से। आप जरा अब जो है ये हमारी अंतिम कॉन्वर्सेशन चल रही है, ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे इजाजत लेंगे आपसे, और आपने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। बट जाते जाते कुछ अच्छा सा अगर आप सुनाना चाहें, ताकि अगली बार लिसनर और डिमांड करें, हम दोबारा आपको बुलाना चाहें, है ना अखिल भाई?
0: बिल्कुल सही कहा।
2: देखिएगा कुछ पंक्तियां और हैं कि नामवरों की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं।
1: क्या बात है,
2: नामवरों की महफिल में, मतलब जैसे आप लोगों की महफिल है।
1: जी जी, नहीं हमारा नाम है सर, मेरा आनंद है, उनका अखिल है।
2: नहीं मतलब जाना माना नाम, उसको नामवर कहते हैं।
1: अच्छा नाम,
2: जो जाना माना नाम होता
0: है, स्वयंवर की बात कर रहे हैं, बाद में स्वयंवर।
1: अच्छा ओके, सॉरी सॉरी।
2: नामवरों की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं,
1: वाह,
2: अपनी भी कुछ पहचान बने
1: जी,
2: आओ कुछ ऐसा लिखते हैं।
1: वाह क्या बात है,
2: अपनी भी कुछ पहचान बने और कुछ ऐसा लिखते हैं। अब तक तो गैर की महफिल में,
1: जी जी,
2: अब तक तो गैर की महफिल में बस वाह वाह ही करते आए।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: अब तो अब तक तो गैर की महफिल में बस वाह वाह ही करते आए, एक खरीदार की चाहत है बाजार में हम भी बिकते हैं।
0: क्या बात कह रही
2: है, की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं,
1: दिखते हैं, क्या बात है क्या बात है।
0: ये तो आज इन्होंने उल्टा ही कह डाला, मतलब हमारा तो मतलब कहते हैं अंदर तक पहुंच गई।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये अंदर से बाहर भी निकल जाएगी, आप चिंता ना करें दोस्तों। जी जी सर, और देखिए वही वाली बात है ना कि जब मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कलाकार की खूबसूरत बात यही होती है कि जब वो दिल से लिखते हैं ना, और जब वो दिल से सुनाते हैं तो कनेक्ट भी दिल से दिल तक होती है। कमल सर, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बट उन्हें पता नहीं है वो कहाँ से शुरुआत करें, कैसे लिखें, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत सारे ऐसे आजकल हमारे इस शो को सुन के बहुत लोगों के मन में, मुझे तो बहुत मैसेज आते हैं, ख्याल आ रहा है कि हम भी आए, हम भी यू नो इस तरह की शायरी करें, बट उनको पता ही नहीं है कि उनको स्टार्ट कैसे करना है। तो आप जैसे आपका 3-4 सालों का भी सर ने एक्सपीरियंस बताया, तो आप इस पे कुछ कहना चाहें उन बच्चों को?
2: किसी भी लिखने वाले के लिए बहुत बड़ी चीज है सब्जेक्ट।
1: हाँ बिल्कुल,
2: और अगर आप बिल्कुल सटीक दिमाग से बिल्कुल एक मतलब एक एम लिए देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे आसपास में सब्जेक्ट दिखेंगे। वो सब्जेक्ट किसी भी विषय पे हो सकते हैं, देश पे भी हो सकते हैं, आपकी आम जिंदगी जो है रोज की उससे भी जुड़े हो सकते हैं।
1: 100%.
2: बस आपको वो सब्जेक्ट देखना है और कुछ सोचना है उसके बारे में,
0: आप खुद
2: अपने आप ही आप जुड़ते जाएंगे सब्जेक्ट से। और पंक्ति अपने आप ही अंदर आपके बनती रहेगी, बस आपको उनको
1: उतारने की
2: सेट करना है,
0: उन शब्दों को अपने जहन में लाके आपको
2: उसमें आपकी जो भी घटनाएं घट रही है उन पर थोड़ा नजर रखिए,
1: मतलब आपको।

0: है
1: मुझे
0: और
1: तो
0: दिल
1: जो,
0: से
1: मुझे तो जो इंस्पिरेशन मिलती है अखबार से मिलती है।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया।
2: अमर उजाला से या दैनिक जागरण से?
1: अमर उजाला और हिंदुस्तान।
0: क्या बात है बढ़िया वेरी नाइस। आपने इन दोनों को प्रमोट किया है, हमें दोनों पैसे नहीं देते हैं तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे।
2: नहीं, अगर आपको आसपास कोई सब्जेक्ट नहीं मिले तो आप खुद को भी अपना एक सब्जेक्ट बना सकते हैं।
1: नहीं, खुद पे लिखना बहुत बड़ा काम है, हर कोई नहीं कर सकता।
0: ट्रू, बहुत अच्छा आपने कहा है सर।
1: खुद पर लिखना और खुद पर हंसना
0: जी
1: बहुत बड़ी बात है।
0: बहुत बड़ी बात है बिल्कुल। हम मजे की बात है कि हम दोनों खुद पे हंसते रहते हैं क्योंकि हम लोग रेडियो में काम करते हैं। एनीवेज
2: बहुत दूसरों को देख के हंसते रहते हैं।
0: बहुत नहीं, दूसरे लोग हमें देख के हंसते हैं।
2: मैं कहना चाहूंगा ये बिल्कुल आनंद जी दिल से निकल रही है आवाज।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मेरा दिल का तार आप प्लीज तोड़ दीजिए इससे पहले कोई और जूते चप्पल बरसाए। आप प्लीज पूरा करिए अपनी बात।
2: महफिलों की रौनक तुमने ना एकदम वो कर देता। महफिलों की रौनक लोग नहीं।
0: वाह,
2: महफिलों की रौनक लोग नहीं, उनके अल्फाज होते हैं।
0: क्या बात है,
2: जो दिल से निकले वही हमेशा याद रहते हैं।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, जैसे कि आप याद रहते हैं हमारे लिसनर्स को और कमल जी तो हमेशा याद रहेंगे, इतनी अच्छी बातें करते हैं। सर चलते चलते कुछ सुनाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जाते जाते?
1: बिल्कुल सर, आपने कहा तो जरूर सुनाना पड़ेगा।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक दोस्ती वाला अगर कुछ हो जाए तो मेरे को बड़ा मजा आता है दोस्ती में। यू नो हमारे जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं सब हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, तो अगर इस पे आपको
2: और सब अपने दोस्तों को भी याद कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अखिल जी भी याद कर रहे हैं।
1: भी चार लाइनें सुनाते हैं, पहले जो निकली हुई है पहले।
2: क्यों नहीं क्यों नहीं।
1: तो देखिएगा कि जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई है।
0: वाह,
1: जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई है, उसकी लिखी नज्मों की महफिल दीवानी हो गई।
0: वाह जी वाह,
1: उसकी लिखी नज्मों की महफिल दीवानी हो गई है, उसकी गुमनामी भी एक दिन नाम की मोहताज थी।
2: बात को
1: उसकी गुमनामी भी एक दिन नाम की मोहताज थी, शोर है अब हर तरफ उसकी कहानी हो गई है, जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई।
2: क्या बात है,
0: क्या बात है सर, क्या बात है, कमाल कर दिया, कमाल कर
2: लोग दिया। आलम बिरयानी के आसपास कहीं बैठे हुए हैं गाड़ी में तो वो अपनी बिरयानी आराम से खाते रहे।
0: एब्सोल्युटली सही
2: कहा, ये शायरी का असली आनंद तो उन्होंने लिया।
1: तो ये मतलब उसकी प्रमोशन हो गई क्या? आलम बिरयानी की प्रमोशन नहीं हो गई
0: सर, यहाँ कुछ भी हो सकता है,
2: कुछ भी हो सकता है।
0: जैसे कि मैंने कहा था आपसे कुछ, अगर आप हमारे दोस्तों के लिए कुछ दोस्ती बगैर दो लाइन कहना चाहें जाते जाते।
1: चलिए साहब जैसा हुक्म है।
0: बिल्कुल हाँ हाँ, आप बहुत सुपर फास्ट भागते दौड़ते पहुंचे हमारे ऑफिस, हमें पता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो
1: देखिएगा कि कुछ मतलब दोस्ती मिलना मिलाना महफिल इस बारे में कुछ आप उससे कोरिलेट कर लेंगे।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि महफिलों के दौर ये आते रहे जाते रहे।
0: वाह वाह,
1: महफिलों के दौर ये आते रहे जाते रहे, आप सब बस ऐसे ही हंसते रहे गाते रहे।
0: क्या बात है,
1: आप सब बस ऐसे ही हंसते रहे गाते रहे, सोच नाना ये कि मैं तुम सबसे कितना दूर हूँ। सोच नाना ये कि मैं तुम सबसे कितना दूर हूँ, ये ना कह देना कि मैं नाकाबिले दस्तूर हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: ये ना कह देना कि मैं नाकाबिले दस्तूर हूँ, घर की जिम्मेदारियों के बोझ से कुछ चूर हूँ।
0: अरे वाह,
1: घर की जिम्मेदारियों के बोझ से कुछ चूर हूँ, पर तुम्हारी महफिलों का एक चमकता नूर हूँ।
0: क्या
2: बहुत बढ़िया,
0: खूबसूरत,
1: पर तुम्हारी महफिलों का एक चमकता नूर हूँ, बंद गए हैं दिल तो ये बंधन न तोड़ा जाएगा, बंद गए हैं दिल तो ये बंधन न तोड़ा जाएगा, जुड़ गया है साथ तो अब टूटने ना पाएगा।
0: क्या बात है, क्या बात?
1: जुड़ गया है साथ तो अब टूटने ना पाएगा, बस कर्म इतना करो महफिल यूं ही सस्ती रहे।
0: क्या बात है,
1: बस कर्म इतना करो महफिल यूं ही सस्ती रहे, जाम भी चलते रहे और क्षमा जलती रहे।
2: क्या बात कही, क्या बात कही, जिनके हाथ में जाम है वो तो
1: उनका भी परमिशन हो गया
2: वो तो इस समय खुशी से कह रहे हैं क्या बात है, आज तो सही टाइम पे हमने एफएम लगा लिया और दिल से दिल तक बात जो है हमारे बीच पहुंच गई है। और मैं सभी लिसनर से कहूंगा कि आप भी अपनी शायरी हमें मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे, हम भी आपकी दिल की बात सभी के पास पहुंचाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा अखिल भाई आपने, और हम भी चाहते हैं कि आप भी अपने टैलेंट को छुपाएं नहीं बाहर निकालें, है ना। तो कमल जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम साझा किया और अपने दिल से लिखी बातों को हमारे लिसनर तक पहुंचाया, और हम चाहेंगे कि बीच बीच में हम आपको ऐसे ही परेशान
2: करते रहे,
0: है ना, और आप ऐसे ही हमारे दोस्तों को एंटरटेन करते रहे। बिल्कुल, तो अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और इतना स्पेशल इस प्रोग्राम को बनाया। अखिल जी चलें अपना पोटला उठा के बातों का पटारा
2: लेके, कल आप लोगों से मिलेंगे हम ठीक फिर से रात में 9 बजे से 10 बजे तक और करेंगे दिल से दिल की बातें।
0: क्या बात है, तब तक के लिए मैं यानी आरजी आनंद और हमारे साथ अखिल भैया थे और कमल जी थे, हम लेते हैं आपसे जाने की इजाजत, जल्दी करेंगे आपसे मुलाकात। फिलहाल छोड़ के जा रहे हैं कुछ अच्छे गाने, आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
2: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: बाय बाय।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: विकास की नई सोच, परंपरा का नया सम्मान, स्वाद, संस्कृति और रोजगार को नई उड़ान देता है आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम का नाम तो बता ही दिया है, और आज इस प्रोग्राम को मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले अपना नाम बता देता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त RJ आनंद, और आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में अपना साथ देने के लिए आ गई है कौन, मेरी प्यारी दोस्त
1: RJ रीना।
0: यस RJ रीना, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी विविधताओं का प्रदेश, यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, और सबसे मजेदार बात, स्वाद बदल जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा RJ रीना आपने। अगर हम आगरा जाएं तो वहाँ का पीठा याद आता है, अगर हम वाराणसी जाएं तो वहाँ की कचौड़ी, जलेबी की खुशबू मन मोह लेती है, मथुरा के पेड़े, कानपुर के ठगू के लड्डू और मेरठ की रबड़ी, अयोध्या की मिठाइयाँ, आय हाय हाय, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने स्वाद में एक कहानी समेटे हुए है।
1: और अब यही स्वाद, यही परंपरा उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने जा रहे है, क्योंकि योगी सरकार लेकर आई है एक बेहद खास पहल, एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
0: दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य सिर्फ व्यंजनों को पहचान देना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित करना, आधुनिक बनाना, रोजगार से जोड़ना और दुनिया तक पहुंचाना है।
1: यानी अब हमारे गांव कस्बों की रसोई से निकलने वाले पारंपरिक व्यंजन अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकते हैं।
0: अरे वाह, यह सोचकर तो बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन जरा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए, आखिर यह योजना कैसे काम करेगी?
1: जरूर, देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश के हर जिले के एक खास पारंपरिक व्यंजन की पहचान की जाएगी, फिर उस व्यंजन को गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग के आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा।
0: यानी जो स्वाद वर्षों से लोगों के दिलों में बसा है, उसे अब एक नई तकनीकी और बेहतर प्रस्तुति के साथ दुनिया के सामने लाया जाएगा।
1: बिल्कुल, और इसके लिए सरकार ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग भी लिया है,
0: जैसे कि FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।
1: जी हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसके अलावा CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट और NIFTEM जैसे बड़े संस्थान भी इस योजना में सहयोग कर रहे हैं।
0: तो ये संस्थान क्या करेंगे?
1: ये संस्थान हर जिले के व्यंजन के लिए स्टैंडर्ड रेसिपी मैनुअल तैयार करेंगे, यानी उस व्यंजन को बनाने की एक मानक प्रक्रिया तय की जाएगी, ताकि उसका स्वाद, गुणवत्ता और स्वच्छता हर जगह एक जैसी बनी रहे।
0: मतलब अगर कोई पर्यटक मथुरा के पेड़े खाए या वही पेड़े विदेश में पैक होकर पहुंचाए, तो उसका स्वाद और उसकी गुणवत्ता एक समान हो।
1: बिल्कुल सही समझा आपने, और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा विश्वास का निर्माण।
0: दोस्तों, आज के समय में लोग सिर्फ स्वाद नहीं देखते, वो यह भी जानना चाहते हैं कि खाना कितना सुरक्षित है, कितना पौष्टिक है और उसकी गुणवत्ता कैसी है।
1: और इसी वजह से इस योजना में न्यूट्रिशन लेबलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
0: यानी अब पैक किए गए पारंपरिक व्यंजनों पर पोषण संबंधित जानकारी भी दी जाएगी श्रोताओं,
1: साथ ही QR कोड और बार कोड जैसी सुविधाएं भी होगी, ताकि ग्राहक आसानी से उत्पाद की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
0: वाह, यानी पारंपरिक स्वाद लेकिन आधुनिक अंदाज।
1: दोस्तों, योजना का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मार्ट पैकेजिंग,
0: क्योंकि अच्छी पैकेजिंग ही किसी उत्पाद की पहली पहचान होती है। दोस्तों
1: बिल्कुल, सरकार भारतीय पैकेजिंग संस्थान यानी IIP के सहयोग से आकर्षक, सुरक्षित और इको फ्रेंडली पैकेजिंग विकसित करेगी।
0: मतलब अब हमारे पारंपरिक व्यंजन सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि देखने में भी शानदार होंगे,
1: और इससे उन्हें बड़े मॉल, सुपरमार्केट और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जगह मिल पाएगी।
0: दोस्तों जरा सोचिए, एक छोटा सा स्थानीय व्यंजन जो कभी सिर्फ गांव या शहर तक सीमित था, अब दुनिया भर के लोगों की पसंद बन सकता है।
1: और यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ भोजन की बात नहीं करती, यह रोजगार और आत्मनिर्भरता की भी बात करती है।
0: सही कहा आपने आरजी रीना, इस योजना के तहत स्थानीय उद्यमी युवाओं और स्वयं सहायता समूह को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा
1: और उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे बेहतर पैकेजिंग करे, कैसे उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखे और कैसे ब्रांडिंग करे और कैसे अपने उत्पाद को बड़े बाजार तक पहुँचाए।
0: यानी कि गांव की महिलाएं, छोटे व्यापारी और युवा अब अपने हुनर को रोजगार में बदल सकेंगे।
1: बिल्कुल, कल्पना कीजिए किसी गांव की महिलाएं अगर अपने पारंपरिक अचार, मिठाई या स्नैक्स को सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बेचे तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
0: और यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश की असली सोच, जहां विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। स्वाद भी, सम्मान भी, रोजगार भी, पहचान भी, एक जनपद एक व्यंजन, उत्तर प्रदेश की नई उड़ान।
1: दोस्तों, सरकार इस योजना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने की दिशा में काम कर रही है।
0: बड़े आयोजन में स्वाद यूपी का थीम के तहत बड़े आयोजनों में इन व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
1: साथ ही डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया अभियान और लघु फिल्मों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्वाद को दुनिया तक पहुंचाया जाएगा
0: और इसके फायदे पर्यटक को भी मिलेंगे।
1: बिल्कुल, जब कोई पर्यटक किसी जगह जाता है तो वह वहाँ का स्वाद जरूर याद रखता है। इस योजना से उत्तर प्रदेश का फूड टूरिज्म भी मजबूत होगा।
0: यानी लोग सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को देखने नहीं आएंगे बल्कि यहाँ का स्वाद का अनुभव लेने भी आएंगे।
1: और जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
0: तो दोस्तों, अगर आपके जिले में भी कोई खास पारंपरिक व्यंजन है तो ये समय है उनको एक नई पहचान देने का।
1: संस्थाई उत्पाद अपनाएं, स्थानीय

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे, और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।